एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 22वीं तिथि, तदनुसार 13 जुलाई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी समाचार, और समाचारों के ठीक बाद विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैंबर ऑफ कॉमर्स सीईओई और आईसीईएक्स स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। श्री गोयल 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान थेल्स और सिलॉक्स समूह

0: के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोल में सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाएंगे और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तैयार किए गए एक विशेष प्रकाशन का विमोचन करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। वे निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए उद्योगपतियों के साथ बैठक भी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार प्रतियोगिताएं जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा हिंदी, अंग्रेजी और किसी भी क्षेत्रीय भाषा में अपनी प्रविष्टियां भेज सकेंगे। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट नौ वहन को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत बेंदाले, नई दिल्ली के ऋषित गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने रूस, चीन, कजाखस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। 87 देश के 381 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार। पहले आज का चिंतन। गौतम बुद्ध का ये कथन है कि कभी भी किसी से ईर्ष्या न करें, क्रोध न करें, वरना मन हमेशा अशांत ही रहेगा। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है वही दुखों से मुक्त हो सकता है। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। झरोखा की ठीक बात यानी कि 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान भाग 248। 6:45 पर कार्यक्रम संगीत सरिता श्रृंखला सायंकालीन संधि प्रकाश राग। कलाकार हैं गायिका विदुषी आरती अंकलीकर। इस श्रृंखला की आज पहली कड़ी आप सुनेंगे और इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा शाम 6:45 पर। सुबह 7 कार्यक्रम भूले बिसरे गीत और 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। सुबह 8 बजकर

8:15 पर कार्यक्रम होगा त्रिवेणी और 8:30 पर चित्रलोक कार्यक्रम। सुबह 9:30 पर कार्यक्रम होगा आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा पर। सुबह 10:00 पिटारा के अंतर्गत उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में सुनिए रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत का चौथा भाग। सुबह 11:00 कार्यक्रम रंग तरंग। दिन में 12:05 पर कार्यक्रम यादों की महफिल और दिन में 1:00 का समय है सुरीला सफर इस कार्यक्रम का। दिन में 2:00 कार्यक्रम त्रिवेणी 2:30 पर सदाबहार नगमे। दिन में 3:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम सखी सहेली। शाम 4:00 पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा कार्यक्रम सुनिए प्रोस्टेट और अन्य बीमारियां इस विषय पर डॉक्टर उमेश ओझा से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग। शाम 5:00 कार्यक्रम छाया गीत और 5:30 पर तराने नए पुराने। शाम 6:35 पर कार्यक्रम होगा संध्या रंजन और शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

शाम 7 बजे का समय है। जयमाला कार्यक्रम का 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत एक ही फिल्म से कार्यक्रम। रात 8 बजे कार्यक्रम हवा महल। रात 8:15 पर चित्रलोक कार्यक्रम और रात 9 बजे का समय है कार्यक्रम आपके लिए का। रात 9:30 पर कार्यक्रम होगा आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता प्राण पर। रात 10 बजे कार्यक्रम छाया गीत। 10:30 पर ढलती जाए रात ये कार्यक्रम। रात 11 बजे रंग तरंग कार्यक्रम। झरोखा के अंतर्गत ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश के सुरीले धड़कन। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान भाग 248।

आराध्य से मनचाहा वरदान प्राप्त कर मुनि सुतीक्ष्ण की साध पूरी हुई। प्रभु की इच्छा के अनुसार तब वो उन्हें अपने गुरु अगस्त्य मुनि के आश्रम ले चले। श्री राम लक्ष्मण सीता का आगमन सुन अगस्त्य मुनि उनके दर्शनों को दौड़े। नाना प्रकार से श्री राम की पूजा वंदना करने हेतु जब उन

आसन पर बिठाया तो मुनियों का समूह प्रभु दर्शन के लिए एकत्र हो गया। पूरी ऋषि मंडली में श्री राम इस मुद्रा में बैठे हैं कि प्रत्येक उपस्थित जन को वो अपनी ही ओर देखते दिखाई देते हैं। श्री राम ने अगस्त्य मुनि को वहाँ अपने आगमन का उद्देश्य बताया। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, मुझे ऋषि मुनि द्रोही राक्षसों के विनाश का उपाय बताएं। अगस्त्य मुनि ने श्री राम से दंडक वन में पंचवटी जाकर गौतम मुनि के कठोर शाप का दमन करने की प्रार्थना की।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान भाग 248। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम संगीत सरिता।
1: आज से हम आरंभ कर रहे हैं संधि प्रकाश रागों की श्रृंखला। इसे प्रस्तुत कर रही हैं मशहूर गायिका आरती अंकलीकर। इस श्रृंखला के अंतर्गत आप सुनेंगे सांध्यकालीन संधि प्रकाश रागों का परिचय। तो आइए पहली कड़ी सुनते हैं, राग है पूरिया धनाश्री।
2: संगीत सरिता सुनने वाले श्रोताओं को मेरा बहुत ही प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको संधि प्रकाश रागों के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हिंदुस्तानी रागों के गाने के समय के अनुसार देखा जाए तो हम तीन वर्ग बना सकते हैं। पहला है जिसमें कोमल ऋषभ और कोमल धैवत हो, दूसरा वर्ग जिसमें शुद्ध ऋखभ और शुद्ध धैवत हो, और तीसरा जिसमें

के समय के अनुसार देखा जाए तो हम तीन वर्ग बना सकते हैं। पहला है जिसमें कोमल ऋषभ और कोमल धैवत हो, दूसरा वर्ग जिसमें शुद्ध ऋखभ और शुद्ध धैवत हो, और तीसरा जिसमें कोमल गंधार और कोमल निषाद। आज मैं आपको संधि प्रकाश रागों के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। संधि प्रकाश ये समय दिन में दो बार आता है। रात समाप्त होने के बाद जब दिन शुरू होता है उस समय, और जब दिन समाप्त होकर रात शुरू होती है तब। तो ये जो दोनों समय हैं इनको संधि प्रकाश कहते हैं, और इन समयों पर जो भी राग गाए जाते हैं उनको संधि प्रकाश राग कहा जाता है। हिंदुस्तानी रागों का हम तीन वर्गों में वर्गीकरण कर सकते हैं, उनके गायन के समय अनुसार या उनमें जो स्वर आते हैं उनको उनके अनुसार। ये तीन वर्ग हैं। पहला है जिसमें कोमल ऋषभ और कोमल धैवत है, दूसरा है जिसमें शुद्ध ऋषभ और शुद्ध धैवत है, तीसरा है जिसमें कोमल गंधार और कोमल निषाद। इसमें जो पहला वर्ग है जिसमें कोमल ऋखभ और कोमल धैवत, ये राग सारे संधि प्रकाश रागों में आते हैं और इन रागों को संधि प्रकाश राग कहा जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें गंधार शुद्ध ही होना चाहिए, और जैसे मैंने कहा कि ये संधि प्रकाश का समय दो बार आता है, एक जब रात खत्म होके दिन शुरू होता है और दिन खत्म होके रात जब आती है। और मैं आपको जब दिन खत्म होके रात शुरू होती है उस वक्त जो संधि प्रकाश राग गाए जाएंगे उनके बारे में जानकारी देना चाहूंगी। इन रागों में पूर्वी, पूर्याधनाश्री, मारवा और श्री ये प्रमुख राग हैं, और इनमें जैसा मैंने कहा कि ऋखभ और धैवत कोमल होता है और मध्यम तीव्र होता है। आज मैं आपको इन रागों में से पूर्याधनाश्री उसके बारे में कुछ बताऊंगी। इसमें ऋखभ और धैवत कोमल मध्यम तीव्र है, अन्य सारे स्वर जो हैं शुद्ध हैं, इसमें वर्जित स्वर कोई भी नहीं है। इसकी जाति संपूर्ण है क्योंकि इसके आरोह और अवरोह में सातों स्वरों का उपयोग होता है। इसका वादी स्वर है पंचम और संवादी स्वर है षडज। गाने का समय जैसा मैंने बताया तो उसका असर बहुत अच्छा हो सकता है। इसका आरोह अवरोह मैं आपको अभी थोड़ा सा गा के सुनाती हूँ।

मैं पुरिया धनाश्री का आपको थोड़ा सा चलन बता दूं। इसका कारण ये है कि ये संधि प्रकाश रागों में पुरिया धनाश्री, श्री या पूर्वी, इनके स्वर काफी मिलते जुलते हैं। श्री और पुरिया धनाश्री के तो स्वर एक ही हैं, लेकिन उनका आना जाना, स्वरों का आना जाना जो है वो अलग करने की वजह से रागों को अलग आइडेंटिटी मिलती है। हमारा हिंदुस्तानी संगीत इस तरह से बनाया है, बड़ी ताज्जुब की बात है कि वही सब तक है, लेकिन रागों का चलन ऐसा बुजुर्गों ने रखा है कि अलग अलग शक्ल बना देता है राग अपनी। तो पुरिया धनाश्री के स्वर और श्री के स्वर एक होते हुए भी देखिए पुरिया धनाश्री का चलन कैसा है।

अब मैं आपको राग पूरिया धनाश्री सुनाने जा रही हूँ। बंदिश जो है ताल तीन ताल में है। मुश्किल करो आसान ख्वाजा मोरे,

अब हम आपको सुनवा रहे हैं राग पूरिया धनाश्री में एक रचना उस्ताद अमीर खां की आवाज में। इसे हमने लिया है फिल्म बैजू बाबू।

0: प्रकाश रागों की श्रृंखला के अंतर्गत ये थी सायंकालीन संधि प्रकाश रागों की चर्चा की पहली कड़ी। राग था पूरिया धनाश्री। तबला संगति ओंकार गुलवाड़ी की थी और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे सुधीर नायक।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली रूपक।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीत सरिता।

प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं मंजू द्विवेदी। सबसे पहले अनारकली फिल्म का गाना हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत है सी रामचंद्र का।

0: हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं

0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए समुंदर फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत है मदन मोहन का।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। मशाल फिल्म का गाना सुनिए, मन्ना डे की आवाज में, प्रदीप के बोल, संगीत है एसडी।

अंतराल के बाद अब आपको सुनवाने जा रहे हैं दर्द फिल्म का गाना उमा देवी की आवाज में। शकील बदायूनी के बोल, संगीत है नौशाद अली का।

दर्द फिल्म का ये गाना आपने सुना उमा देवी के आवाज में, शकील बदायूं के बोल, संगीत नौशाद का। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए दो भाई इस फिल्म का गाना गीता रॉय की आवाज में। राजा मेहंदी अली खां के बोल, संगीत है एसडी बर्मन का।

आज के भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना साधना फिल्म का गाना गीता दत्त की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल हैं, संगीत है एन दत्ता का।

साधना फिल्म का ये गाना आपने सुना, गीता दत्त की आवाज में, सही लुधियानवी के बोल संगीत एन दत्ता का। इसी के साथ आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न होता है।

हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे आकाशवाणी मुंबई का प्रसारण विविध भारती के कार्यक्रम हम बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।

सुनने वाले आप तमाम श्रोता दोस्तों का नमस्ते रोहतास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, नमस्ते रोहतास प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम है और इसमें आप सुनते हैं स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में। आज का इतिहास भी चर्चा का विषय होता है। समाचार पत्रों की सुर्खियां पर भी नज़र डाली जाती है और आप आनंद लेते हैं कुछ फिल्म संगीत के भी। तो आइए, नमस्ते रोहतास कार्यक्रम में सबसे पहले आज का सुविचार। विचार व्यक्तित्व की जननी है, जो आप सोचते हैं बन जाते हैं। स्वामी विवेकानंद।

और अब आइए एक नज़र डालते हैं आज के इतिहास पर। श्रोता दोस्तों, ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 13 जुलाई वर्ष का 194वां दिन है, यानी साल में अभी और 171 दिन शेष है।

1803 राजा राम मोहन राय और अलेक्जेंडर डफ ने 5 छात्रों के साथ स्कॉटिश चर्च कॉलेज शुरू किया था, आज के ही दिन यानी 13 जुलाई को। कलकत्ता के साप्ताहिक समाचार पत्र संजीवनी ने ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार का सर्वप्रथम सुझाव दिया था, आज के ही दिन यानी 13 जुलाई सन 1905 में। सन 1929 में आज के ही दिन यानी 13 जुलाई को क्रांतिकारी जतींद्रनाथ ने अपनी ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू की। भारत सरकार ने भारत रत्न सहित अन्य नागरिक सम्मानों को वापस लेने की घोषणा की थी सन 1977 में आज के ही दिन। सन 1998 में 13 जुलाई को ही भारत के लिएंडर पेस ने हॉल ऑफ फेम टेनिस चैंपियनशिप में अपने जीवन का प्रथम ATP खिताब जीता। ब्राज़ील ने CT, BT एवं NPT पर हस्ताक्षर किया।

आज के ही दिन सन 2001 में आज के ही दिन 13 जुलाई को वर्ष 2008 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी चीन को सौंपी गई थी।

और अब आइए एक नज़र डालते हैं उन प्रमुख नामों पर जो अपने कर्मों के बल पर दुनिया के पटल पर अमिट हस्ताक्षर कर गए और उनका जन्म आज ही है। अस्ताद देबू विश्व प्रसिद्ध भारतीय समकालीन नर्तक और कोरियोग्राफर थे। इनका जन्म सन 1947 में आज के ही दिन हुआ यानी 13 जुलाई को। जोराम थांगा राजनीतिक दल मिजो नेशनल फ्रंट के राजनीतिज्ञ हैं। इनका जन्म सन 1944 में 13 जुलाई को हुआ। 8वीं लोकसभा की सदस्य टी कल्पना देवी इनका जन्म सन 1941 में 13 जुलाई को यानी आज के ही दिन हुआ था।

सुनीता जैन हिंदी और अंग्रेजी की आधुनिक कहानीकार और उपन्यासकार रही हैं। इनका जन्म सन 1941 में आज के ही दिन यानी 13 जुलाई को हुआ। भीष्म नारायण सिंह भारतीय राजनीतिज्ञ रहे हैं जो असम और मेघालय के राज्यपाल भी रहे हैं। इनका जन्म सन 1933 में आज के ही दिन यानी 13 जुलाई को हुआ। हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री रही हैं बीना राय। इनका जन्म सन 1932 में आज के ही दिन यानी 13 जुलाई को हुआ। और केसरबाई केरकर पद्म भूषण से सम्मानित भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका रही हैं। इनका जन्म सन 1892 में आज के ही दिन हुआ। और अब एक नज़र डालते हैं उन नामों पर जो आज के ही दिन हमें अलविदा कह गए। यशपाल शर्मा प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर जो 1983 में पहली बार क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय टीम के सदस्य रहे हैं। इनका निधन सन 2021 में आज के ही दिन यानी 13 जुलाई को हुआ। और उपन्यासकार आशा पूर्णा देवी इनका निधन हुआ सन 1995 में आज के ही दिन यानी 13 जुलाई को।

और अब आइए हम आपको लिए चलते हैं गीत और संगीत की दुनिया में। सुनवा रहे हैं गीत फिल्म का एक गीत, और जब वापस लौटेंगे तो लेकर हाजिर होंगे हम स्थानीय सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी, समाचार पत्रों की सुर्खियों पर भी नज़र डाली जाएगी और मौसम का पूर्वानुमान पर भी। लेकिन इससे पहले सुनते हैं ये गीत फिल्म का खूबसूरत गीत।

जो मुझ में नहीं।

अब आइए नमस्ते रोहतास कार्यक्रम में एक नज़र डालते हैं स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर। बात सबसे पहले करते हैं भभुआ की। शहरों के शोर से दूर कैमूर वन क्षेत्र में चैनपुर प्रखंड अंतर्गत पहाड़ी पर करकटगढ़ जलप्रपात स्थित है। अब करकटगढ़ में 8 कमरों का इको हट बनेगा जहां पर्यटक ठहर सकेंगे। वन प्रमंडल पदाधिकारी कैमूर संजीव रंजन के अनुसार यह इको हट पर्यावरण के अनुकूल झोपड़ी नुमा बनाया जाएगा। इसके साथ ही करकटगढ़ में फॉरेस्ट रिसोर्स सेंटर बनाने की भी योजना है। करकटगढ़ में सुरक्षा के लिहाज से एक पेट्रोलिंग टीम भी बनाई गई है। यहाँ के दुर्गम पहाड़ी रास्तों को अब सुगम कर दिया गया है। 4 हेक्टेयर में फैला यह बड़ा इको पार्क और पहाड़ी हिस्से सैलानियों को हमेशा आकर्षित करते रहे हैं। यह स्थल काफ़ी पहले से ही पिकनिक स्पॉट के तौर पर विख्यात है। यहाँ अब हर तरह की बुनियादी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं और सड़कें भी दुरुस्त की गई हैं। यहाँ आने के लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई है, जिसके तहत पर्यटक सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ही भ्रमण कर सकते हैं।

कैमूर जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ होगी, इसके लिए प्रखंडों में रिक्ति की सूची तैयार करने की बात कही गई है। डीएम ने पहले हुई बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया था। संबंधित प्रखंडों के अफसर को भी पूरी पारदर्शिता का निर्देश दिया। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आशा कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी को भी और गंभीरता से अनुपालन का निर्देश है। इसको लेकर सभी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज्य पदाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और प्रखंड

अवर निरीक्षक मद्य निषेध की परीक्षा जिले में रविवार को 25 केंद्रों पर शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। परीक्षा में 12,120 परीक्षार्थियों को शामिल होना था, जिसमें से केवल 6,007 उपस्थित हुए और 6,113 अनुपस्थित रहे। इस प्रकार लगभग 50% अभ्यर्थियों ने परीक्षा नहीं दी। परीक्षा को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए थे। सभी केंद्रों पर पुलिस बल, दंडाधिकारी तथा प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की गई थी।

अब बात नौहट्टा की। नौहट्टा स्थित प्रखंड अंतर्गत पड़रिया गांव में प्राचीन हुलस ब्रह्म बाबा स्थान का नवयुवक कमेटी एवं ग्रामीणों के सहयोग से सौंदर्यीकरण कराया गया। परिसर में चबूतरा, चापाकल, टाइल्स और सुरक्षा रेलिंग का निर्माण किया गया, जिससे श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना में सुविधा मिलेगी। बात सासाराम की करते हैं। यहाँ पायलट बाबा धाम में लगा स्वास्थ्य सेवा का महाकैंप, 700 मरीजों की हुई जांच, चिकित्सकों ने मरीजों की जांच कर चिकित्सकीय परामर्श भी दिया। सूर्यपुरा के नए सरकारी डिग्री कॉलेज का उद्घाटन 15 जुलाई को होगा। तैयारियां अंतिम चरण में है। कॉलेज मॉडल विद्यालय भवन में संचालित होगा। उद्घाटन के बाद नियमित पठन पाठन भी शुरू होगा। कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अलाउद्दीन अजीजी ने बताया कि छात्रों की सुविधा के लिए बेंच, डेस्क सहित सभी जरूरी संसाधन जुटाए जा रहे हैं। उद्घाटन से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। उन्होंने कहा कि विभिन्न विषयों के कई प्राध्यापक योगदान दे चुके हैं। इसमें शैक्षणिक गतिविधियां बिना विलंब शुरू हो सकेंगी। नामांकन में 139 सीटों के मुकाबले 131 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। बात भभुआ की। यहाँ जलवायु के अनुकूल कृषि से ही किसान समृद्ध हो सकेंगे। इस संबंध में कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु के अनुकूल कृषि से ही कृषि लाभकारी साबित हो सकती है। इसके लिए अनुकूल वातावरण में ही उपयुक्त खेती की जानी चाहिए। कैमूर के विभिन्न हिस्सों में पारंपरिक खेती के अलावे पशुपालन, फल फूल उत्पादन की भी संभावना है। इसके लिए अनुकूल वातावरण भी है। अब नए तरीके से किसान कृषि के लिए उत्सुक भी हैं। वे नए प्रयोगों से कृषि से बेहतर उत्पादन ले सकेंगे। रासायनिक उर्वरकों का कम उपयोग कर जैविक खादों के जरिए बेहतर फसल ली जा सकती है। इसकी गुणवत्ता भी बेहतर होगी। नियोजित शिक्षक स्वाभिमान इकाई गठित, 41 सदस्यीय नई टीम बनी। बात सासाराम की है।

बनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन चंदन शहीद पहाड़ी स्थित शहीद डीएफओ संजय सिंह इको पार्क परिसर में किया गया। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए सघन वृक्षारोपण और बच्चों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वन क्षेत्र व पर्यटन स्थल पर गैस चूल्हा जलाने, खाना बनाने पर होगा प्रतिबंध। मांझर कुंड पहुंचे डीएम और एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। गंदगी देख जताई चिंता, नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। नोखा में परिवार नियोजन मेले में दंपतियों को किया गया जागरूक। परामर्श और गर्भ निरोधक साधनों का हुआ वितरण। नोखा प्रखंड क्षेत्र के पुराना नोखा मिश्रवलिया पटेल नगर में रविवार को ग्रामीणों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में वर्षों पुराने आहार पर हुए अतिक्रमण को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की गई तथा इसे शीघ्र अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग उठाई गई। आहार अतिक्रमण मुक्त होने से सिंचाई व्यवस्था होगी दुरुस्त।

पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रोहतास प्रमंडल पदाधिकारी स्टालिन फिडल के कुशल निर्देशन में वन महोत्सव कार्यक्रम हर्षोल्लास और उमंग के साथ मना

और अब आइए एक नज़र डालते हैं आज के अखबारों की सुर्खियों पर। श्रोता दोस्तों, रोज की तरह आज भी हमारे पास है दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, प्रभात खबर और अखबार हिंदुस्तान। दैनिक जागरण अपने मुख्य पृष्ठ पर लिखता है, मुजफ्फरपुर में बनेगा आर्किटेक्चर विश्वविद्यालय। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, विरासत को साथ लेकर शहरों के रास्ते खोलेंगे समृद्धि के द्वार। 1047 करोड़ की 982 योजनाओं का मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री ने किया शिलान्यास और उद्घाटन। कहा, पताही एयरपोर्ट का 10 दिनों बाद होगा शिलान्यास। मोदी और नीतीश बिहार को विकास के रास्ते पर लाए। अखबारों की सुर्खियों में फीफा के बारे में समाचार है कि पहली बार शीर्ष टीमें खेलेंगी सेमीफाइनल। फीफा विश्व रैंकिंग का टॉप 4 टीमें अर्जेंटीना, फ्रांस, इंग्लैंड और स्पेन सेमीफाइनल में पहुंची। सेमीफाइनल मुकाबले 14 जुलाई रात 12:30 पर और स्पेन बनाम फ्रांस, और 15 जुलाई रात 12:30 पर अर्जेंटीना बनाम इंग्लैंड का आनंद आप ले सकते हैं।

लॉर्ड्स में यास्तिका का ऐतिहासिक शतक, एक और भारतीय पुरुष टीम इंग्लैंड में T20 सीरीज में शर्मनाक हार का सामना कर आलोचनाएं झेल रही है, तो दूसरी ओर भारतीय महिला टीम की बल्लेबाज यास्तिका भाटिया ने लॉर्ड्स में वह कर दिखाया है जो इस मैदान के ऑनर्स बोर्ड पर सदियों तक भारत की शान बढ़ाता रहेगा। इंग्लैंड के विरुद्ध लॉर्ड्स में खेले जा रहे एकमात्र महिला टेस्ट मैच में शतक लगाकर यास्तिका ऐसा करने वाली दुनिया की पहली महिला बल्लेबाज बन गई हैं।

अखबारों की सुर्खियों में है यूपी झारखंड पर निर्भरता होगी खत्म। मुख्यमंत्री ने 6 जिलों में 44 नई खदानों को दी हरी झंडी। बिहार में पत्थर खनन होगा, 2300 करोड़ राजस्व मिलेगा। बिहार सरकार का यह फैसला आर्थिक और बुनियादी ढांचे के लिहाज से मास्टर स्ट्रोक माना जा

रहा है, इसके तीन मुख्य असर होंगे। पहला, राजस्व का बड़ा स्रोत 2300 करोड़ का सीधा राजस्व बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा, सरकार को सीधा लाभ होगा। दूसरा, महंगाई पर लगाम, परिवहन और टैक्स का बोझ घटने से गिट्टी और पत्थर के दाम गिरेंगे, जिससे घर बनाना सस्ता होगा। और तीसरा, बिचौलियों का अंत, ई नीलामी और MSTC पोर्टल के इस्तेमाल से ठेकेदारी में होने वाली धांधली रुकेगी और योग्य कंपनियां आएंगी।

और अब आइए एक नज़र डालते हैं आज के मौसम के पूर्वानुमान के बारे में। आज वर्षा 8 मिलीमीटर होने की उम्मीद है। अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस हो सकती है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 80 और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 45%। हवा की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। पवन दिशा की बात करें तो 260 डिग्री और क्लाउड कवर 6 ओक्टा पर रहने की उम्मीद है। आंधी और बिजली तूफान आदि तेज सतही हवाएं चल सकती हैं। और अब आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं ये संदेश।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: इसी के साथ नमस्ते रोहतास कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार।

ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं। बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार प्रभात। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: कि एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार, पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में होंगे लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के तीन प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए और यानिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन पुरुष सिंगल्स खिताब बरकरार रखा। अब समाचार विस्तार।

0: से पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे।
1: पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 राज्य विधानसभा ने 29 जून को पारित किया था। राज्यपाल आरएन रवि की स्वीकृति के बाद यह विधेयक अब कानून बन गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत असामाजिक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति या भविष्य में ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की संभावना वाले व्यक्ति को अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। निवारक हिरासत के आदेश राज्य सरकार, पुलिस आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट या सरकार द्वारा अधिकृत डीआईजी रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा जारी किए जा सकते हैं। कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक रिपोर्ट।
2: पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन, क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जाँच की गयी। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। अपने तीनों परीक्षण से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। समाचार कक्ष से प्राची बाजपेयी।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान श्री गोयल थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन करते हुए इन भारतीय छात्रों ने देश को गौरवान्वित किया है। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत पिंडाले, नई दिल्ली के रिशद गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने 87 देशों के 381 प्रतिभागियों के बीच रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि भारत के ओलंपियाड कार्यक्रम की सुदृढ़ता को रेखांकित करती है, जिसका नेतृत्व टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के राष्ट्रीय केंद्र होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन द्वारा किया जाता है। पिछले एक दशक में इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक भारतीय प्रतिभागी ने पोडियम फिनिश में जगह बनाई है। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज

0: गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फोरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भारत 2022 के बाद दूसरी बार इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच की मेजबानी कर रहा है।
1: इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का लोकार्पण करेंगे, जो AI आधारित वित्तीय अपराध जांच, मीडिया फोरेंसिक और क्राइम सीन मैनेजमेंट पर केंद्रित है। इसके साथ ही ऑनलाइन साक्ष्य जुटाने में सक्षम एशिया की पहली स्वदेशी साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वैन को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस सम्मेलन में 30 से अधिक वैश्विक कंपनियों की अत्याधुनिक तकनीकों की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। इसके बाद दोपहर को सहकार से समृद्धि का संकल्प आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्री दहगाम में कृषि उपज मंडी समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नवनिर्मित सब यार्ड का उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: भोपाल में आज MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कॉन्क्लेव का मुख्य फोकस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के विजन को भी साझा करेंगे। कॉन्क्लेव में देश विदेश की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, स्टार्टअप, उद्योग संगठनों और शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 6 लेन लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: यह सेवा पर्यटन और सिविल विमानन विभाग की ओर से संयुक्त रूप से चलाई जाएगी। आज से ही आम लोग इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे। इसके तहत राज्य सरकार के अनुदान से अब पर्यटक पटना जॉय राइड के लिए 2100 रूपए, राजगीर के लिए 4000 रूपए, वाल्मीकि नगर के लिए 5000 रूपए और कैमूर के लिए 6000 रूपए में टिकट बुक कर सकते हैं। यह सेवा 18 जुलाई से प्रत्येक शनिवार और रविवार को शुरू होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सविता पारीक।
0: छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र में वित्तीय मामलों पर चर्चा होगी और राज्य सरकार लगभग 8 संशोधन विधेयक भी पेश करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य हमले शुरू किए हैं। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले नागरिक नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमले राष्ट्रपति के निर्देश पर ईरानी सेना के जहाजों पर हमले के जवाब में किए गए हैं। खाड़ी क्षेत्रों में पहले से ही तनाव व्याप्त था और इन ताजा हमलों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का कल निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के उत्तरी पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार के अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश और अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग

0: अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। ये सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और पांचवां ग्रैंड स्लैम खिताब है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में राष्ट्रीय जल मिशन की अपर सचिव और मिशन निदेशक अर्चना वर्मा के साथ जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद विशाल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच फिर सैन्य टकराव, आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, जंग फिर शुरू, हॉर्मुज बंद। अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, जॉर्डन और यूएई को बनाया निशाना। वहीं नवभारत टाइम्स ने लिखा है, ओमान के पास व्यापारी जहाज पर हमला, 10 भारतीय बचाए गए, एक लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, क्षेत्र में जहाजों को निशाना बनाना तुरंत बंद होना चाहिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री 30 दिन जेल में रहे तो होना चाहिए निलंबन, जनसत्ता सहित कई अखबारों में है। 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने की सिफारिश, मानसून सत्र में पेश हो सकती है समिति की रिपोर्ट। नए वोटर के लिए माता पिता का SIR ब्यौरा अनिवार्य। दैनिक जागरण के अनुसार, मतदाता सूची में पहली बार नाम जुड़वाने वाले नए मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने लागू किया नया प्रावधान। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया न्यूजीलैंड यात्रा पर अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, वैश्विक भू राजनीतिक संकटों के दौर में दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय केवल द्विपक्षीय रिश्तों का विस्तार नहीं है, बल्कि ये तेजी से बदल रहे हिंद प्रशांत क्षेत्र में नई भू राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं की स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी है। आने वाला दशक दोनों देशों के संबंधों को हिंद प्रशांत के सबसे सशक्त और भरोसेमंद साझेदारियों में बदल सकता है। उत्तराखंड के गांवों से बढ़ते पलायन पर राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, देव भूमि से रूठे देव, पर्यटकों को बुला रहे पहाड़ पर, अपने लोगों से टूट रहा नाता, राज्य के 15% गांव अब निर्जन, पलायन करने में युवा आगे।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित 2 नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है देशभक्ति संगीत।

0: वतन
1: हकीकत फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ें थी। कैफे आज़मी के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी मदन मोहन ने। और अब इसी के साथ देशभक्ति संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ।

4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है आपके पत्रों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम पसंद आपकी।

दोस्तों आप सुन रहे हैं अपने पत्रों पर आधारित हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम पसंद आपकी, जहां हर धुन में छिपी है एक याद, हर गीत में बसता है एक एहसास और हर सुर दिलों को जोड़ने का काम करता है। यानी सुरों की महफिल सजे, दिलों में प्यार उतर आए, हर गीत सुनते सुनते कोई अपना याद आ जाए, मुस्कुराहटों की सौगात लेकर आए हर नगमा यहाँ, यही दुआ है कि आपका हर पल संगीत से महक जाए।

जमीर फिल्म के इस गाने को सुनना चाहते हैं। थाना मोड़ गढ़नोखा रोहतास से मुन्ना भाई मंसूरी, नजबून निशा, सद्दाम मंसूरी, नगमा निशा, लाल बाबू, सिमरन अली, अरबाज मंसूरी, सैफ अली, शबाना और शाहबाज। ब्रह्मपुरा मानीगाछी से आप हैं भाई अच्छे लाल राय, श्रीमती पानो देवी, मुकेश कुमार राय, प्रेम कुमार और प्रिंस कुमार। नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी बिहार से अक्रम हुसैन प्रिंस, इशरत अक्रम, रुबीना वसीम, बाबू आरिज वसीम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, नवासा अरहान बाबू, हमजा बाबू, मुजम्मिल बाबू, हुमैरा नाज, सुमैरा नाज, नवासी अबीहा नाज, साजिया साहिन नाज, नाजिया नूरी नाज, बच्चू शेख और चीना शेख, कोकिलवारा और आई जिला मुजफ्फरपुर से मोहम्मद फैजल शेख और नुजहत जहां नाज, और शेख टोली समस्तीपुर से मोहम्मद शाहनवाज परवेज और मुसर्रत जहां नाज।

सावन की बूंदों में छिपा है प्यार का पैगाम, भीगी हवाओं में बसता है अपनों का नाम। हर दिल झूम उठे, हर चेहरा मुस्कुराए, संगीत की इस महफिल में सावन खुशियां बरसाए। दोस्तों, बारिश की रिमझिम फुहारें जब धरती को प्यार से छूती हैं तो हर ओर हरियाली, ताजगी और खुशियों का एहसास बिखर जाता है। सावन का महीना आने के साथ यादों, प्रेम और मधुर संगीत का सौगात लेकर आता है। आइए इसी सुहाने मौसम को और भी हसीन बनाते हैं इस गीत के साथ।

इस गीत को सुनना चाहते हैं हमारे ये श्रोता। फुटानी चौक नरहान स्टेट से ललन मिश्रा, उदयकांत ठाकुर, अमन परासर, बेबी आराध्या, लल्लू पंडित, मिसर मोहल्ला नरहान बाजार से आप हैं भाई फटफटिया झा, गुंजन परासर, अमित सुमित, छोटू और बीके सुरगनैया, कोटवा नारायणपुर, बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय, और शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय, और आप हैं सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरबा से भाई कारी राय कारी, श्रीमती मीना कारी, पुंज राजार्यन, आरती पूंजाकर्षण पुंज, जय श्री, पिंकी, रिंकी, रिकी, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा और ढोली सकरा से जयंत कुमार बैरागी।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म कागज के फूल से, पसंद आप सबों की है। कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, बेगम निखत, प्रवीण, सदफ आरजू, साहिल अरमान, मशकूर आलम, शमा प्रवीण और बेबी अलीशा। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से आप हैं, आपने अपना नाम नहीं लिखा। और गोकुल चंद, गोकुल चौक गंगजला सहरसा से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी, बुल्की वाली, फलना झा। नया नगर सुपौल से श्वेता रंजन, पप्पू जी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अमिताभ कुमार, गजेंद्र कुमार निराला और इनके ढेर सारे दोस्त। तो लीजिए सुनिए कागज़ के फूल फिल्म का यह गीत।

और अब आइए कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं आबरू फिल्म का एक गीत, पसंद आप सबों की है। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से आप हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और ज्ञावेंद्र कुमार वर्मा। तेलंगाना भोनगीर से आप हैं मोहम्मद बुरहानुद्दीन, यूसुफुद्दीन, अब्दुल बाबा अंजाना और आपके परिवार के सभी सदस्य।

इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम पसंद आपकी यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बिहार हेली और एयर टूरिज्म सेवा की शुरुआत करेंगे। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन। भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा और जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर करेंगे नामांकन। प्रदेश में कृषि के लिए कमजोर मानसून को देखते हुए विकसित भारत जीराम जी के श्रमिकों को खरीफ की खेती के लिए मिलेगी छूट। और मौसम विभाग ने आज अररिया, बांका, भागलपुर, कटिहार और किशनगंज समेत 8 जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज से हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का शुभारंभ करेंगे। पर्यटन विभाग की ओर से पहले चरण में पटना, पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर, कैमूर जिले के मां मुंडेश्वरी और नालंदा के राजगीर को शामिल किया गया है। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: यह सेवा पर्यटन और सिविल विमानन विभाग की ओर से संयुक्त रूप से चलाई जाएगी। आज से ही आम लोग इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे। इसके तहत राज्य सरकार के अनुदान से अब पर्यटक पटना जॉय राइड के लिए 2100 रुपये, पटना राजगीर के लिए 4000 रुपये, पटना वाल्मीकि नगर के लिए 5000 रुपये और पटना कैमूर के लिए 6000 रुपये में टिकट बुक कर सकते हैं। प्रति टिकट सरकार अधिकतम 15422 रुपये का अनुदान दे रही है। यह सेवा 18 जुलाई से प्रत्येक शनिवार और रविवार को शुरू होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सविता पारीक।
0: इसके अलावा मुख्यमंत्री आज ही पर्यटन नीति के अंतर्गत मुजफ्फरपुर में एम्यूजमेंट पार्क परियोजना और मुख्यमंत्री होम स्टे नीति के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। श्री चौधरी बोधगया में 165 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विश्व स्तरीय ध्यान और अनुभव केंद्र का शिलान्यास और 28 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों के विकास और सौंदर्यीकरण कार्यों का उद्घाटन तथा शिलान्यास भी करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि मुजफ्फरपुर स्थित MIT परिसर में आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। मुजफ्फरपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय तकनीकी शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार का उत्कृष्ट केंद्र बनेगा। इससे प्रदेश के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा के नए अवसर उपलब्ध होंगे। श्री चौधरी ने कहा कि मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य भी जल्द प्रारंभ होगा। वहीं पटना मुजफ्फरपुर रैपिड रेल कॉरिडोर बनने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय लगभग 40 मिनट रह जाएगा। साथ ही हल्दिया रक्सौल हाईवे के निर्माण से मुजफ्फरपुर से मात्र 6 घंटे में कोलकाता पहुंचा जा सकेगा। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है। भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा और जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसके अलावा जनशक्ति जनता दल की उम्मीदवार वीणा मानवी भी अपना पर्चा दाखिल करेंगी। उपचुनाव के लिए अब तक 11 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। उम्मीदवार 16 जुलाई तक नाम वापस ले सकते हैं। उपचुनाव के लिए मतदान 30 जुलाई को होगा, जबकि मतगणना 3 अगस्त को कर

जाएगी। प्रदेश में कृषि के लिए कमजोर मानसून को देखते हुए विकसित भारत जीराम जी के श्रमिकों को खरीफ की खेती को लेकर छूट दी जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में जिलाधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। विभागीय मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि कम वर्षा वाले जिलों में पूर्व में घोषित कृषि चरम मौसम लीन पीरियड की तिथियों में बदलाव किया गया है। कम वर्षा और अल नीनो के गंभीर प्रभाव को देखते हुए प्रभावित जिलों में 10 जुलाई से 19 जुलाई तक वीबी जी राम जी योजना के तहत काम कराया जा सकेगा। संशोधन के बाद शेखपुरा, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, भागलपुर और बांका में 10 अगस्त तक लीन पीरियड प्रभावी रहेगा। वहीं रोहतास, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, अरवल, पटना, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, औरंगाबाद और गया में ये पीरियड 9 अगस्त तक माना जाएगा। प्रदेश के किसानों को अब हर महीने बिजली बिल मिलेगा। इससे पहले किसानों को प्रत्येक 3 माह पर बिजली बिल का भुगतान करना होता था। बिजली कंपनियों की अपील पर बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने 3 महीने के बदले प्रत्येक महीने बिजली बिल भुगतान करने की मंजूरी दी है। इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजा गया है। इस पहल से लगभग 8 लाख किसान लाभान्वित होंगे, जिन्हें 3 महीने का बिल एक साथ भुगतान करने में परेशानी हो रही थी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जिलावार समीक्षा का दूसरा चरण आज से पटना से शुरू हो रहा है। इस समीक्षा बैठक में सभी अंचलाधिकारी और राजस्व अधिकारी शामिल होंगे। इस दौरान राजस्व संबंधी अहम मामलों और जन शिकायतों में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की जाएगी। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण का शुभारंभ किया है। इसके अंतर्गत जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार पंजीकरण आज से माई भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। ये प्रतियोगिताएं 15 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए होंगी। युवा अपनी रचनाएं हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर कार्यक्रम के लिए आप अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या माई गव ओपन फोरम के माध्यम से भी ऑनलाइन अपने सुझाव दे सकते हैं। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और SMS से प्राप्त लिंक का अनुसरण करके आप सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं। आगामी कड़ी के लिए सुझाव 24 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मानसून की सक्रियता से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज अररिया, बांका, भागलपुर, मधेपुरा, पूर्णिया और सुपौल जिले में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। वहीं कटिहार और किशनगंज जिले में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दी है।
1: दिनांक 13 जुलाई राज्य के कटिहार एवं किशनगंज जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात तथा अत्यधिक भारी वर्षा के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के अररिया, बांका, भागलपुर, मधेपुरा, पूर्णिया एवं सुपौल जिलों में मेघ

0: अर्जुन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों जमुई, खगड़िया, मुंगेर एवं सहरसा जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
1: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान सीवान जिले के कुछ स्थानों पर भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। जिले के मैरवा में सबसे अधिक 75.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। अब तक पूरे प्रदेश में 155.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इस बीच हमारे संवाददाता ने बताया है कि अररिया जिले के विभिन्न भागों में देर रात से आज सुबह तक तेज बारिश हुई है। बारिश से सदर अस्पताल परिसर, कचहरी, बस स्टैंड में जल जमाव हो गया है। नेपाल के तराई क्षेत्रों में भारी बारिश और उत्तर बिहार के कई क्षेत्रों में लगातार बारिश से गंडक समेत अन्य नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। गंडक नदी का पानी पश्चिम चंपारण जिले के योगापट्टी प्रखंड के सिसवा गांव में कई घरों में प्रवेश कर गया है। जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता बाढ़ और कटाव की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। कोसी नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हुई है। इसे देखते हुए नदी पर स्थित बराज के कई फाटकों को खोल दिया गया है। इधर पटना और मुंगेर में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। मोकामा घाट और ओटा में गंगा नदी के जलस्तर बढ़ने से तेजी से कटाव भी हो रहा है। जल संसाधन विभाग इन क्षेत्रों में कटाव को देखते हुए विशेष निगरानी बरत रहा है। वहीं मुंगेर में भी प्रत्येक घंटे 2 सेंटीमीटर की रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। पूर्व मध्य रेलवे ने मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, हाजीपुर, सीतामढ़ी और मोतिहारी सहित सभी स्टेशनों के सर्वर अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। इसके लिए सिस्टम को यूनिफाइड टिकटिंग नेटवर्क से अपग्रेड किया जाएगा। इस नेटवर्क के उपयोग से यात्री टिकट 5 सेकंड में बुक कर सकेंगे। वहीं IRCTC और PRS काउंटर से भी बुकिंग कम से कम समय में हो सकेगी। ये सुविधा पूर्व मध्य रेलवे के सभी 5 रेल मंडलों में उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 15 जुलाई को भागलपुर के गौराडी के कासिल में नवस्थापित डिग्री कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान श्री चौधरी प्रदेश के सभी नवस्थापित डिग्री कॉलेजों के सत्रारंभ की भी शुरुआत करेंगे। जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियों का निरीक्षण किया। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का 67वां स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। पूर्व कुलपति प्रोफेसर A.K. रॉय, पूर्व कुलपति प्रोफेसर क्षेमेंद्र कुमार और अन्य गणमान्य अतिथियों ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर पुलिस ने अवैध तरीके से आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का उद्भेदन किया है। इस मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से लैपटॉप समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त किए गए हैं। मधुबनी जिले में ऐतिहासिक सौराठ सभा का कल समापन हो गया। सभा के अंतिम दिन पंजीकारों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सौराठ सभा समिति के अध्यक्ष कृष्णकांत झा गुड्डू ने बताया कि इस वर्ष विभिन्न पंजीकारों के पास 30 से 100 सिद्धांत यानी वैवाहिक सहमति संपन्न हुई। उन्होंने कहा कि इस वर्ष की सभा में पंजी प्रथा के प्रति समाज में नई जागरूकता देखने को मिली है। विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों द्वारा भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। बिहार के सेतु मिश्रा ने चीन में आयोजित एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही वे एशियाई एथलेटिक्स में 2 पदक जीतने वाले राज्य के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। सेतु मिश्रा पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी के रहने वाले हैं। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री रविंद्रन शंकरन ने बताया कि सेतु ने 4x400 मीटर मिश्रित रिले में भारतीय टीम को स्वर्ण पदक तथा पुरुष 4x400 मीटर रिले में रजत पदक दिलाने में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सेतु मिश्रा की इस उपलब्धि पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी अखबारों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की घोषणा को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, नई सरकार के 100वें दिन दीदियों को दूसरी किस्त, छूटी हुई जीविका दीदियों को भी पहली किस्त मिलेगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, मुख्यमंत्री होम स्टे प्रोत्साहन योजना के लिए राज्य के 16 जिलों में 34 पर्यटन स्थल चयनित। महिला और युवा उद्यमियों को 25,000 रुपये अतिरिक्त सहायता देगी राज्य सरकार। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है बिहार में पत्थर

0: और गिट्टी के मामले में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बड़ा कदम। अखबार लिखता है, मुख्यमंत्री ने 6 जिलों में 44 नई खाद्यान्नों को दी हरी झंडी। प्रभात खबर ने लिखा है, वीबी जी रामजी योजना के तहत काम कराने की अवधि बदली, 20 से 17 जिलों में काम रुकेगा, धान बुआई की अवधि में हुआ बदलाव। आज अखबार ने फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ी खबर पर लिखा है, अर्जेंटीना छठी बार सेमीफाइनल में। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बिहार हेली और एयर टूरिज्म सेवा की शुरुआत करेंगे। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन। भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा और जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर करेंगे नामांकन। प्रदेश में कृषि के लिए कमजोर मानसून को देखते हुए विकसित भारत जीराम जी के श्रमिकों को खरीफ की खेती के लिए मिलेगी छूट। और मौसम विभाग ने आज अररिया, बांका, भागलपुर, कटिहार और किशनगंज समेत 8 जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आपको बता दें एक बार फिर से आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन। आकाशवाणी के पटना दरभंगा केंद्र से इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा 9:10 पर। 10:00 रसमंजरी कार्यक्रम में आप सुनेंगे फिल्म संगीत और 10:30 प्रस्तुत करेंगे अंग्रेजी वार्ता। 10:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनेंगे कुछ गीत अनुपमा शैरन की आवाज में। 12:00 प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम बिहार का लोक संगीत और 12:30 पर सुनेंगे कार्यक्रम सुरों का सफर।

0: सांधकारिन सभा में शाम 4:30 पर प्रस्तुत करेंगे युवाओं के लिए कार्यक्रम युववाणी। भोजपुरी कार्यक्रम आरती का प्रसारण होगा शाम 5:30 पर। ग्रामीण भाई बहनों का कार्यक्रम चौपाल प्रस्तुत करेंगे शाम 6:30 पर और खेती गृहस्थी कार्यक्रम में किसान भाई कृषि।
1: आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है FM बैंड के 103.4 MHz पर।

अभी से थोड़ी देर बाद यानी पूर्वाह्न 9:10 पर आप सुनेंगे हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका। विविध भारती के कार्यक्रम सुबह 9:30 पर हम आकाशवाणी के मुंबई के

से रिले करेंगे। हिंदी समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पूर्वाह्न 10 बजे। पूर्वाह्न 10 बजकर 5 मिनट पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य। बच्चों में वायरल इन्फेक्शन बाल गोपाल के बारे में बातचीत की जाएगी। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर विवेक प्रभात। पूर्वाह्न 10 बजकर 30 मिनट पर सुनिए भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी रसधार। पूर्वाह्न 10 बजकर 45 मिनट पर भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स का प्रसारण किया जाएगा। पूर्वाह्न 11 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी मुंबई का प्रसारण विविध भारती के कार्यक्रम।

आकाशवाणी सासाराम स्टूडियो से शाम 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। बहनों के लिए कार्यक्रम घर आंगन की प्रस्तुति होगी शाम 5:30 पर। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे अधिक आत्मनिर्भरता से आता है आत्मविश्वास, झड़ते बालों की रोकथाम पर बातचीत करेंगे, साड़ी के विभिन्न रूप पर भी हम चर्चा करेंगे और अलावे इसके कुछ फिल्म संगीत भी आप सुनेंगे। शाम 6:00 आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीत। शाम 6:05 पर आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले किया जाएगा भोजपुरी बुलेटिन समाचार। ग्रामीण कार्यक्रम गांव घर की प्रस्तुति होगी शाम 6:10 पर। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे बरसाती बीमारियों और बचाव विषय पर भेंट वार्ता। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर जितेंद्र कुमार और इनसे बातचीत करेंगे डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी। शाम 6:40 पर हम प्रस्तुत करेंगे भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत। प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद की प्रस्तुति होगी शाम 7:00। शाम 7:15 पर सुनिए सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास। प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले किए जाएंगे शाम 7:25 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम ई मनपसंद आज आप सुनेंगे शाम 7:50 पर। समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे रात्रि 8:45 पर। रात्रि 9:00 सुनिए भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। वंदगी इस कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी रात्रि 9:15 पर। रात्रि 9:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किए जाएंगे। हिंदी एल्बम सॉन्ग्स का कार्यक्रम आकाशवाणी सासाराम स्टूडियो से हम प्रस्तुत करेंगे रात्रि 10:00 और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने। हिंदी समाचार रात्रि 11:00 और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे।

आग फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज़ में। बेजाद लखनवी का लिखा ये गीत, जिसे स्वरबद्ध किया था राम गांगुली ने। गीत मालिका कार्यक्रम में अब आइए हम आपको सुनवाएं मुकेश और लता की आवाज़ों में आह फिल्म का एक गीत। हसरत जयपुरी हैं गीतकार और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे, मुकेश और लता की आवाज़ें थीं। हसरत जयपुरी थे गीतकार और संगीतकार थे शंकर जयकिशन। और अब आइए सुनते हैं आनंद फिल्म का ये गीत।

अंदाज़ फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज़ में। मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी नौशाद ने। और अब इसी के साथ गीत मालिका कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम दे दीजिए सर।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ब्लॉकबस्टर फिल्म मेकर की, जिसने साल 1973 से साल 1989 के बीच अमिताभ बच्चन के साथ एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में बनाई और सिनेमा के इतिहास पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों से लिखवा लिया।
1: बुजुर्गों ने

अरे तो लो भैया हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल।

0: धन्यवाद।
1: आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें करेंगे जाने माने फिल्मकार प्रकाश मेहरा की। प्रकाश मेहरा का जन्म 13 जुलाई 1939 को बिजनौर में हुआ था और उनकी परवरिश दिल्ली के चांदनी चौक के इलाके में हुई। एक सामान्य परिदृश्य में पले बढ़े प्रकाश मेहरा ने आम आदमी की जिंदगी को बहुत करीब से देखा, उसके दुख दर्द, उसके जीवन की कमियों को और उसके जीवन में हो रही नाइंसाफियों को अपने जहन के भीतर जज्ब किया। तब उन्हें पता नहीं था कि वो आगे चलकर बन जाएंगे फिल्मकार और उनका नायक एक आम आदमी होगा जो बड़े बड़े कारनामे करेगा। सन 1950, प्रकाश मेहरा मुंबई आए नौकरी की तलाश में और किसी तरह से जिंदगी उन्हें फिल्मों की दुनिया में ले गई। वो बन गए प्रोडक्शन मैनेजर। बरस दर बरस प्रकाश मेहरा जिम्मेदारी भरा ये काम करते रहे और उसके बाद उन्होंने एक लकीर पार की। सन 1968, प्रकाश मेहरा के निर्देशन में पहली फिल्म आई हसीना मान जाएगी।

0: पदम।
1: हसीना मान जाएगी शशि कपूर की एक बेहतरीन फिल्म में शुमार हुई। ये फिल्म बेहद कामयाब थी। प्रकाश मेहरा की इस फिल्म के जरिए धाक जम गई। हसीना मान जाएगी बनाने के बाद प्रकाश मेहरा ने कुछ और फिल्में बनाई और इन फिल्मों के जरिए जैसे वो अपने मुहावरे को तलाश कर रहे थे, जैसे फिल्म संसार कदम दर कदम एक लेजेंड फिल्म मेकर तैयार कर रहा था। सन 1971 संजय खान और फिरोज खान को साथ में लेकर उन्होंने बनाई फिल्म

प्रकाश मेहरा अपनी फिल्मों की कहानी पर बड़ा जोर देते थे और कोई अच्छी कहानी उनका मन मोह लेती थी। ऐसी ही एक अच्छी कहानी थी एक पुलिस वाले की कहानी, और प्रकाश मेहरा इस कहानी को लेकर अलग अलग नायकों के पास जाते रहे। ये नायक इस कहानी को ठुकराते रहे, लेकिन प्रकाश मेहरा का विश्वास कम नहीं हुआ। इस कहानी को एक तरफ रखा और सन 1972 में वो लेकर आए समाधि।

0: इसी साल उनकी फिल्म आई आन बान। आखिरकार एक के बाद एक कई फ्लॉप फिल्म देने वाले एक बेहद लंबे कद के दुबले पतले अभिनेता अमिताभ बच्चन को लेकर उन्होंने अपनी उस महत्वाकांक्षी फिल्म पर काम शुरू किया। सन 1973 20 मई का दिन फिल्म जंजीर रिलीज हुई और इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन को बना दिया एंग्री यंग मैन। दरअसल एंग्री यंग मैन ये जो जुमला है ये नाटककार जॉन ऑसबोर्न के प्ले लुक बैक इन एंगर से लिया गया है। इसी नाम की एक फिल्म बनी है। प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन को फिल्म जंजीर के जरिए एंग्री यंग मैन बना दिया।
1: यही है वो इलाका जहां लोग तुम्हें जानते हैं शेर खान। अब न तो वर्दी है न कुर्सी और ना ही मैं ड्यूटी पर हूँ। इलाका तुम्हारा है और मैं अकेला हूँ।
2: मतलब कब बात बोलूं साहब?

0: फिल्म जंजीर एक कल्ट फिल्म मानी जाती है, एक कालजयी फिल्म जिसने एक बेमिसाल निर्देशक और एक जबरदस्त हीरो हिंदी फिल्म सिनेमा को दिया। फिल्म जंजीर के बाद प्रकाश मेहरा ने अगले 15 वर्षों में अमिताभ बच्चन के साथ 7 फिल्में और बनाई। आइए एक के बाद एक इन फिल्मों से होकर गुजरें। सन 1976, खून पसीना।
1: अरे खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे।

0: सन 1981 प्रकाश मेहरा के करियर का एक बेमिसाल साल रहा। इस साल वो लेकर आए मुकद्दर का सिकंदर। एक बार फिर अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना एक साथ।
1: सिकंदर का
2: मैं आऊं विशाल।
1: पंडित जी शुरू कीजिए।
3: मंगलम भगवान
1: बाल मियां, अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें सौंप रहा हूँ।
3: वस्त्र कंधे पर रखने
1: सिकंदर, सिकंदर, क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं मेरे यार, जरा सी झड़प हो गई, किससे हुई? बाल किससे हुई?
4: नहीं बताती हूँ।
1: नहीं,
4: दिलावर मुझे उठाकर ले गया था, सिकंदर मुझे बचाकर यहाँ ले आया। अगर सिकंदर नहीं होता, तो मैं भी तुम्हें वही नहीं होती।
1: बस, बस करो मेम साहब।
5: मेम साहब,
1: क्या काम नहीं तेरे मेम साहब है जिससे तू?
5: नहीं।
4: मुझे तो सिकंदर सारी जिंदगी मेम साहब को
1: करता है।
4: सिकंदर आज मुझे कह लेने दो, आज मुझे कह लेने दो विशाल। सारी जिंदगी सिकंदर मुझसे दिल ही दिल में प्यार करता रहा और मैंने इसे सिवाय नफरत के कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया।
1: सिकंदर ये तुमने क्या किया? क्या?
0: इसी साल आई फिल्म लावारिस।
6: तुम?
7: हाँ मैं। तुमने मुझे लावारिस कहा, जानती हो लावारिस क्या होता है?
8: मेम साहब लावारिस गंदी नाली का वो कीड़ा होता है जो न जीता है न मरता है। अपना पाप समझकर लोग जिसे फुटपाथ पर फेंक जाते हैं मरने के लिए। मौत भी कमबख्त उसे पूरा नहीं खाती, अधमरा छोड़ जाती तुम्हारे जैसे इंसानों के नोचने के लिए। इस दुनिया में कौन कैसा क्यों है ये जाने बगैर कभी किसी पे छींटे मत कसना। और गुनाह के पीछे गुनाहगार कौन है ये कोई नहीं जानता।
0: प्रकाश मेहरा की फिल्में एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही थीं। अमिताभ बच्चन का सितारा लगातार जगमगा रहा था। जाने माने फिल्मकार मनमोहन देसाई ने प्रकाश मेहरा के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि शायद ही ऐसा कोई भारतीय होगा जिसने प्रकाश मेहरा की फिल्में नहीं देखी हों। एक ऐसा फिल्मकार जिसने ब्लॉकबस्टर टर्म को जन्म दिया। एक ऐसा फिल्मकार जिसने हिंदी सिनेमा में मसालेदार सिनेमा का नया व्याकरण गढ़ा और सारे देश को अपने तिलस्म की गिरफ्त में ले लिया। सन 1982 में आई नमक हलाल। सन 1984 अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा के जादुई साथ की फिल्म शराबी। कहते हैं कि जब सूरज बहुत तेज चमके उसके बाद शाम नजदीक होती है

के बाद एक कमाल की फिल्में देने के बाद जैसे वक्त करवट ले रहा था। सन 1989 प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन के साथ वाली एक बड़ी फिल्म आई जादूगर। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म चारों खाने चित हो गई। ऐसा लगा जैसे एक बेमिसाल फिल्मकार का जादू टूट गया। एक वक्त था जो पीछे छूट गया, एक चमक थी जो मध्यम पड़ गई, एक कहानी थी जो खत्म होने लगी। अमिताभ बच्चन के अलावा प्रकाश मेहरा ने दूसरे कलाकारों के साथ भी काम किया है। सन 1974 में प्रकाश मेहरा के निर्देशन वाली फिल्म आई थी हाथ की सफाई। वादा।

सन 1991 में अनिल कपूर को लेकर प्रकाश मेहरा ने बनाई जिंदगी एक जुआ। सन 1996 में जाने माने अभिनेता राजकुमार के बेटे पुरू राजकुमार को फिल्मों में उतारने के लिए उन्होंने निर्देशित की बाल ब्रह्मचारी। ये प्रकाश मेहरा के निर्देशन वाली आखिरी फिल्म थी। इसके बाद प्रकाश मेहरा ने किसी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। सन 1993 में आई फिल्म दलाल के निर्माता प्रकाश मेहरा ही थे। इस फिल्म के निर्देशक थे पार्थो घोष। प्रकाश मेहरा ने एक जमाने में अमिताभ बच्चन से ये वादा किया था कि जिस दिन वो हिट फिल्म नहीं बना पाएंगे उस दिन अमिताभ बच्चन के साथ काम करना बंद कर देंगे। सन 1989 के बाद प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन के साथ कोई फिल्म नहीं की। प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन, इन लोगों ने मिलकर हिंदी सिनेमा का एक नया इतिहास गढ़ा है, ब्लॉकबस्टर फिल्मों का इतिहास। वो समय जरूर बीत गया लेकिन मसालेदार फिल्मों का दौर नहीं बीता। अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा को चाहने वाले आज भी बड़े चाव से देखते हैं 70 और 80 के दशक की वो बेमिसाल फिल्में।

प्रकाश मेहरा गीतकार भी थे। उन्होंने अपनी कई फिल्मों में गाने भी लिखे हैं, जैसे फिल्म लावारिस का ये गाना भी प्रकाश मेहरा की कलम का कमाल था।

17 मई 2009 प्रकाश मेहरा ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। पीछे रह गईं उनकी बनाई बेमिसाल फिल्में, वो कहानियां जिन्होंने हमें हंसाया और रुलाया, वो कहानियां जिन्होंने हमारा दिल जीता, वो फिल्में जिनके दृश्यों को देखकर हमने तालियां बजाई, वो फिल्में जिनके दृश्यों को देखकर हमने निर्देशक की वाह वाह की। आज प्रकाश मेहरा नहीं है, लेकिन उनका सिनेमा है, और उस सिनेमा का कमाल है, किसी लेखक ने कहीं लिखा, फॉर्मूला खत्म नहीं होता। प्रकाश मेहरा की फिल्मों का फॉर्मूला आज दूसरे निर्देशकों की फिल्मों में जिंदा है। फॉर्मूला कभी खत्म नहीं होता। फॉर्मूला फिल्मों में प्रकाश मेहरा हमेशा जिंदा रहेंगे।

0: कानून बन गए हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन, क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जाँच की गयी। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। अपने तीनों परीक्षण से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरणों में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। इस योजना के पहले चरण में पश्चिम चंपारण जिले का वाल्मीकि नगर, कैमूर जिले का मां मुंडेश्वरी और नालंदा जिले का राजगीर शामिल हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी। इस दौरान वित्तीय मामलों पर चर्चा होगी और राज्य सरकार लगभग 8 संशोधन विधेयक भी पेश करेगी। कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इन युवा भौतिकविदों ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए देश को गौरवान्वित किया है। भारत ने इस प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमले किए हैं। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले नागरिक नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमले ईरानी सेना द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर हमले के जवाब में किए गए हैं। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब बरकरार रखा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है FM बैंड के 103.4 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में पूर्वाह्न के 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य।
4: नमस्कार श्रोताओं, हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ है आपकी रेडियो दोस्त चंदा। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं बच्चों से जुड़ी इन्फेक्शंस के बारे में। आज के हमारे शिशु रोग विशेषज्ञ

0: विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विवेक प्रभात जी। नमस्कार, हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्ते, आपको भी, हमारे सभी श्रोतागण को भी मेरा नमस्कार।
0: डॉक्टर साहब, आज हम बच्चों के इन्फेक्शंस के बारे में बात करेंगे, तो बच्चों में जो वायरल इन्फेक्शन होता है वो क्या होता है?
1: देखिए, बच्चों में वायरल इन्फेक्शन जो बीमारी होती है, इसमें वायरस जो विषाणु रहता है, सूक्ष्म जीव होता है, उसकी एंट्री बच्चों के शरीर के अंदर हो जाती है और वो जो वायरस रहता है वो अपने बच्चों के शरीर के अंदर में मल्टीप्लाई करता है, अपनी संख्या बढ़ाता है और उसके रिस्पॉन्स के कारण जो भी चीज़ सिम्टम्स डेवलप होते हैं उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं वायरल इन्फेक्शन।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, इन्फेक्शंस होने के मुख्य कारण क्या होते हैं? क्योंकि बहुत सारे माता पिता को पता नहीं होता है कि हमारे बच्चे को इन्फेक्शंस हो गया है, या फिर बच्चे को जब इन्फेक्शंस हो जाते हैं, बुखार आता है, तब हम लोग सोचते हैं भाई हमारे बच्चे को बुखार हो गया, 101 डिग्री, 2 डिग्री हो जाता है तो हम चिंतित हो जाते हैं। तो लेकिन ये इन्फेक्शंस होता क्यों है, इसके मुख्य लक्षण क्या होते हैं, क्या कारण है?
1: देखिए, जो वायरल इन्फेक्शन होने के मुख्य कारण, पहला चीज तो होता है कि बच्चों की इम्यूनिटी जनरली होती है इमेच्योर, टोटली डेवलप नहीं रहती है, जिसके कारण कि उनकी बॉडी जो होती है किसी भी विषाणु का एंट्री पॉइंट अच्छा रहता है,
0: कोई भी उनका इम्यूनिटी सिस्टम
1: कमजोर होता है। दूसरी चीज़ होती है कि यदि कोई बच्चा दूषित इन्फेक्टेड खाना खाए या इन्फेक्टेड पानी पी ले, उसके कारण होता है। तीसरा चीज़ होता है कि कॉन्टामिनेटेड, जो दूषित कोई भी वस्तु रहे उसके कारण होता है, जैसे बच्चा खिलौना शेयर कर रहा है, इन्फेक्टेड यदि कोई बच्चा है तो उसके शेयरिंग के कारण इन्फेक्शन दूसरे बच्चों में जा सकता है। कंटामिनेटेड दरवाज़ा उसको टच करता है, उसके कारण फैल सकता है। कंटामिनेटेड सतह रहती है, जो जमीन से रहती है, उस पर बच्चे खेलते हैं, उसके कारण इन्फेक्शन फैल सकता है। और लास्ट होती है कि कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, यदि वो खांसता या छींकता है तो जो उसके वायरस रहते हैं, ड्रॉपलेट्स, जो पानी की बूंदें छींक के साथ निकलती है, उसके कारण नॉर्मल पर्सन पे, बच्चों पे जाती है तो फिर इन्फेक्शन हो जाता है।
0: इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप छींकते हैं या खांसते हैं तो मुंह पर रुमाल जरूर रखना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, नवजात और छोटे बच्चों में कौन कौन से वायरल इन्फेक्शंस अधिक देखने को मिलते हैं?
1: देखिए, नवजात बच्चों में जैसे रहता है कि एक साइटोमेगालो वायरस होता है, जो कि प्रेगनेंसी के समय में माँ से बच्चे की तरफ इन्फेक्शन हो जाता है। दूसरी चीज होता है कि बच्चों में रेस्पिरेटरी सिंसेशियल वायरस होता है, RSV जिसको बोलते हैं, इसके कारण जैसे कॉमनली भाषा में आप लोग सुनते होंगे कि निमोनिया हो गया है, छोटे बच्चों में ब्रोंकियोलाइटिस करके रहती है, निमोनिया लाइक सिम्टम्स होते हैं, ये चीज़ें होती हैं। तीसरा चीज़ होता है कि रोटा वायरस एक इन्फेक्शन होता है, जिसके कारण कि बच्चों में गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जो कि लूज मोशन, डायरिया कराता है। तीसरी चीज़ होती है इन्फ्लुएंजा वायरस, जो राइनो वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस रहता है, जो कि बच्चों में सर्दी जुकाम या फ्लू लाइक सिम्टम्स, बुखार खांसी सर्दी कराता है। एंट्रो वायरस होता है, जो कि छोटे बच्चों में हाथ पैर और माउथ में इन्फेक्शन कराता है, जिसमें कि चकते चकते डेवलप हो जाते हैं, इसको जिसे हम बोलते हैं हैंड फुट माउथ डिजीज।
0: जैसे कि भी डॉक्टर साहब, जिसने आपने जितने लक्षण बताए, जैसे कि आपने बताया कि प्रेगनेंसी में भी बच्चे को पेट में इन्फेक्शन हो जाता है और उसके साथ साथ माँ को भी इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन पर चकते चकते, जैसे माँ और
1: हैंड फुट माउथ डिजीज। नहीं, ये हैंड फुट माउथ डिजीज में चकते चकते शरीर पे देखिएगा, मुंह के अंदर, हाथ में, हथेलियों में,
0: स्किन पर भी हो जाता है, फेस पर भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं।
1: तो ये चीजें
0: डॉक्टर साहब, इन्फेक्शंस की हम बात कर रहे हैं तो जानकारी के तौर पर हमें आप ये बताइए कि वायरल इन्फेक्शंस और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में अंतर क्या है?
1: देखिए, दोनों ही सूक्ष्म जीव हैं, वायरस और बैक्टीरिया, दोनों ही जब शरीर के अंदर जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उनकी संख्या बढ़ेगी तो उसके अलग अलग रिस्पॉन्स आते हैं। जैसे हम पहले वायरस की बात करें, तो ये जो विषाणु जिसे बोलते हैं हम लोग, तो इसके क्या होते हैं कि लक्षण जो रहते हैं, बच्चों में बुखार आएगा, माइल्ड टू मॉडरेट ग्रेड का फीवर रहेगा, बहुत तेज तापमान नहीं रहेगा, शरीर और मांसपेशियों में थकान रहेगी, कमजोरी महसूस होगा, खांसी सर्दी हो सकती है, नाक बह सकता है। देखिए, जैसे बैक्टीरिया और वायरस जो इन्फेक्शन होता है, सर्दी खांसी रहेगी, नाक बह सकता है, शरीर और मांसपेशियों में थकावट महसूस होगी, बदन टूटने का दर्द रहेगा। और वायरल इन्फेक्शन जनरली क्या होता है कि एक लोकलाइज पार्ट में रहता है, जैसे गले में सूजन हो गया, गले में दर्द हो रहा है, किसी को पेशाब में इन्फेक्शन हो गया, पेशाब में दर्द, पेशाब करने में छोटे बच्चों में दिक्कत महसूस हो रही है, कोई घाव हो रखा है लोकलाइज एरिया में, पूरा इन्फेक्टेड रहेगा। और साथ ही साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बुखार जो रहता है, बहुत हाई ग्रेड का फीवर रहता है, बहुत तेज़ फीवर रहेगा, ये चीज़ें। और क्या रहता है कि वायरल फीवर रहता है, जनरली 3 to 5 डेज होते होते सेल्फ लिमिटिंग होता है, अपने आप खत्म हो जाता है।

0: ग्रेजुअली। बैक्टीरियल फीवर में क्या होता है कि ये इसमें एंटीबायोटिक की जरूरत पड़े और जब तक से बैक्टीरिया खत्म नहीं होगा दवाई के रिस्पॉन्स के कारण तब तक से वो बीमारी प्रेजेंट रहेगी।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने जैसे बताया कि वायरल जो इन्फेक्शन है उसमें नॉर्मल 3 से 4 दिन तक बुखार रहेगा और बैक्टीरियल में मैक्सिमम आपको उसमें एंटीबायोटिक की दवा लेनी पड़ती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हम मतलब डॉक्टर्स परचेज करते हैं वायरल इन्फेक्शन, कोई भी बुखार होता है वो एंटीबायोटिक तो दे ही देते हैं, तो बहुत लोगों का मानना भी होता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनको एंटीबायोटिक दवाएं ज्यादा नहीं चलानी चाहिए।
0: जी एकदम आप सही बोल रही हैं, एंटीबायोटिक का रोल जो है लिमिटेड है, कभी भी ऐसा चीज ही नहीं है कि ब्लाइंडली एंटीबायोटिक देना है। इससे क्या होगा कि बच्चे की इम्यूनिटी भी गड़बड़ होगी, बच्चे को मेडिसिन से रिस्पांस जब एक्चुअली में जब ज़रूरत पड़ेगा तो बच्चा रिस्पांस कर नहीं पाएगा। और क्या है कि वायरस में एंटीबायोटिक का रोल नहीं है, ये डिपेंड करेगा कोई भी आपके जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, वायरल नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन के साथ में अगर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहता है तो उसको देखते हुए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, अदरवाइज ऐसे जनरली नहीं कि वायरल इन्फेक्शन हुआ, वायरल बुखार हुआ, तुरंत एंटीबायोटिक ले रहे हैं। लेकिन हमारी एंटीबायोटिक की ज़रूरत तब पड़ेगी जब कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रखा है तब।
1: बहुत अच्छी आपने बात बताई डॉक्टर साहब। अच्छा अगर किसी बच्चे को इस तरह का इन्फेक्शन हो जाए तो इस दौरान बच्चे के खान पान पर क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, नवजात शिशु हो या फिर उनसे बढ़ते बच्चे?
0: जी कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो इसमें बच्चे की क्या होती है, कंडीशन थोड़ी लो हो जाती है। फीवर होगा तो बच्चे हम देखते हैं कि बच्चे सुस्त हो जाते हैं, खाना कम कर देते हैं, तो इस कंडीशन में हमें सबसे पहले कोई भी नवजात बच्चा है तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को प्रॉपर फीडिंग करते रहना चाहिए। यदि बच्चा 6 महीने से छोटा है तो माँ का स्तनपान करते रहना चाहिए और 2 से 3 घंटे के अंतराल पे दूध पिलाना है, और दूध पिलाने के बाद बच्चे को कंधे पे रख के डकार निकाल। और बड़े बच्चे रहते हैं तो हम और साथ ही साथ नवजात बच्चे में देखना है कि बुखार यदि आ रहा है तो उसके लिए पैरासीटामोल ड्रॉप्स आते हैं, अपने डॉक्टर से मिल करके उनको बुखार को कंट्रोल करना है। और जैसे थोड़े से बड़े बच्चे रहते हैं तो उनको देखना है कि बच्चा प्रॉपर डाइट ले, खाना पोषक तत्व से युक्त खाना खाए, जैसे कि विटामिन सी से रिच फूड लाइक पपीता हो गया, संतरा हो गया, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, ये चीज़ खानी चाहिए। और प्रॉपर हाइड्रेशन रहना चाहिए, जैसे पानी पीते रहना चाहिए, आप इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप ORS का घोल पी सकते हैं, और गरम थोड़ा सा गुनगुना सूप पी सकते हैं, थोड़ा जूस भी पी सकते हैं हम लोग।
1: यानी कि बच्चों को प्रॉपर हेल्दी डाइट देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ताज़ा भोजन।
0: जी जरूर।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये भी मिथ हमें आप बताइए कि बहुत लोगों का मानना होता है कि बच्चे को दस्त हो रहा है बुखार में भी, तो बच्चे को माता जो है अपने बच्चे को स्तनपान ना कराए, या फिर बच्चे बड़े हैं तो अगर बुखार है तो दूध नहीं देना चाहिए, उससे खांसी भी हो सकती है, तो ऐसा कुछ मतलब ऐसा कुछ मिथ है?
0: जी नहीं, ऐसा कोई मिथ नहीं है। हमें एक कोई भी नवजात बच्चे जो छोटे बच्चे हैं जो माँ का दूध पीते हैं, उन्हें दस्त हो या फिर पतला डायरिया हो रखा हो, लूज मोशन हो रखा हो, माँ का स्तनपान एकदम कराते रहना है हर 2 घंटे 3 घंटे पे, जैसे प्रॉपर बच्चे की फीडिंग है उसको कराना चाहिए। और थोड़े बड़े बच्चे हैं तो उनको प्रॉपर डाइट देना चाहिए और उनको पानी ORS का घोल और नॉर्मल जो खाना है उनको देते रहना चाहिए।
1: अभी जैसे तो बरसात का मौसम स्टार्ट हो गया है तो ऐसे में तो बाहर बच्चों का बाहर का खाना भी मतलब अवॉइड करना चाहिए।
0: जी जी जरूर, एकदम बाहर से ऐसे वैसे भी हमें बच्चों को बाहर का खाना नहीं देना चाहिए, उसमें जो मैं बताया कॉन्टामिनेटेड जो फूड और वाटर रहेगा, वाटर इंटेक होगा, दूषित खाना और दूषित पानी से बच्चे के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना ही है।
1: और ऐसे कहते भी हैं बरसात के मौसम में खान पान का विशेष ध्यान भी रखना पड़ता है क्योंकि जो अभी काफ़ी इन्फेक्टेड होते हैं बच्चे बरसात के मौसम में।
0: हम लोग देखते हैं कि इस मौसम में क्या होता है, अक्सर जो मौसम जब चेंज होता है, गर्मी से जब बरसात का मौसम आता है तो बच्चे की ऑलरेडी इम्यूनिटी कम रहती है, बच्चे बाहर का दूषित खाना और दूषित पानी पियेंगे तो लो इम्यूनिटी कारण जो वायरल इन्फेक्शन है बच्चों में होगा।
1: ऐसे में साफ सफाई का भी रखना बहुत ख्याल।
0: जी जी जरूर।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, बदलते मौसम में वायरल इन्फेक्शन से क्या कैसे अपने बच्चे को बचाया जा सकता है, क्योंकि जब भी मौसम में बदलाव आता है तो सबसे पहले बच्चे ही बीमारी का शिकार हो जाते हैं।
0: जी हाँ, तो जैसे मैं बताया जो इनके कारण हैं उनको, जो भी वायरल इन्फेक्शन होने के कारण है उन्हें हमें रोकना है या उससे अपने बच्चे को बचाना है। जैसे बच्चों की इम्यूनिटी लो है तो हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चा प्रॉपर ढंग से खाना, ताज़ा खाना खाए, प्रॉपर पानी पिए, और दूसरी जो भी चीज़ खाना और पानी उससे बच्चे को बचाना है, कंटामिनेटेड सरफेस रहे, चाहे कोई भी खिलौना शेयरिंग रहे, ऑब्जेक्ट हैंडलिंग रहे, जैसे

0: दरवाजा खोल रहे हैं, कॉन्टेमिनेटेड सब सतह है, उससे बचना है।
1: मतलब कोई भी ऐसी चीज हो जिससे बच्चा इन्फेक्टेड हो सकता है उससे दूरी
0: बनाना है। अब जब जैसे जमीन है इन्फेक्टेड है तो उसको क्लीन करेंगे हम लोग, कोई भी खिलौना है बच्चे को दे रहे हैं तो उसको साफ करके अच्छे तरीके से देंगे, या फिर कोई भी घर में इन्फेक्टेड बच्चा दूसरा है, चाहे कोई भी पर्सन हमारे इन्फेक्टेड हैं, तो उनसे बच्चों को थोड़ा डिस्टेंस रखना है, क्योंकि जैसे मैं बताया था कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू बच्चे में इन्फेक्शन जा सकता है।
1: यानी कि पेरेंट्स को भी इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है
0: जी,
1: कि वो ताकि बच्चे इन्फेक्टेड ना हो इन सब चीजों से। डॉक्टर साहब बातें तो हम आगे और भी करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले आप अपनी पसंद का कोई हमें गीत बताइए, हम इस कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे।
0: जी हमारे लिए रहेगा छोटी सी आशा एक गाना है, उसको बजाया जाए।
1: आइए डॉक्टर साहब की पसंद का ये गीत सुनते हैं।

0: क्या घर पर इलाज पर्याप्त है इस बीमारी के लिए, या डॉक्टरी परामर्श लेना जरूरी है, या फिर किस परिस्थिति में डॉक्टर से हमें संपर्क लेना चाहिए?
1: जनरली क्या होता है कि वायरल इन्फेक्शन सेल्फ लिमिटिंग होता है। यदि साधारण या माइल्ड टू मॉडरेट फीवर रहे तो नॉर्मल पैरासीटामोल सलाह लेकर के हम लोग दे सकते हैं। बच्चे का प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करके रखना है, कंटामिनेशन वगैरह सब चीज़ से, दूसरी चीज़ों से बचाना है अपने बच्चे को। यदि कुछ लक्षण होते हैं जिसमें कि यदि बच्चे को हो रहा है तो हमें चिकित्सकीय परामर्श बहुत ही जरूरत होती है। जैसे पर बच्चे को बार बार बुखार आ रहा है, बहुत तेज बुखार आ रहा है, बच्चे को सांस लेने की तकलीफ हो रही है, बच्चे की नथुने जैसे नाक के जो लैटरल किनारे साइड में होते हैं वो फैल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे को दस्त और लूज मोशन हो रहा है जिसके कारण बच्चे को डिहाइड्रेशन पानी की कमी के लक्षण हो रहे हैं तब, या फिर देखते हैं कि इस इन्फेक्शन के कारण कभी कभी बॉडी एक तरफ में ना लकवाग्रस्त हो जाता है, सुस्त पड़ जाता है, तो ये स्ट्रोक्स वगैरह हो जाते हैं, ऐसे सब कंडीशन में जरूर अपने बाल रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए।
0: हम इन्फेक्शंस की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे इसके कारण जैसे आपने बताया, और अगर बच्चे को अगर बार बार इस तरह का मतलब बार बार बुखार आ रहा हो
1: तो अपने किसी भी शिशु रोग विशेषज्ञ से जरूर मिलिए,
0: ताकि हो सकता है इसका रीजन कुछ और।
1: जी आप उसके कारण बुखार के बार बार होने के कारण फिर वो डिसाइड करें।
0: जैसे कि डॉक्टर साहब भी आजकल बहुत सारे केसेस देखने आ रहे हैं टाइफाइड बच्चों में, खासकर अगर दो चार दिन भी अगर बुखार रह जाता है तो हम अगर ब्लड टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है कि बच्चे को हाई लेवल का टाइफाइड हो गया है।
1: जी टाइफाइड होने का कारण वही है मैडम, जैसा कि मैं बताया, दूषित खाना, दूषित पानी, इन सब चीज़ों से हम लोग आउटसाइड आजकल देख रहे हैं कि बच्चों में बहुत ज़्यादा हो गया है कि
0: पेट में इन्फेक्शन जो होते हैं ना, वो पेट में भी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं।
1: जी हाँ जी हाँ जी, वही चीज़ उसका कारण मेन वही है, जो दूषित खाना और दूषित पानी पीते हैं वही रीज़न है हमारा। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि फास्ट फूड का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लोग कहीं पर भी जाते हैं तो फास्ट फूड लेते हैं या फिर आउटसाइड खाना और पानी पीते हैं, अनहाइजीनिक ले रहे हैं, जिसके कारण कि बच्चों की ऑलरेडी इम्यूनिटी लो है, बच्चे इन्फेक्टेड ज़्यादा हो जाएंगे।
0: जैसे ही डॉक्टर साहब आपने बहुत सही अच्छी जानकारी दी, लेकिन आइए अब डॉक्टर साहब आपकी पसंद का एक और गीत जानना चाहेंगे, तो अपनी पसंद का कोई और गीत बताइए।
1: जी एक सॉन्ग है छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई की परी।
0: आइए डॉक्टर साहब की पसंद का ये गीत सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, पेरेंट्स को अपने बच्चों के प्रति क्या सलाह देना चाहेंगे आप?
1: जी देखिए, इस बदलते मौसम में हमारा सभी माता पिता को यही सलाह रहेगा कि आप अपने बच्चों को सेफ रखिए। कोई भी पहला तो स्वच्छता का ध्यान रखिए। यदि छोटे बच्चे खेलते हैं, खेलने वाले उम्र के बच्चे हैं, तो खाना खाने के पहले हमेशा बोलिए हैंड वॉश करना है, और सोच के बाद एंड खेलने के आने के बाद हमेशा साबुन और पानी से हाथ धोना है। बच्चे को ताज़ा फ्रेश खाना खिलाना है, और एडिक्वेट अमाउंट में पानी हाइड्रेशन मेंटेन करके बच्चों को रखनी है। जी हाँ, हाइजीन मेंटेन करके रखना है। साफ़ सुथरा कपड़ा रहना चाहिए, हल्का कपड़ा पहनना चाहिए, कॉटन। और कोई भी यदि घर में हमारे परिवार में इन्फेक्टेड पर्सन है, या फिर कोई छोटे बच्चे इन्फेक्टेड है, तो उनको और दूसरे बच्चों से थोड़ा सेपरेट रखा जाता है।
0: डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही विस्तार से वायरल इन्फेक्शंस के बारे में बताया, और उम्मीद है कि हमारे श्रोता हैं जो उनके बच्चों के माता पिता हैं, वो इस जानकारी को ज़रूर अमल करेंगे और अपने छोटे बच्चों को या फिर उनके जो बड़े बच्चे हैं उनका प्रॉपर ध्यान भी देंगे और अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे। डॉक्टर साहब, आप इस कार्यक्रम में आए, आपने इतना कीमती समय दिया और इतने अच्छे से विस्तार से बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
0: आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त चंदा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वर एवं संकलन चंदा देवी, प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार।
2: हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। हमारे अगले प्रसारण का कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में पूर्वाह्न के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी।

मदन राय की आवाज़ में अभी आप ये सुन रहे थे भोजपुरी निर्गुण। श्रोता दोस्तों, आप सबों ने अपने मोबाइल और रेडियो सेट को ट्यून किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर, यानी आकाशवाणी का सासाराम केंद्र, और इस वक्त आप सुन रहे हैं भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। आइए अब सुना जाए मदन राय की आवाज़ में करी हम कौन बहाना एल्बम का ये भोजपुरी लोकगीत।

दुनियादारी। इस फिल्म का गीत अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में। विश्वेश्वर शर्मा ने इसे लिखा है और शंकर जयकिशन का संगीत।

अनुराधा पौडवाल और तलत अजीज की आवाजों में सुनिए इब्राहिम अश्क का लिखा ये गीत। राजेश रोशन का संगीत है, एल्बम का नाम बहार आने तक।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं अशोक खोसला की गाई ये गजल, जिसे लिखा है डॉक्टर राही मासूम रजा ने, जगजीत सिंह का संगीत।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ों में सुनिए कमर जलाल आबादी की ये गज़ल। धुन बनाई है जगजीत सिंह ने।

एक हमारे दोस्त थे लंदन में रहे, ऐसे बहुत पैसे आ गए उनके पास, जैसे फेंक गए ना अभी, तो वो पंजाब जब वापस गए 15-20 साल के बाद, वहाँ उन्होंने बंगला बनाया और उसकी जो हाउस वार्मिंग सेरेमनी थी उन्होंने बुलाया सब दोस्तों को, बोले देखिए हमारा ड्राइंग रूम है, ये बच्चों का रूम है, ये किचन है, ये वो है, सब करके बड़ा अच्छा बंगला था। फिर पीछे लॉन में ले गए तो वहाँ 3 स्विमिंग पूल बना रखे हैं, तो एक में गर्म पानी, तो वो समझ आ गई बात सर्दियों में नहाने के लिए, एक में ठंडा पानी तो वो गर्मी में नहाने के लिए, तो एक खाली पड़ा हुआ है। तो उनको पूछा भी ये खाली क्यों पड़ा है स्विमिंग पूल, बोले बात ये कि कभी कभी नहाने को दिल नहीं करता है। कई वैसे पंजाबी में कई ऐसे जोक हैं जो जिनका कुछ मतलब नहीं है लेकिन हंसी आती है, जैसे मैं जगजीत सिंह हूं,

ये ऐसे जोक हैं जो जिनका कुछ मतलब नहीं है लेकिन हंसी आती है। जैसे मैं जगजीत सिंह हूं, ये सुरेंद्र सिंह है। अभी हंसने वाली बात नहीं है। सुरेंद्र सिंह जी अपने घोड़े पे आ रहे हैं और जगजीत सिंह जी पूछते हैं उनको, सुरेंद्र सिंह जी थोड़ा घोड़ा कितने है? तो सुरेंद्र सिंह कहता, भी घोड़े पे तो मैं बैठा हूं, तुमको दिखता नहीं। कहता, फिर भी पूछने से की हर जाएगा।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ों में अभी आपने सुनी ये गज़ल। राणा अकबर बदी का ये रचना थी।

बेवफा तू है कभी मैं न कहूँ।

0: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। दिन के 12 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। पश्चिम बंगाल में दो नए अपराध रोधी कानून आज से लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे। राज्यपाल आर एन रवि की स्वीकृति के बाद ये विधेयक अब कानून बन गए हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे है। इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा समय घटकर 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। इस योजना के पहले चरण में पश्चिम चंपारण जिले का वाल्मीकि नगर, कैमूर जिले का मां मुंडेश्वरी और नालंदा जिले का राजगीर शामिल हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरणों में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माई भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। कोलंबिया के बुकारामंगा में 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इन युवा भौतिकविदों ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए देश को गौरवान्वित किया है। भारत ने इस प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। ये इंटर्नशिप कथित तौर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित बताई गई थी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजों पर क्लिक ना करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। शोक दिवस के दौरान देश भर में उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। आज कोई भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। वियतनाम के फुकुओक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट

में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। ये दावे अमरीकी केंद्रीय कमान सेंटकॉम के प्रमुख अभियान के बाद आया है, जिसमें ईरान की हवाई रक्षा प्रणाली, मिसाइल और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों, तटीय रडार ढांचे और सामरिक नौसैनिक संसाधनों को निशाना बनाया गया था। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। सेंसेक्स 145 अंक घटकर 77,425 और निफ्टी 55 अंक लुढ़ककर 24,153 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं सीमा फिल्म का गीत, मन्नाडे की आवाज में, शैलेंद्र की रचना, शंकर जयकिशन का संगीत।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। ब्रेक पर जाने से पहले जो गीत आपने सुना वो था फिल्म अखियों के झरोखों से, हेमलता की आवाज और गीत संगीत था रविंद्र जैन का। और आइए अब आपको सुनवाते हैं दोस्ती फिल्म का ये गीत, मोहम्मद रफी की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना राम तेरी गंगा मैली, इस फिल्म का गीत, गीत और संगीत रविंद्र जैन का। और आइए अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद अजीज की आवाज में अमृत फिल्म का गीत, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर का गाया ये गीत फिल्म रजिया सुल्तान से। जानिसार अख्तर ने इसके बोल लिखे हैं, खयाम का संगीत।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं प्रेम पर्वत, इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। बोल हैं जानिसार अख्तर के, धुन बनाई है जयदेव ने।

और आज के यादों की महफिल कार्यक्रम का ये अंतिम गीत सुनिए। गीत गाता चल इस फिल्म से आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह की आवाजें हैं, गीत संगीत रविंद्र जैन का।

पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में उसके दोनों पैरों में गोली लगी। उसे इलाज के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि एक दिन पहले भूमि विवाद में सेना के जवान और उनके पिता की हत्या के मामले में आरोपी की तलाश की जा रही है। शेखपुरा जिले के कोरमा थाना क्षेत्र स्थित मुरारपुर गांव के पास तांती नदी के किनारे संचालित शराब भट्टी को पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने नष्ट कर दिया है। मौके से 2000 लीटर शराब बरामद की गई। पुलिस कारोबारियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। अररिया जिले के कुर्सा कांटा थाना क्षेत्र से पुलिस ने मादक पदार्थ स्मैक के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। दरभंगा मंडल कारा के सहायक अधीक्षक नंदू कुमार चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इनके खिलाफ पत्नी की हत्या का मामला दर्ज है। इस मामले में न्यायालय ने उनके विरुद्ध वारंट भी जारी किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

सामईन आदाब, यह आकाशवाणी पटना है। अब आप मोहम्मद तनवीर अली से इलाकाई खबरें सुनिए। बांकीपुर असेंबली ज़मीनी इंतखाब के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा और जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने आज अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इसके अलावा जनशक्ति जनता दल की उम्मीदवार वीना मानवी ने भी अपना पर्चा दाखिल किया। उम्मीदवार 16 जुलाई तक नाम वापस ले सकते हैं। ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग 30 जुलाई को होगी, जबकि वोटों की गिनती 3 अगस्त को कराई जाएगी। रियासत में अब सियाहती हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म खिदमात का लुत्फ ले सकेंगे। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने आज पटना में मुनक्किद एक तकरीब में बिहार हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सर्विसेज का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल का भी आगाज़ किया। वज़ीर आला ने कहा कि इस मंसूबे का मकसद सियाहतों के लिए आमदोरफ्त को सहल बनाना और लोगों को बिहार के अहम सियाहती मकामात का आसानी के साथ तजुर्बा फराहम कराना है। उन्होंने कहा कि फिलहाल हफ्तावार की बुनियाद पर शुरू की जा रही एयर सियाहती सर्विसेज को मुस्तकबिल में यौमिया सर्विस के तौर पर फ़रोग दिया जाएगा। मंसूबे के पहले मरहले में पटना, वाल्मीकि नगर, माँ मुंडेश्वरी और राजगीर को शामिल किया गया है। रियासती हुकूमत हर एक टिकट पर ज़्यादा से ज़्यादा 15,422 रुपये तक की सब्सिडी देगी। हेलीकॉप्टर सियाहती सर्विस 18 जुलाई से शुरू होगी और हर शनिचर और इतवार को ऑपरेट की जाएगी। रियासत में किसानों को अब हर महीने बिजली बिल मिलेगा। पहले किसानों को 3 महीने पर एक साथ बिजली बिल की अदायगी करनी पड़ती थी। बिजली कंपनियों की दरखास्त पर बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने माहाना बिलिंग की मंजूरी दे दी है। इसके बारे में सभी मुतल्लिका अफसरान को अहकाम जारी कर दिए गए हैं। नए निज़ाम से रियासत के तकरीबन 8 लाख किसानों को फ़ायदा पहुंचेगा और उन्हें यकमुश्त 3 महीने का बिल अदा करने की परेशानी से राहत मिलेगी। रियासत में ज़राअत के लिए कमज़ोर मानसून के पेश नज़र विकसित भारत जी राम जी के मेहनतकशों को खरीफ की खेती को लेकर रियायत दी जाएगी। महकमा देही तरक्यात ने इससे मुतल्लिक ज़िला मजिस्ट्रेटों को अहकाम जारी किए हैं। महकमा जाति वज़ीर शरवन कुमार ने बताया कि कम बारिश वाले अजला में पहले से ऐलान शुदा कृषि चरम मौसम लीन पीरियड की तारीखों में तब्दीली की गई है। कम बारिश और अनलैनों के संगीन असरात के पेश नज़र मुतासर अजला में 10 जुलाई से 19 जुलाई तक VBG राम जी मंसूबे के तहत काम कराया जा सकेगा। मानसून की फ़ालियत से रियासत के मुख्तलिफ खित्तों में बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी है। महकमा मौसमियात ने आज अररिया, बांका, भागलपुर, मधेपुरा, पूर्णिया और सुपौल ज़िले में ज़बरदस्त बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। वहीं कटिहार और किशनगंज ज़िले में इंतहाई ज़बरदस्त बारिश की वार्निंग है। इधर महकमा से मौसूला इत्तला के मुताबिक रियासत में अब तक मामूल से कम बारिश हुई है। 17 अजला ऐसे हैं जहां बारिश की कमी 50% या उससे ज़्यादा है। 18 अजला में 30 से 50% तक कम बारिश हुई है। सबसे कम बारिश गया ज़िले में दर्ज की गई है। वैशाली ज़िला के बीदूपुर थाना हलके में इतवार को हुए दोहरे कत्ल मामले का अहम मुलजिम जगदीश राय पुलिस तसादुम में ज़ख्मी हो गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के दौरान

मुलजिम ने पुलिस टीम पर फायरिंग किया, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में उसके दोनों पैरों में गोली लगी। उसे इलाज के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलिस ने बताया कि एक दिन कबल जमीन तनाजे के मामले में फौज के जवान और उनके वालिद के कत्ल के मामले में मुलजिम की तलाश की जा रही थी। शेखपुरा जिले के कोरमा थाना इलाके में वाकई मुरारपुर गांव के करीब टाटी नदी के किनारे चलने वाले शराब भट्टी को पुलिस और महकमा एक्साइज की टीम ने तबाह कर दिया है। मौके से 2000 लीटर शराब बरामद की गई है। पुलिस कारोबारियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। अररिया जिला के कुर्सा कांटा इलाके से पुलिस ने मनुष्यात स्मैक के साथ दो स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। दरभंगा डिवीजनल जेल से असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट नंदू कुमार चौधरी को फौरी असर से मुअत्तल कर दिया गया है। उनके खिलाफ अहलिया के कत्ल का मामला दर्ज है। इस मामले में अदालत ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए रोजगार सूचना। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन प्रोबेशनरी ऑफिसर एवं मैनेजमेंट ट्रेनिंग के कुल 6,715 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ibps.in से प्राप्त किया जा सकता है।

रेलवे भर्ती बोर्ड टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए के कुल 6,565 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार के पास बीई, बीटेक, इंजीनियरिंग डिप्लोमा अथवा इंजीनियरिंग में बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें।

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष और टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए अधिकतम आयु 33 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.indianrailways.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पुलिस अवर निरीक्षक के कुल 150 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 अगस्त 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bpssc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

आखिर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश। वियतनाम में नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर आज रात विशेष विमान से भारत पहुंचेंगे। ईरान ने अपने सैन्य ठिकानों पर अमरीकी हमलों के जवाब में जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन आज भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज असम के विदेशी न्यायाधिकरणों द्वारा विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि न्यायाधिकरणों द्वारा उनके मामलों की दोबारा सुनवाई होने तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। याचिकाकर्ताओं ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय और बाद में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधिकरण के आदेशों को चुनौती दी थी। अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए 1971 से पहले के अभिलेखों, मतदाता सूचियों और भूमि अभिलेखों जैसे दस्तावेजों का सहारा लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी से जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने याचिकाओं की सुनवाई की। इससे पहले 13 जून को एसआई का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में किसी गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। तमिलनाडु सरकार ने उच्च न्यायालय के 27 मई के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें प्रशासन से 28 मई को बकरीद की पूर्व संध्या पर या किसी भी और दिन राज्य में गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने को सुनिश्चित करने को कहा गया था। राज्य

0: सरकार ने इस आदेश को तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम 1958 के विपरीत बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। एआई के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घट मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री रक्षा को मजबूत करने के लिए मात्र एक महीने में 4 नई पीढ़ी के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म भारतीय नौसेना में शामिल किए गए हैं। इनमें शामिल नवीनतम जहाज INS महेंद्रगिरी है, जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 6 नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि INS महेंद्रगिरी को इस महीने की 11 तारीख को नौसेना में शामिल किया गया था।
2: पिछले महीने के 21 तारीख को स्वदेश में डिजाइन और निर्मित 3 प्लेटफॉर्म INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए हैं और इन्हें वायु, सतह तथा पनडुब्बी रोधी अभियानों सहित बहुआयामी सैन्य अभियानों के लिए तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट 17A भारतीय नौसेना का उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट कार्यक्रम है, जिसके तहत अगली पीढ़ी के 7 गाइडेड मिसाइल युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है। उन्नत स्टेल्थ विशेषताओं और उच्च स्तर की स्वचालन प्रणाली से लैस ये युद्धपोत नौसैनिक युद्ध के साथ सभी आयामों में समुद्री अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। उच्च स्वदेशी कंटेंट के साथ निर्मित ये प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं और देश के रक्षा विनिर्माण तंत्र को मजबूत करते हैं। ये सामूहिक रूप से समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करते हैं, ब्लू इकोनॉमी को समर्थन देते हैं और देश को एक अग्रणी समुद्री शक्ति के रूप में और मजबूत बनाते हैं। पल्लवी परमार के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश प्रौद्योगिकी विकास सम्मेलन का तीसरा संस्करण आज भोपाल में हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने 178 करोड़ 70 लाख रुपए के कुल निवेश वाली 20 औद्योगिक इकाइयों का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी प्रौद्योगिकी और औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पिछले वर्ष बार्सिलोना की उनकी यात्रा के बाद स्पेन, अमरीका और कनाडा की कंपनियों ने राज्य में निवेश किया है।
3: अपने 2 वर्ष के अंदर जो छलांग लगाई है, ये केवल यहाँ का अभियान हमारे लिए नहीं हुआ, अब मध्यप्रदेश में स्पेन, कनाडा, अमेरिका, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने FDI के माध्यम से 28,200 करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे प्रदेश के अंदर कर लिया है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ट की ओर से दायर याचिका के बाद ये संज्ञान लिया। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य संबंधी शोध तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करना है। मसौदे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान की रूपरेखा बनाने का भी प्रस्ताव है। टिप्पणियां और सुझाव 27 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजों पर क्लिक ना करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। पंचायती राज मंत्रालय के

0: सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। नई दिल्ली में आज ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित जल प्रबंधन और जल सुरक्षा योजना पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री भारद्वाज ने कहा कि सार्थक परिवर्तन तभी संभव है जब सब मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए कार्य करें। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरण में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में आयोजित एक समारोह में बिहार हेलीकॉप्टर पर्यटन और हवाई पर्यटन सेवा योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सेवा के लिए एक ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।
1: लोगों को बिहार दर्शन कराना है, ये सिर्फ शोकेस में नहीं रखना है, ये पूरी तरह ऐसी व्यवस्था कीजिए कि पर डे हम बिहार दर्शन करा सके। बिहार की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का रोल हो तब समझिए गया कि टूरिज्म का रास्ता बदला। हम आम लोगों को सैर कराने का काम कर रहे हैं।
0: श्री चौधरी ने कहा कि साप्ताहिक हवाई पर्यटन सेवा को भविष्य में दैनिक सेवा में विस्तारित किया जाएगा। योजना के पहले चरण में पटना, वाल्मीकिनगर, मां मुंडेश्वरी और राजगीर को शामिल किया गया है। राज्य सरकार प्रति टिकट 15,422 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा 18 जुलाई से शुरू होगी और प्रत्येक शनिवार और रविवार को संचालित होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार इस कार्रवाई में जॉर्डन के प्रिंस हसन हवाई अड्डे, बहरीन के शेख ईसा हवाई अड्डे और कुवैत में अली अल सलीम और अहमद अल जाबेर हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। IRGC ने दावा किया है कि इससे ईंधन भंडार, गोला बारूद भंडारण प्रतिष्ठानों, वायु रक्षा प्रणालियों और रडार ढांचे को नुकसान पहुंचा है। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य में आगे किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई करने पर अमरीका को चेतावनी दी है। ये दावे अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के प्रमुख अभियान के बाद आए हैं, जिसमें ईरान में कई जगहों पर आक्रामक हमले किए गए थे। इन हमलों में कई सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में बाधा डालने की ईरान की क्षमता को कमजोर किया जा सके। अमरीका ने कहा है कि ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा और आवाजाही में स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए थे। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। न्यूजीलैंड के अभिनेता सैम नील का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे जुरासिक पार्क और द पियानो जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। महिला क्रिकेट में लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट में इंग्लैंड की टीम आज चौथे दिन अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। भारत ने इंग्लैंड को 457 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने 269 रन की बढ़त बनाते हुए दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन पर घोषित कर दी। विकेटकीपर और बल्लेबाज यास्तिका भाटिया लॉर्ड्स में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इंग्लैंड पहली पारी में 170 रन पर ही सिमट

0: गई थी। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक बारिश का अनुमान है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज सामान्य रूप से कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स 20 अंक बढ़कर 77,589 पर और निफ्टी 7 अंक गिरकर 24,200 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने सदाबहार नगमे। तस्वीर फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं आशा भोसले की आवाज में। डी एन मधोक ने इस गीत को रचा है, सी रामचंद्र का संगीत।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं सिंदूर फिल्म का गीत, आवाज मोहम्मद अजीज की, आनंद बख्शी की रचना है और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

शोर फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाजें थी मन्ना डे, महेंद्र कपूर और श्याम चित्तर की। राजकवि इंद्रजीत सिंह और तुलसी ने इसे लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन। और आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत। फिल्म का नाम है ब्रह्मचारी। मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल।

0: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को, सखियों को, सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। दीपा जी, आपको भी हमारा नमस्कार।
1: सुनने वाले सभी सखियों, श्रोताओं और सखा भाइयों को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार और ममता जी आपको भी नमस्कार।
0: जी देखिए दीपा, कई बार क्या होता है कि कुछ परेशानियां आती हैं या कोई विपरीत परिस्थिति आती है, बस मन अधीर हो जाता है, बेचैन हो जाता है और कई बार दो राह पे हम खड़े होते हैं तो निर्णय की क्षमता लेने में बड़ी असुविधा होती है, समझ में नहीं आता कि हम इस तरफ जाएं कि उस तरफ जाएं, क्या करें। कई बार सड़कों पर भी ऐसा होता है कि हम खड़े होते हैं कि रास्ता राइट को जाएगा कि लेफ्ट को जाएगा। हालांकि अभी गूगल नाम के मास्टर ने बहुत आसानी कर दी है कि आपको मैप के जरिए आप सही रास्ते पर चले जाते हैं, बस कि नेट चल रहा हो आपका। तो ये जो मन जो अधीर हो जाता है, इस मन को साधने के लिए, शांत करने के लिए बहुत सारे नुस्खे अपनाने पड़ते हैं।
1: बिल्कुल, और इसी बारे में बात भी करेंगे हम ममता जी आज की, क्या किया जाए जब मन बहुत बेचैन है, कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा तो निर्णय लेना चाहिए या नहीं, या कभी गलत हो गया है आपके साथ तो हमारे सभी सुनने वाले बताएं कि क्या हुआ था, कभी कुछ गलत उनके साथ हुआ है या कहीं उन्होंने मन को शांत करके फिर बताई है बात, या कुछ ऐसा निर्णय को थोड़ा सा टाला है और बाद में उसको लिया है, ऐसा कुछ अनुभव उनके साथ अगर रहा है तो हमारे साथ अवश्य,
0: मतलब किन परिस्थितियों में वो अधीर हो जाते हैं और किस तरह से वो निर्णय ले पाते हैं अपने जो भी कार्य हैं, तो हमारे श्रोता बताएं विविध भारती के फेसबुक पेज पर आकर www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो विविध भारती के फेसबुक पेज पर पहुंच जाएंगे। और सिर्फ इसी के बारे में उन्हें नहीं टाइप करना है बल्कि बारिश और लकड़ी के फर्नीचर, ये हमारा अगला मुद्दा है, अगला विषय है जिस पर उनकी टिप्पणियों का हमें इंतजार रहेगा कि बारिश में लकड़ी के जो फर्नीचर होते हैं वो खराब हो जाते हैं, कई बार दरवाजे तक बड़े टाइट हो जाते हैं।
1: जी बिल्कुल, और कहीं पे दीमक लग जाती है, कहीं फूल जाते हैं या कहीं टेढ़े हो जाते हैं, तो इस तरह की कई सारी चीजों को हम देखते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए क्या नहीं, हम तो यहाँ विचार विमर्श करेंगे, चर्चा होगी, आपको भी क्या लगता है आप वो भी बताइएगा।
0: मैं नहीं, हमारे श्रोता,
1: हमारे श्रोता
0: जी। और इसके अलावा जब सुबह सुबह उठते हैं तो मन में सवाल सबसे पहले ये उठता है कि आज नाश्ते में क्या खाया जाए, नाश्ते में क्या बनाया जाए जी। तो इस मुश्किल की आसानी के लिए पराठे, कई तरह के पराठे बनाए जाते हैं, कभी गोभी के पराठे, कभी आलू के पराठे, कभी पनीर के पराठे, और आप भी बनाती होंगी कई तरह के पराठे, दो चार पराठों के नाम बताइए आप भी।
1: जी, मूली के पराठे होते हैं, फूल गोभी के पराठे होते हैं,
0: पत्ता गोभी,
1: तो पत्ता गोभी की भी थी,
0: लौकी का पराठा भी बनता है,
1: लौकी का भी होता है,
0: प्याज का पराठा
1: जी, और अगर जरूरत पड़ जाए तो अचार का मसाला लगा के वैसा भी,
0: और सत्तू का पराठा बहुत टेस्टी होता है। तो आज हम श्रोताओं से जानना चाहेंगे पंजाब के भरवा पराठे कैसे होते हैं, अगर उन्हें जानकारी है, अगर वो नहीं लिख पाएंगे तो हम उन्हें बताएंगे पंजाब के भरवा पराठे के बारे में कि कैसे बनते हैं। और कथा सुधा जो हमारी सीरीज चल रही है, आज इसका दूसरा भाग सुनवाएंगे, दो बहने का। तो फिलहाल एक गाना सुन लें हम।
1: चलिए।

0: ममता जी, पिछले सोमवार को हमने सुना कहानी, प्रेमचंद की लिखी कहानी दो बहनें। इसका हमने पहला जो कड़ी उसकी सुनी थी, आज हम सुनेंगे उसकी दूसरी कड़ी और ये अंतिम कड़ी होगी। तो चलिए, हमारे सारे श्रोता भी बहुत आतुरता से इसका इंतजार कर रहे हैं।
1: कथा सुधा में हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहनें। पिछली कड़ी में आपने सुना,
2: दो बहनें दो साल बाद एक तीसरे अजीज के घर मिली और खूब रो धोकर खामोश हुई। तो बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सर से पांव तक गहनों से लदी हुई है। कुछ उसका रंग खिल गया, मिजाज में कुछ तमकनत आ गई और बातचीत करने में कुछ ज्यादा मुश्ताक हो गई है।
3: इस दो साल में कैसे हुन बरस गया, कौन जाने। जेवर किसी से मांग कर लाई हो, कपड़े भी दो चार दिन के लिए मांग लिए हो। उसे ये स्वांग मुबारक रहे, मैं जैसी हूं वैसी ही अच्छी हूं।
2: रामदुलारी ने जैसे रहम की आंखों से देख कर कहा,
4: जीजा जी की कुछ तरक्की बरक्की हुई कि नहीं बहन, या अभी तक वही 75 पर कलम घिस रहे हैं।
2: रूप कुमारी के बदन में आग सी लग गई। उफ़ दिमाग, गोया उसका शौहर लाठ ही तो है। अकड़ कर बोली,
3: हाँ तरक्की क्यों नहीं हुई, अब 100 के ग्रेड में है।
2: रूप कुमारी खामोश हो गई। अब यह हकीकत उसकी सारी तलखियों के साथ तस्लीम करनी पड़ेगी कि राम दुलारी उससे ज्यादा खुशनसीब है। उसे बहाने से राम दुलारी के घर जाकर असलियत की छानबीन

0: करनी पड़ेगी।
1: रूप कुमारी क्या राम दुलारी की असलियत जान सकेगी? छानबीन कैसे करेगी? असलियत क्या है, जानने के लिए सुनिए अत्यंत रोचक कहानी दो बहनें की दूसरी कड़ी।
2: मगर क्या सचमुच इस ख्याल से मुझे तस्कीन होगी? यहां कौन ईमानदार है? वही जिसे बेईमानी का मौका नहीं है और न ही इतनी हिम्मत है कि वो मौका पैदा कर ले। मेरे शौहर 75 रुपए माहवार पाते हैं, मगर क्या 10-20 रुपए ऊपर से मिल जाएं तो वो खुश होकर न लेंगे? उनकी ईमानदारी और उसूल परवरी उस वक्त तक है जब तक मौका नहीं मिलता। जिस दिन मौका मिला, सारी उसूल परवरी धरी रह जाएगी और तब तक मुझ में इतनी अखलाकी कुव्वत है कि मैं अपने शौहर को नाजायज आमदनी से रोक दूं। रोकना तो दरकिनार, मैं खुश होऊंगी। शायद मैं अपने शौहर की पीठ ठोकूं। अभी उनके दफ्तर से वापसी के वक्त मन मारे बैठी रहती हूं, तब दरवाजे पर खड़ी होकर उनका इंतजार करूंगी और जू ही वो घर आएंगे उनकी जेबों की तलाशी न लूंगी।
0: आंगन में गाना बजाना हो रहा था। राम दुलारी उमंग के साथ गा रही थी और रूप कुमारी वहीं बरामदे में उदास बैठी थी। न जाने क्यों उसके सर में दर्द होने लगा। कोई गाए कोई नाचे, उसे कोई सरोकार नहीं। वो बदनसीब है, रोने के लिए पैदा की गई है। 9 बजे रात के मेहमान रुखसत होने लगे। रूप कुमारी भी उठी, यक्का मंगवाने जा रही थी कि राम दुलारी ने कहा,
3: इक्का मंगवा कर क्या करोगी बहन? मुझे लेने के लिए अभी कार आती होगी, 2-4 दिन मेरे यहाँ रह लेना, फिर चली जाना। मैं जीजा जी को कहला भेजूंगी।
0: रूप कुमारी का आखिरी हरवा भी बेकार हो गया। राम दुलारी के घर जाकर दरियाफ्त हाल की ख्वाहिश यकायक फना हो गई। अब वो अपने घर जाएगी और मुंह ढाप कर पड़ रहेगी। इन फटे हालों क्यों किसी के घर जाए? बोली,
2: अभी तो मुझे फुर्सत नहीं है, फिर कभी आऊंगी। हाँ, अभी नहीं।
3: बहन क्या रात भर भी न ठहरोगी?
2: नहीं, वो मेरे सर में जोर का दर्द हो रहा है, फिर कभी।
3: अच्छा तो बताओ फिर कब आओगी, मैं कार भेज दूंगी। कार
2: अब खुद कहला दूंगी। हाँ,
3: अरे बहन तुम्हें याद न रहेगा, साल भर तो हो गया, भूल कर भी याद नहीं किया। मैं इसी इंतजार में थी कि दीदी बुलाएं तो चलूं। एक शहर में रहते हैं, फिर भी इतनी दूरी कि साल भर गुजर जाए और मुलाकात ही न हो।
2: घर की फिक्रों से फुर्सत ही नहीं मिलती। कई बार इरादा किया कि तुझे बुला भेजूं, मगर मौका ही न मिला।
0: इतने में राम दुलारी के शौहर मिस्टर गुरुसेवक ने आकर बड़ी साली को सलाम किया। बिल्कुल अंग्रेजी वजह थी, कलाई पर सोने की घड़ी, आंखों पर सुनहरी ऐनक, बिल्कुल अप टू डेट, जैसे कोई ताजा दादर स्वैन हो। चेहरे से जहानत, मतानत और शराफत बरस रही थी। वो इतना खुशरू और जामा जेब है, रूप कुमारी को इस बात का गुमान भी ना था। दुआ देकर बोली,
2: कैसे हो गुरु सेवक? आज यहां ना आती तो तुमसे मुलाकात क्यों होती भला?
0: गुरु सेवक हंसकर बोला,
4: बजा फरमाती है भाई, उल्टी शिकायत। कभी आपने बुलाया और मैं ना गया, ऐसा हुआ है?
2: शिकायत तो सही है, वैसे मैं ना जानती थी कि तुम अपने को मेहमान समझते हो। कभी भी आओ, वो भी तुम्हारा ही घर है।
4: अब मान गया दीदी, बेशक मेरी गलती है, इंशाअल्लाह उसकी तलाफी करूंगा, मगर आज हमारे घर रहिए।
2: नहीं देखो, राम दुलारी भी कह रही है, लेकिन आज फुर्सत बिल्कुल नहीं है, फिर आऊंगी, जरूर आऊंगी। लड़के घर पर घबरा रहे होंगे ना, अभी चलती हूं।
3: मैं तो कितना कहकर हार गई, मानती ही नहीं दीदी।
0: दोनों बहनें कार की पिछली सीट पर बैठ गईं। गुरुसेवक ड्राइव करता हुआ चला, जरा देर में उसका मकान आ गया। राम दुलारी ने फिर रूप कुमारी से चलने के लिए इसरार किया, मगर वो न मानी।

0: नहीं, आज आज बिल्कुल फुर्सत नहीं है। फिर आऊंगी, लड़के घर पर घबरा रहे होंगे, फिर आऊंगी।
1: आखिर रामदुलारी उससे गले मिलकर अंदर चली गई। गुरुसेवक ने कार बढ़ाई। रूप कुमारी ने उड़ती हुई निगाह से रामदुलारी का मकान देखा और ठोस हकीकत सलाख की तरह उसके जिगर में चुभ गई। कुछ दूर चलकर गुरुसेवक बोला,
2: दीदी, मैंने अपने लिए कैसा अच्छा रास्ता निकाल लिया है। 2-4 साल काम चल गया तो आदमी बन जाऊंगा।
0: हाँ, रामदुलारी ने मुझसे कहा, भगवान करे जहां रहो खुश रहो। देखो जरा हाथ पैर संभाल कर रहना भाई।
2: अब देखिए, मैं मालिक की आंख बचाकर एक पैसा लेना भी गुनाह समझता हूं। अब दौलत का मजा तो जब है कि ईमान सलामत रहे। आप ही बताइए, ईमान खोके पैसे मिले तो क्या?
0: सही कह रहा,
2: ऐसी दौलत पे तो मैं लानत भेजता हूं। और आंखें किसकी बचाऊं? सब स्याह सफेद तो मेरे हाथ में है, मालिक तो कोई है नहीं। हां, उसकी बेवा है, उसने सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ रखा है। मैंने उसका कारोबार संभालने लिया होता तो सब कुछ चौपट हो जाता दीदी। मेरे सामने तो मालिक सिर्फ 3 महीने जिंदा रहे।
0: अच्छा,
2: मगर बड़ा मर्दुम शनास आदमी था, मुझे 100 रुपए पर रखा और एक ही महीने में 250 कर दिया।
0: अच्छा,
2: आप लोगों की दुआ से मैंने पहले ही महीने में 12,000 का काम किया।
0: अच्छा, एक बात ये बताओ, काम क्या करना पड़ता है?
2: हाँ वही, मशीनों की एजेंसी, तरह तरह की मशीनें मंगाना और बेचना।
0: अच्छा।
1: रूप कुमारी का मनहूस घर आ गया। दरवाजे पर एक लालटेन टिमटिमा रही थी। उसके शोहर बाबू उमानाथ दरवाजे पर टहल रहे थे। रूप कुमारी उतरी, मगर उसने गुरुसेवक से आने के लिए इसरार न किया। बेदिली से कहा जरूर, मगर जोर न दिया और उमानाथ तो मुखातिब ही ना हुए।
0: मेरा घर, ये घर अब कब्रिस्तान सा लग रहा है, जैसे फूटा हुआ नसीब हो। न कहीं फर्श, न फर्नीचर, न गमले, ये 2-4 टूटी कुर्सियां और ये लंगड़ी मेज, 4-5 पुरानी खाटे, बस यही है मेरे घर के बिसात। आज आज सुबह तक तो इस घर में मैं बहुत खुश थी, लेकिन अब इस घर से मतलब दिलचस्पी न रही।
1: लड़के अम्मा अम्मा करके दौड़े, मगर उसने दोनों को झिड़क दिया। सर में दर्द है, वो किसी से न बोलेगी। अभी तक खाना नहीं पकाया, पकाता कौन? लड़कों ने तो दूध पी लिया है, मगर उमानाथ ने कुछ नहीं खाया। इस इंतजार में थे कि रूप कुमारी आए, मगर रूप कुमारी के सर में दर्द है, मजबूरन बाजार से पूरियां लानी पड़ेंगी। रूप कुमारी ने मलामत आमेज अंदाज से कहा,
0: तुम अब तक मेरा इंतजार क्यों करते रहे? मैंने खाना पकाने का ठेका तो नहीं लिया है, और जो रात भर वहीं रह जाती, आखिर एक महराजिन क्यों नहीं रख लेते? या जिंदगी भर मुझे को पीसते रहोगे?
1: उमानाथ ने उसकी तरफ मजलूम और सवाले हैरत की निगाह डाली। इस व्यवहार का कोई सबब उसको समझ ना आया। रूप कुमारी से इन्होंने हमेशा बेउज्र इताअत पाई थी, बेउज्र ही नहीं, खुश दिलाना भी। उन्होंने कई बार उससे महराजिन रख लेने की तजवीज और ख्वाहिश जाहिर की थी, मगर उसने हमेशा यही कहा,
0: अब आखिर मैं बैठे बैठे क्या करूंगी? हाँ, आप भी 4-5 रुपए का खर्च बढ़ाने से क्या फायदा? और हाँ, ये रकम जो बच रहेगी तो बच्चों के लिए मक्खन आ जाएगा, है कि नहीं?
1: वही रूप कुमारी आज इतनी बेदर्दी से शिकायत कर रही है। अपने सफाई पेश करते हुए उमानाथ बोले,
3: महराजिन रखने के लिए मैंने तुमसे कई बार कहा है।
0: तो लाकर क्यों नहीं दिया? मैं उसे निकाल देती तो कहते? तुमने कभी सच्चे दिल से कहा? महज महराजिन लाने के लिए कहा। तुम्हारे दिल में कभी मेरे आराम का ख्याल आया ही नहीं। तुम तो खुश थे, अच्छी लौंडी मिल गई है, एक रोटी खाती है

0: और चुपचाप पड़ी रहती है। इतनी सस्ती लौंडी और कहां मिलेगी, महज खाने और कपड़े पर, वो भी जब घर भर की जरूरतों से बचे। 75 रुपलियां लाकर मेरे हाथ में रख देते हो और सारी दुनिया का खर्च। मेरा दिल ही जानता है कि मुझे कितनी कतर ब्योत करनी पड़ती है। क्या पहनूं क्या ओढूं, तुम्हारे साथ जिंदगी खराब हो गई। वो मर्द ही होते हैं जो बीवियों के लिए आसमान से तारे तोड़कर लाते हैं। गुरु सेवक को ही देखो, तुमसे कम पढ़ा है, उम्र में भी तुमसे कहीं छोटा है, मगर 500 रुपया महीना लाता है। और राम दुलारी रानी बनी बैठी, तुम्हारे लिए ये 75 ही बहुत हैं। तुम नाहक ही मर्द हुए, तुम्हें तो औरत होना चाहिए था। औरों के दिल में कैसे कैसे अरमान होते हैं, मगर मैं तो तुम्हारे लिए घर की मुर्गी बासी साग हूं। तुम्हें कोई तकलीफ होती ही नहीं, तुम्हें तो भाई अच्छे कपड़े भी चाहिए, खाना भी अच्छा चाहिए, क्योंकि तुम मर्द हो, बाहर से कमा कर लाते हो। मैं चाहे जैसे रहूं, तुम्हारी बला से।
1: यह सिलसिला कई मिनट तक जारी रहा और बेचारे उमानाथ खामोश सुनते रहे। अपने दानिश्त में उन्होंने रूप कुमारी को शिकायत का कोई मौका नहीं दिया।
2: अब मेरी तनख्वाह कम है जरूर, मगर ये मेरे बस की बात तो है नहीं। दिल लगाकर अपना काम करता हूं, अफसरों को खुश रखने की हमेशा कोशिश करता हूं। इस साल बड़े बाबू के छोटे साहबजादे को 6 महीने तक बिला नागा पढ़ाया, इसलिए तो वो खुश हैं। और अब मैं क्या करूं।
1: रूप कुमारी की नाराजगी का राज तो उन्हें मालूम हो गया। अगर गुरु सेवक 500 रुपये लाता है तो बेशक खुशनसीब है, लेकिन दूसरों की ऊंची पेशानी देखकर अपना माथा तो नहीं फोड़ा जाता। उसे ये मौका मिल गया, दूसरों को ये मौके कहाँ मिलते हैं। वह तहकीक करेंगे कि वाकई उसे 500 रुपये मिलते हैं या महज गप है। बिलगरज मिलते होंगे तो इस पर क्या रूप कुमारी को यह हक है कि उन्हें निशाना या मलामत बनाए। अगर वो इसी तरह रूप कुमारी से ज्यादा हसीन खुश सलीका औरत देखकर उसे कोसना शुरू कर दे तो कैसा हो। रूप कुमारी हसीन है, शीरी जबान है, खुश मजाक है, बेशक, लेकिन इससे ज्यादा हसीन, ज्यादा शीरी जबान, ज्यादा खुश मजाक औरत दुनिया में मादूम नहीं है। एक जमाना था जब उनकी नजरों में रूप कुमारी से ज्यादा हसीन औरत दुनिया में न थी, लेकिन वो जुनून अब बाकी नहीं रहा। जज्बात की दुनिया से हकीकत की दुनिया में आए उन्हें एक मुद्दत गुजर गई, एक दूसरे के ऐब और हुनर मालूम हो गए। अब तो साबिर और शाकिर रहकर ही उनकी जिंदगी आफियत से कट सकती है। रूप कुमारी इतनी मोटी सी बात भी नहीं समझती। फिर भी उन्हें रूप कुमारी से हमदर्दी हुई, उसकी सख्त कलामियों का उन्होंने कुछ जवाब न दिया, शरबत की तरह पी गए। अपनी बहन का ठाट देखकर एक लम्हा के लिए रूप कुमारी के दिल में ऐसे दिलशिकन, मायूसकून, गैर मुनसिफाना ख्यालात पैदा होना बिल्कुल फितरी है। वो कोई फिलोसोफर नहीं, तारिकुद दुनिया नहीं कि हर हाल में अपने तबई सुकून को कायम रखे। इस तरह अपने दिल को समझाकर उमानाथ दरियाफ्त हाल की मुहिम के लिए आमादा हो गए।
3: मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहने की दूसरी कड़ी आपने सुनी। पात्र परिचय इस प्रकार है: रूप कुमारी रेणु चतुर्वेदी, रामदुलारी ममता सिंह, उमानाथ अजेंद्र जोशी, गुरु सेवक जयंत पात्रिकर, सूत्रधार जी श्याम, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। आज आपने इस कहानी की दूसरी कड़ी सुनी। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी दो बहनें आगे कहाँ पहुँचती है, जानने के लिए जरूर सुने कथा सुधा में तीसरी कड़ी अगले हफ्ते।
4: साथियों, आप सुन रहे थे दो बहनें कहानी का भाग दो। इसकी अगली कड़ी आप सुनिएगा अगले सोमवार। और अब सुन रहे हैं हम एक गीत।
5: सुनते हैं ये गाना।

0: मुझे तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: आनंद फिल्म का ये गाना था। और दीपा जी घड़ी की ओर देखिए, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर हम श्रोताओं की टिप्पणियां सुनवाएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली। और कहा जाता है कि मन के हारे हार है मन के जीते जीत, मतलब मन में अगर कुछ ठान ले तो बहुत मुश्किल काम आसान लगता है। क्या कहेंगे दीपा जी आप?
1: ये बात सही है कि जब मन को अगर आपने ठान लिया तो बात आसान होगी, लेकिन जब ये मन अधीर हो जाता है ममता जी, तो अधीर मन में निर्णय लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसकी वजह से जो परिणाम आते हैं वो भी हो सकता है कि गलत हो सकते हैं, है ना।
0: अब जी, हमारे जी। बहुत सारे श्रोता देखते हैं कि क्या कह रहे हैं, इनका क्या कहना है। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि अधीर मन अक्सर जल्दबाजी में निर्णय लेता है और छोटी छोटी बातों पर विचलित हो जाता है। इसके विपरीत क्षमता और धैर्य मनुष्य को परिस्थितियों को समझने, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करने और सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करते हैं। जबकि मन में धैर्य और क्षमा का भाव होता है तब संबंध मधुर बनते हैं और जीवन में शांति बनी रहती है। बहुत कुछ इन्होंने कह डाला है और भी कुछ लिखा है, तो आगे देखते हैं कि हमारे अगले श्रोता ने क्या लिखा है, जरा देखिए आप।
1: ये कहते हैं कि अधीर मन निर्णय की गति को बढ़ा सकता है लेकिन उसकी गुणवत्ता है वो घटा सकता है, और वहीं शांत और संतुलित मन अधिक विवेकपूर्ण और टिकाऊ निर्णय लेने में मदद करता है।
0: और अब अगले श्रोता ये कह रहे हैं कि अधीर मन मतलब जल्दबाजी या व्याकुलता, इसमें निर्णय क्षमता एक दूसरे से विपरीत काम करते हैं। जब मन अशांत होता है तब सटीक या सही निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है, इसके चलते अधूरे तथ्यों पर प्रतिक्रिया दे देते हैं जिसके कारण बाद में पछतावे की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जो भी निर्णय लेना हो उसे शांत चित्त से लें।
1: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और एक और संदेश ये कहता है ममता जी कि मनुष्य का मन जितना चंचल है उतना ही अधीर भी। हर एक बात का उत्तर वो तुरंत चाहता है और हर समस्या का समाधान बिना प्रतीक्षा के खोजता है, लेकिन जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर सही दिशा नहीं दिखाता और कई बार जल्दबाजी में लिए गए निर्णय पर पछताना भी पड़ता है, नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए जब भी मन अधीर हो तो स्वयं को थोड़ा सा हमें समय देना चाहिए, थोड़ा सा संयम रखें, धैर्य रखें, उसके बाद ही निर्णय हमें आगे लेना चाहिए जीवन।
0: और थोड़ा सा वक्त लेना चाहिए कि हम ऐसा नहीं कि अभी तुरंत निर्णय ले लें, वक्त पे छोड़ देना चाहिए, ये भी जरूरी होता है। हमारी एक सखी हैं जिन्होंने लिखा है कि इंसान का मन तालाब के जल की तरह होता है, मन में उत्पन्न हो रहे विचार पानी में फेंके गए कंकड़ की तरह है, खासकर उस परिस्थिति में जब हम हर वक्त अधीरता में रहे। अधीरता यानी कि बेचैनी, अधीरता में किया गया निर्णय मन की शांत सतह पर लहरों की तरह आता जाता है और हम बिना सोचे समझे निर्णय ले लेते हैं, लेकिन अगर हम अपनी बेचैनी पर थोड़ा सा अंकुश लगा लें तब हम स्पष्ट रूप से शांत पानी के नीचे तक देख सकते हैं। जब मन बहुत अधिक बेचैन हो तो उसे कुछ समय के लिए तन्हा छोड़ देना ही बुद्धिमत्ता है। वैसे भी जब आपको कुछ ना सूझे तो आप अकेले शांत चित्त होकर बैठ जाएं, वो कहते हैं कि खाली बर्तन की तरह मन को खाली कर दें।
1: बिल्कुल,
0: तो देखिए आप
1: थोड़ा सा हम अगर
0: सोच सकते हैं सही तरीके से,
1: सही, और थोड़ा सा प्राणायाम कर लीजिए। मान लीजिए बहुत ही ज्यादा व्याकुलता अपने अंदर घिर आई है, थोड़ा सा प्राणायाम कर लीजिए, थोड़ा सा अपनी सांसों को देखिए, गहरी सांस लीजिए, तो सच में कुछ वक्त के बाद हमें लगता है कि हम मन भी शांत हो गया है और शायद हम कुछ अच्छे से सही और सकारात्मक भी सोच सकते हैं। एक संदेश ये कहता है ममता जी कि एक चंचल और अधीर मन कभी भी तार्किक और सही निर्णय नहीं ले सकता। जीवन या कार्यस्थल, यहाँ पर तरक्की के लिए मन की स्थिरता को बढ़ाना और जल्दबाजी की आदत को छोड़ना ही एकमात्र मार्ग है। और एक और संदेश ये कहता है कि अधीर मन के निर्णय लेने की क्षमता बिल्कुल जीरो रहती है। कुछ धैर्यवान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति धैर्य से थोड़ा शांत होकर सही निर्णय ले सकते हैं, फिर कुछ लोग जो सही में हमदर्द होते हैं उनसे अपने मन की अधीरता को आप साझा कर सकते हैं और वहां से भी शायद आपको सही निर्णय मिल सकता है।
0: अब ये तो अधीर मन से कैसे निर्णय लेते हैं ये बताया, लेकिन कभी किसी श्रोता ने अपना अनुभव नहीं साझा किया है कि कब ऐसी परिस्थिति आई जब आपको निर्णय लेना पड़ा, निर्णय आपका सही था या गलत था। एक गाना सुन लेते हैं, शायद तब तक हमारे श्रोता लिख भेजे और हम उनकी टिप्पणी उन तक पहुंचा सके। फिलहाल ये गाना

0: ममता जी, फिर भी अगर ऐसा है कि मन तो अधीर ही रहता है और एंजाइटी बनी रहती है, तो बहुत जरूरी है कि अपने आप पर हम काम करें। जैसे कि हम शारीरिक गतिविधियां कर सकते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी जिसमें कि हमें लगे कि तनाव कम हो, कि कहीं पे सैर के लिए निकल जाना या कहीं कोई ऐसा ग्रुप क्लास कर लेना जहां पे कि आपको अच्छा लगे, मिलके लोगों के साथ व्यायाम करना या कोई मनोवैज्ञानिक सहायता ले लें। अगर आप बार बार ऐसा लगता है कि छोटी छोटी बातें हमें बहुत परेशान कर जाती हैं, हम एक थोड़ी सी अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी में जरा सा हलचल हुआ या कुछ उठा पटक हुई तो हम एकदम परेशान हो जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या किया जाए, हम क्या करें।
1: अब देखिए ना, हमारे एक श्रोता ने लिखा है, इनकी टिप्पणी अभी आई है, मुझे ऐसा लग रहा है, मन की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, जिसे जितना अधिक प्राप्त होता है ये उतने ही अधिक की कामना करने लग जाता है। मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताएं तो सीमित है, लेकिन मानसिक रूप से हर क्षण जन्म ले रही इच्छाओं के कारण मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं रह पाता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि तन की भूख सहज है और जैसे कि तीन पाव की सेर, मन की भूख अनंत है, निगले मेरु समेरु। और एक श्रोता ने लिखा है कि एक गुजराती मुहावरा है, मन होए तो मालवे जवाए, मतलब मन इच्छा करे तो हम कहीं भी जा सकते हैं, अधीर मन से तो हम बीच रास्ते में ही अटक या लटक सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा कि अधीर मन से हम बीच रास्ते में अटक जाते हैं और यही प्रतिकूलता को का सामना करने के लिए हमें अपने आप को एक समर्थ बनाना पड़ता है। कोई शौक हम अपना सकते हैं, पसंदीदा गीत सुनिए, कोई ऐसी क्लास कीजिए, कहीं पर जाइए जहाँ से आपका मन हमें कुछ प्रसन्नता पाए, अच्छा लगे उसे। तो जब आप घर वापस लौटें तो आप जब खुद एक अंदर से सकारात्मक वाइब्रेशन लिए हुए होंगे तो घर में भी वही चीजों को आगे फैलाएंगे। तो मन को शांत रखने के लिए अपनी आदतों को बदलना जरूरी है, कुछ व्यायाम करना जरूरी है, आत्मविश्वासी थोड़ा बनना जरूरी है और आगे भविष्य के लिए एक स्पष्टता के साथ फिर हम निर्णय भी ले सकते हैं।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि अधीर मन शांत दिमाग से निर्णय

0: नहीं का किस्सा मैं बताना चाहूँगा कि बात 2023 की है। छोटे बेटे ने MBBS का एग्ज़ाम नीट में अच्छे मार्क्स प्राप्त किए और काउंसलिंग सेकंड राउंड में मेडिकल कॉलेज अजमेर में सीट फुल हो गई थी और अन्य गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल रहा था। घर के अन्य सदस्य भी राजी थे, बेटे के जो टीचर्स थे वो भी राजी थे। सिर्फ मैंने शांति से निर्णय लिया और थर्ड काउंसलिंग राउंड तक इंतजार किया और बेटे को अपने शहर में ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अजमेर में एडमिशन मिल गया। मतलब इनका कहने का तात्पर्य ये है कि थोड़ा इंतज़ार करो, इंतज़ार के बाद भी कई बार आपके निर्णय जो सही निर्णय होता है वो सही हो जाता
1: बिल्कुल।
0: है।
1: और एक और हमारे साथी ने एक घटना साझा की है। वो ये कहते हैं कि एक बार ऑफिस में मेरी अपने सीनियर के साथ किसी बात को लेके बहस होने वाली थी। उन्होंने मुझे तुरंत बात करने के लिए बुलाया, लेकिन उस समय मुझे लगा कि मेरा मन शांत नहीं है, इसलिए मैंने उस समय चर्चा करने के बजाय थोड़ा समय लिया। शाम को जब हमने बात की, तब तक मेरा मन बिल्कुल शांत हो चुका था। हमने आराम से बातचीत की और बात भी अच्छे से सुलझ गई। तो उन्हें ये कहते हैं कि अगर मैं उस समय गुस्से या आवेश में बात कर लेती तो शायद बात और बिगड़ जाती।
0: तो मतलब क्षणिक और आवेश में लिया गया निर्णय कई बार आपको पछतावा का कारण भी बन जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: अब ये बारिश का मौसम तो है ही है, हालांकि मुंबई में भी बारिश रुकी हुई है, लेकिन देश के बहुत सारे हिस्सों में बारिश हो रही है और बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर बारिश हो ही नहीं रहे, लोग इंतजार कर रहे हैं बड़ी
1: जी
0: तत्परता से।
1: जी
0: लेकिन बारिश आती है तो कुछ सुहावना मौसम कहते हैं, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो बुराइयाँ भी लेकर आती हैं, कुछ परेशानियाँ भी लेकर आती
1: जैसे कि
0: हैं। जैसे कि बारिश का मौसम सुहाना लगे, फर्नीचर है और लकड़ी के फर्नीचर है खास तौर से, उसमें कई बार दीमक लग जाता है, आपने शुरुआत में कहा था,
1: जी बिल्कुल।
0: और कई बार दरवाजे कड़े हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, जो चर्र की आवाज करते हैं, चर्र
1: बिल्कुल।
0: चू। और अगर आप गहरी नींद रात को सो रहे हो और कोई उठे और दरवाजा खूब जोर से आवाज करे तो आपकी नींद भी बाधित होती है।
1: हाँ
0: तो
1: ये बात तो
0: इसलिए
1: है।
0: इनकी देखरेख करना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए लकड़ी की अलमारी ठीक से बंद ना हो रही हो, दराज अटकने लगे, चिपकने लगे और हमारे सोफे में से अलग सी गंध आने लगे तो समझ जाना चाहिए कि बाहर की नमी का असर हमारे फर्नीचर पर होने लगा है
1: बिल्कुल।
0: और किसी मिस्त्री को बुलाकर आपको उसे ठीक करवाना चाहिए।
1: ठीक भी कराना चाहिए। और कई बार ममता जी, हम परेशान हो जाते हैं कि ये फर्नीचर क्यों इस तरह फूलने लग जाते हैं। तो छोटी छोटी सी बातें, कुछ ऐसे कारण है जैसे कि हवा में नमी बढ़ जाती है, लकड़ी उसे जल्दी सोख लेती है और इसलिए फर्नीचर फूलने लग जाते हैं या मुड़ जाते हैं। नमी की वजह से दरार और जॉइंट्स भी ढीले हो जाते हैं फर्नीचर के, और लंबे समय तक नमी रहने से लकड़ी में फंगस और दीमक लगने का रिस्क बढ़ जाता है। और कई बार हमने ये भी देखा है ममता जी कि पॉलिश भी उतरने लग जाती है, लकड़ी की चमक थोड़ी फीकी सी पड़ जाती है। और अगर कमरे में वेंटिलेशन, मतलब हवादार कमरा नहीं है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि नुकसान ज़्यादा होने लग जाता है अपने जो भी फर्नीचर हैं उस कमरे के।
0: और हमारी एक सखी है जिन्होंने कुछ नुस्खे भी बताए हैं कि इनकी हिफाजत के लिए फर्नीचर को हमेशा नमी और बारिश की बौछारों से दूर रखें, उन पर पॉलिश या वैक्स की कोट कराएं और नियमित रूप से सूखे कपड़े से पोंछती रहें। इन दिनों में फर्नीचर को कभी भी गीले कपड़े से ना पोंछें, सफाई के लिए हमेशा सूखे और मुलायम कपड़े का उपयोग करें ताकि नमी अंदर ना जाए और अलमारी और दराजों में सीलन और फंगस से बचने के लिए एक जेल का नाम लिखा है उस जेल के पैकेट का उपयोग करें या नेफ्थलिन की गोलियां या कपूर की गोलियां वहां पर रख सकती हैं। जबकि होता क्या है कि आपकी जो सहायिका है काम करने वाली आती है, एक कपड़ा गीला करती है और पूरे घर में वो
1: पहुंच
0: पोंछ
1: देती हैं
0: देती है,
1: जी।
0: सारे अलमारी जितने टेबल हैं कुर्सियां हैं, तो वो नमी तो आएगी उसमें।
1: बिल्कुल सही कहा। और इन सब चीज़ों का भी ध्यान तो रखना ही है। साथ में जब बारिश बहुत ज़्यादा होने लगेगी तो मानसून के समय दीवारें, खास तौर पे बाहरी दीवारों में नमी बहुत जल्दी सोख लेती है। तो अगर आपकी अलमारी या बिस्तर दीवार से सटा हुआ है तो वो नमी सोख लेगा, तो उसे बस 2-3 इंच थोड़ा सा इन दिनों में जब बरसाती मौसम रहेगा तो उसे थोड़ा सा आगे खींच लीजिए। और इस छोटे से गैप के पीछे हवा का जब प्रवाह बन जाएगा तो लकड़ी में पानी जाने से रुक जाता है। और तेज बारिश के बाद एक बार फिर इसकी जांच आपको बीच बीच में करते रहना बहुत जरूरी है।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि लकड़ी एक प्राकृतिक सामग्री है जो मौसम के बदलावों, पानी और धूल के प्रति बेहद संवेदनशील होती है। इसकी चमक और मजबूती को बरकरार रखने के लिए आपको कुछ बुनियादी

0: नियमों का पालन करना चाहिए। यहाँ लकड़ी के फर्नीचर की देखभाल के लिए सबसे महत्वपूर्ण सावधानियाँ और उपाय दिए गए हैं और बहुत सारे उपाय इन्होंने लिखे हैं। गहरी सफाई के लिए कपड़े को गुनगुने पानी और माइल्ड सोप के घोल में भिगोकर अच्छी तरह से निचोड़ लें। साफ करने के तुरंत बाद सतह को सूखे कपड़े से पोंछना न भूलें। और इन्होंने लिखा है कि केमिकल्स से बचें और ब्लीच या अमोनिया युक्त रसायनों का सीधे लकड़ी पर उपयोग करने से उसकी फिनिशिंग पूरी तरह से खराब हो सकती है। धूप और तापमान से सुरक्षा, सीधी धूप से दूरी रखें, और भी कुछ सावधानियां इन्होंने बताई हैं जिससे आप अपने फर्नीचर को सुरक्षित रख सकते हैं।
1: बिल्कुल। और अब हम क्या कर सकते हैं?
0: गाना सुनवा सकते हैं। तो ये रहा गाना।

0: प्राण जाए पर वचन न जाए फिल्म का ये गाना सखियां और सखा सुन रहे थे। और हम बात गाने से पहले लकड़ी के फर्नीचर की कर रहे थे कि किस तरह से हिफाजत करें, लकड़ी के फर्नीचर जल्दी से खराब हो जाते हैं बारिश के मौसम में,
1: और तो जब बहुत शौकीन होते हैं कोई फर्नीचर इकट्ठा करने के, और बड़े कीमती और नक्काशीदार फर्नीचर अगर किसी ने रखा हुआ है घर में और ऐसे में कहीं पे कहीं कोई सीलन से दिख जाती है या कोई फफूंद दिख जाती है, तो वाकई में लगता है कि चैन हमारे मन को नहीं मिल रहा है ना।
0: बिल्कुल सही कह रही। और जो फंगस दिखाई देता है खास तौर से सोफा है, कुर्सियां हैं, डाइनिंग टेबल है, तो उसमें उसको जरूरी हो जाता है धूप दिखाना। लेकिन आप बताइए कि मुंबई जैसे शहर में जब बारिश होती है तो लगातार बारिश होती है।

0: ना, कई कई दिन तक, यहाँ तक कि 10-10 दिन तक धूप नहीं आती, धूप कहाँ से लाएंगी आप?
1: बिल्कुल लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ सूखे कपड़े से ही अपने फर्नीचर को साफ कीजिए। अगर आपके घर में जो हाउस हेल्प जो आती है, मदद करती है जो दीदी, उन्हें भी बिल्कुल आप सख्त उस वक्त तो हिदायत दे देनी चाहिए कि गीले कपड़े से बिल्कुल पोंछना नहीं है, सूखे और मुलायम कपड़े से अपने फर्नीचर को पोंछा जाए, क्योंकि धूप का पता नहीं है कब आएगी, खास तौर पे मुंबई जैसे शहर की अगर आप बात करते हैं तो। और
0: फर्नीचर के लिए सही कवर भी जरूरी होता है कि जैसे कॉटन या कोई ऐसा फैब्रिक जिसमें कि हवा आसानी से आ जा सके, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और समय समय पर कवर हटाकर हवा भी लगाते रहना चाहिए। और अलमारी या ड्रॉर को समय समय पर कुछ देर के लिए खुला छोड़ देना चाहिए, इससे नमी अंदर नहीं जमा होगी। कपड़ों और सामान को पूरी तरह सुखा कर ही अंदर रखना चाहिए। एक तरीका और है कि आप जब अलमारी और दराज खोलें तो तेज फैन चला दें, तो वो जो हवा होती है कृत्रिम हवा ही सही हवा लगेगी, तो हवा लगे। जो नमी है वो बिल्कुल कम हो
1: और
0: जाती है।
1: बहुत ही ज्यादा अगर आपको लगता है कि घर में नमी सोख

0: देर के लिए खुला छोड़ देना चाहिए, इससे नमी अंदर नहीं जमा होगी। कपड़ों और सामान को पूरी तरह सुखा कर ही अंदर रखना चाहिए। एक तरीका और है कि आप जब अलमारी और दराज खोलें तो तेज फैन चला दें, तो वो जो हवा होती है कृत्रिम हवा ही सही हवा लगेगी, तो हवा लगे। जो नमी है वो बिल्कुल कम हो जाती है।
1: और बहुत ही ज्यादा अगर आपको लगता है कि घर में नमी सोख गई है तो हम डिह्यूमिडिफायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ में कपूर की टिकिया आप अलमारी में रख लीजिए, या नीम की सूखी पत्तियां भी कहीं कहीं लोग कहते हैं कि उसको रखने से भी जो अंदर अलमारी के अंदर खासतौर पे कोई सीलन आ गई है या नमी है वहां पे इकट्ठी हो गई है तो वो सब बाहर निकल जाती है या सोख लेता है वो। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं जिनका हम ध्यान रख कर सकते हैं। और देखिए ना, फर्नीचर कोई बार बार हमारे घरों में बनते नहीं है ममता जी, तो जो भी है जितने भी हमारे पास ये जरूरी सामान और कीमती चीजें, इनका हम ऐसी छोटी छोटी बातें अपना करके इनका हम ध्यान रख सकते हैं।
0: और दीपा जी, जब फर्नीचर की बात कर रही हैं, जो कुर्सियां होती हैं, टेबल होती हैं, डाइनिंग टेबल भी होता है ना घर पर, डाइनिंग टेबल पर बैठकर क्या करते हैं हम?
1: खाना खाते हैं।
0: तो आज किस खाने की बातें करने वाले
1: आज
0: थे?
1: हम चलेंगे पंजाब की तरफ, जहाँ पे कि भरवा पराठे के लिए ये प्रदेश प्रसिद्ध है। यहाँ पे अलग अलग तरह के बहुत तरह के भरवा पराठे बनते हैं। हमारे सखियों ने लिख भी भेजा है कि ये किस तरह बनाया जाए, तो हम रेसिपी बताएं या एक गीत सुने पहले?
0: नहीं, पहले रेसिपी बताएंगे, क्योंकि एक हमारी सखी ने लिख भेजा है कि पेड़ा लस्सी पंजाब का एक प्रसिद्ध और समृद्ध प्रादेशिक पारंपरिक पेय है, जो मुख्य रूप से अमृतसर शहर में बेहद लोकप्रिय है। ये सामान्य लस्सी का एक बेहद शाही और पारंपरिक पंजाबी पेड़े मावा खोए जैसी बनी मिठाई को एक साथ मथ कर तैयार किया जाता है। क्या बात है भाई, ये तो अलग तरह की रेसिपी पता चली है।
1: जी, ये अलग तरह की रेसिपी है, लेकिन हमने अपने श्रोताओं से मांगी थी, सखियों से मांगी थी भरवा पराठों की रेसिपी। तो भरवा पराठे में जैसे हम शुरुआत में बात कर रहे थे, बहुत तरह के पराठे होते हैं, आलू का पराठा, गोभी का पराठा, पनीर का पराठा, मूली का पराठा। तो दो पराठों के बारे में पहले बता देते हैं हम। आलू का पराठा जैसे सभी जानते हैं लोकप्रिय है, सभी का पसंदीदा नाश्ता होता है। उबले हुए, मैश किए हुए आलू में प्याज, हरी धनिया, अजवाइन, मिर्च या आपके घर में जो पसंद आता है वो सब डाल के, मसाले डाल के ये मिश्रण तैयार करना है। और गेहूं के आटे तो जैसे घरों में लगता है वैसा ही लगेगा। इस मसाले को आटे के अंदर भर के लोई बना के हम जैसे साधारण पराठे बनते हैं उस तरह से इसे बनाना है। और इसी तरह से गोभी का पराठा भी बना सकते हैं आप। कद्दूकस की हुई ताजी गोभी ले लीजिए, उसमें मसाले, अदरक, लहसुन ये सबको डालकर एक हल्का सा इसके भून लीजिए ताकि वो कच्चापन उसमें ना लगे और पराठा भी गीला ना हो, अंदर का जितना भी उसका मॉइस्चर है वो सूख लेता है बघार करने से। और इस तरह से एक और पराठा भी बना सकते हैं, पनीर का पराठा। तो कद्दूकस किए हुए पनीर, फिर लाल मिर्च, गरम मसाला, कसूरी मेथी या इसके अलावा आप कोई भी मसाले इसमें डाल सकते हैं। प्रोटीन से भरपूर होता है ये वाला पराठा, जो कि पंजाब में बहुत प्रसिद्ध है।
0: और मटर का पराठा भी बहुत प्रसिद्ध है
1: जी।
0: जो मटर, हरी मटर को अच्छी तरह से पहले तो छिलका निकाल के उसको धोकर और बॉईल कर लें, उबाल लें, और उबालने के बाद उसके दो तरीके होते हैं, या तो उसको मैश कर लें या फिर मिक्सी में उसको क्रश कर ले, क्रश करके आटे में मिला लें। दूसरा तरीका ये होता है कि उसको मैश करके थोड़ा सा कढ़ाई में भून लें ताकि उसकी जो पानी होता है निकल जाए, और उसमें जो भी लहसुन, अदरक, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्ची डालकर आटे में, आटे की लोई बना के उसमें भर लें, वो भरवा पराठा जैसा कि हमने कहा ही है। तो तवे पर सेक ले। पराठा बनाने का तरीका तकरीबन एक ही होता है, पर स्वाद बिल्कुल अलग हो जाता है। तो हमारी जो सखियां और सखा सुन रहे हैं, हमें लगता है कि आएंगे, आजमाएंगे और बताएंगे हमें, और फिर किसी दिन किसी और प्रदेश की व्यंजन की हम बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं गाने की, सुनवा रहे हैं ये गाना।

0: मासूम फिल्म का गाना था, आरती मुखर्जी की आवाज़, गुलजार के बोल थे, राहुल देवर्मन का संगीत था। और अब घड़ी की ओर देख रहे हैं दीपा जी, बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोलें बतियाएं या गाना सुनवाएं। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
0: नमस्कार। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: सेहतनामा।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर उमेश ओझा जो यूरोलॉजिस्ट हैं बॉम्बे हॉस्पिटल और हिंदुजा हॉस्पिटल मुंबई में। और डॉक्टर साहब को हमने आमंत्रित किया है आज प्रोस्टेट विषय पर बात करने के लिए और यूरिन से जुड़ी हुई और जो अन्य बीमारियां होती हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर उमेश ओझा विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
2: थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। ये मेरी खुद किस्मती है कि मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ और इतने लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।
1: क्या बात है डॉक्टर साहब, और विविध भारती के स्टूडियो में आप आए हैं तो हमें ये पता चला है कि आप गानों के बड़े शौकीन हैं, संगीत से भी प्यार करते हैं, तो एक सवाल हमारा ये है कि विविध भारती के स्टूडियो में आपको आकर एहसास कैसा हो रहा है?
2: पुरानी यादें ताज़ा हो रही है
1: जी।
2: उस जमाने में विविध भारती ही एक ऐसी चैनल थी जिसके द्वारा हम अच्छे अच्छे गाने सुनते थे। इवन इन मेडिकल प्रोफेशन जब हम थक जाते हैं, स्ट्रेसफुल रहते हैं, यही रेडियो की आवाज़,
1: क्या बात,
2: यही आप लोगों की आवाज़ और यही अच्छे गाने हमें कुछ एक रिलैक्सेशन देते हैं।

0: और अगली चैलेंजेस के लिए वापस तैयार कर देते हैं। सो विविध भारती एक ऐसी संस्था है, इतने सालों से हम विविध भारती के बिना कभी नहीं नहीं सकते हैं, और आज भी ये देख के बहुत खुशी होती है कि इतने कॉम्पिटिटिव जमाने में विविध भारती ने भी इतना ही प्रोग्रेस किया है कि अभी भी वो इतनी ही पॉपुलर संस्था है, और कभी भी चांस मिला वापस विविध भारती में गाने सुनने की हमेशा इच्छा रहती है।
1: क्या बात है डॉक्टर साहब, हमें बड़ा गौरव का एहसास होता है जब आप सबकी इस तरह की प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। तो आज हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज सेहतनामा कार्यक्रम में जो हमने विषय रखा है वो है प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी हुई अन्य बीमारियां और बीमारियों के निवारण। तो बताइए हमारे श्रोताओं को कि पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना आजकल बहुत आम हो रहा है, तो प्रोस्टेट का बढ़ना क्या है और शरीर में इसका मुख्य काम क्या होता है?
0: राइट, हर पुरुष में प्रोस्टेट की ग्रंथि रहती है
1: जी।
0: उनका कार्य है कि वो जूस सिक्रेट करता है जो हमारे वीर्य या सीमन का पार्ट रहता है, और ये जूस जो स्पर्म्स रहते हैं उनको न्यूट्रिशन देता है
1: जी।
0: आफ्टर एज ऑफ 40 धीरे धीरे शरीर में हार्मोन के बदलाव से प्रोस्टेट की ग्रंथि में चेंजेस शुरू होते हैं और धीरे धीरे प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है
1: जी।
0: और प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ने से, क्योंकि प्रोस्टेट की पोजीशन हमारे यूरिन के ब्लैडर के नीचे जो यूरिनरी पैसेज है उसके सराउंडिंग प्रोस्टेट वहां बनी रहती है
1: जी।
0: और जब भी ये ग्रंथि बढ़ती है तो ये यूरिनरी ट्यूब पे दबाव आने से यूरिन करने की दिक्कतें बढ़ने लगती है। सो इस प्रकार से धीरे धीरे प्रोस्टेट के जो प्रॉब्लम्स है एज एज एडवांसेस, जैसे प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है प्रॉब्लम बढ़ते हैं। सो बेसिकली ये सब प्रॉब्लम एज रिलेटेड है, और जैसे एज बढ़ती है लोगों की प्रोस्टेट बढ़ने लगती है और उनके प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि हर एनलार्ज प्रोस्टेट डजंट मीन के वो प्रॉब्लम देने वाली है या उसके ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। सो प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है
1: जी। तो आपने जिक्र किया कैंसर का, तो अमूमन जैसे ही प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ती है लोग यही मानते हैं कि अब उनको कैंसर होना पक्का है, आगे चल के कैंसर हो जाएगा, तो ये कहाँ तक मिथ है, कहाँ तक इसके बारे में थोड़ा क्लियर करिए कि प्रोस्टेट किस तरह की बीमारी है और कैंसर क्या है?
0: राइट, सो हर प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ने से कैंसर होता है, ये गलत बात है और ये मिथ है। आजकल लोग इतनी इंफॉर्मेशन के कारण जब ये सब चीजें पढ़ते हैं सुनते हैं बहुत घबरा जाते हैं। दूसरी बात हुई कि रेगुलर हेल्थ चेकअप बहुत अच्छी बात है
1: जी,
0: लेकिन वहां कहां भी रिपोर्ट्स में पढ़ लिए कि प्रोस्टेट बढ़ गई है लोग एकदम चिंतित हो जाते हैं
1: जी, जी।
0: और फिर डॉक्टर गूगल के पास जाके काफी इंफॉर्मेशन जमा करते हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन होना महत्व का है
1: हाँ।
0: लेकिन उसके कारण अननेसेसरी टेंशन लाना जरूरी नहीं है
1: बिल्कुल।
0: सो हर प्रोस्टेट बढ़ने से उनमें कैंसर होगा ये बात सही नहीं है
1: जी।
0: लेकिन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट जो बिनाइन है नॉर्मली उसके साथ में कैंसर भी हो सकता है। सो ओनली थिंग इज रेगुलर चेकअप बाय एन एक्सपर्ट, जिसके कारण अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई तो समय सर हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं और समय सर उसे हम ट्रीट कर सकते हैं
1: जी।
0: लेकिन प्रोस्टेट बड़ी या एनलार्ज प्रोस्टेट हुई उसका मतलब अभी कैंसर हो जाएगा ये गलत बात है, और अननेसेसरी उसके बारे में टेंशन रखना वो ठीक नहीं है
1: बिल्कुल। तो प्रोस्टेट बढ़ा है और क्या है इसके लक्षण, कैसे पता चले एक मरीज को, और दूसरा इसकी जांच की पद्धति क्या है, किस तरह के टेस्ट होते हैं?
0: राइट, पहली बात मैंने बताया ऐसे हेल्थ चेकअप में काफी समय रिपोर्ट में आएगी प्रोस्टेट बढ़ी हुई है, लेकिन उसका मतलब नहीं कि वो बढ़ी हुई प्रोस्टेट के लिए या एनलार्ज प्रोस्टेट के लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता है
1: जी।
0: प्रोस्टेट के लिए हम तीन चीजें देखते हैं
1: जी।
0: एक कैंसर नहीं वो हम चेक करते हैं, दूसरी बात उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस या किडनी डैमेज नहीं हो रहा है वो हम देखते हैं, और तीसरी बात कि उनके सिम्टम्स के कारण पेशेंट को कितनी दिक्कतें होती है उस हिसाब से हम निर्णय लेते हैं कि ट्रीटमेंट की आवश्यकता है या आवश्यकता नहीं है
1: जी।
0: सो

0: जब रिपोर्ट दिखाता है कि एनलार्ज प्रोस्टेट है, पेशेंट में कोई सिम्टम्स नहीं हो सकते हैं, वो चेकअप किया इसलिए एनलार्ज प्रोस्टेट करके वो दिखा रहा है
1: जी।
0: ऐसे पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तपास करनी जरूरी है।
1: जी जी।
0: सिम्टम्स जिनको प्रॉब्लम देते हैं उनको दो प्रकार के सिम्टम्स रहते हैं
1: जी।
0: एक जिसे हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स और वॉइडिंग सिम्टम्स, जहां यूरिन करने में दिक्कत, यूरिन की धार वीक होना, यूरिन के लिए जोर करना, यूरिन के लिए बार बार जाना, और दूसरी जो है इसे हम स्टोरेज सिम्टम्स कहते हैं। उसके कारण जब यूरिनरी ब्लैडर पे असर होता है तो कभी कभी पूरी यूरिन निकलती नहीं है, इन्फेक्शन हो सकता है, उसके कारण पेशेंट को बार बार यूरिन के लिए जाना, कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाना, ये सब सिम्टम्स बाहर आने लगते हैं।
1: जी जी।
0: लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि ये सब सिम्टम्स खाली एनलार्ज प्रोस्टेट के कारण ये ऐसी बात नहीं है, बाकी रोगों के कारण भी ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं
1: जी।
0: जैसे डायबिटीज, जहां डायबिटीज के कारण काफी लोगों को फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बढ़ जाती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे पार्किंसंस डिजीज जिसके कारण, या पथरी ब्लैडर में रही, सो ये सब सिम्टम्स के काफी कारण हो सकते हैं। ये सिम्टम्स हुए उसका मतलब ये नहीं कि ये खाली एनलार्ज प्रोस्टेट के कारण ही हुआ है।
1: जी जी जी।
0: इसीलिए हम अब ये सिम्टम्स को LUTS या लोअर यूरिनरी ट्रैक सिम्टम्स कहते हैं
1: जी।
0: और फिर जांच करना जरूरी है जानने के लिए कि प्रोस्टेट के कारण है या और कुछ कारण के हिसाब से ये सिम्टम्स से पेशेंट परेशान है।
1: जी जी। तो टेस्ट किस तरह के होते हैं, मतलब ब्लड के जरिए होता है या फिर सोनोग्राफी या क्या तरीका है?
0: राइट। सो पहले तो हिस्ट्री के हिसाब से हम देखते हैं कि ये सिम्टम्स कितने बॉदरसम है पेशेंट्स को।
1: जी जी।
0: उसका स्कोर रहता है जिससे हमें आइडिया आता है कि सीवियरिटी सिम्टम के हिसाब से कितनी है।
1: जी।
0: बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन महत्व का रहता है कि प्रोस्टेट हम चेक करते हैं कि कितनी बड़ी हुई है, उसमें कुछ चेंजेस कैंसर के फील होते हैं कि नहीं, यूरिन की ट्यूब व्यवस्थित है कि नहीं, ब्लैडर कुछ भरा हुआ नहीं है। सो नेक्स्ट पार्ट इज अ फिजिकल एग्जामिनेशन। देन वी डू लेबोरेटरी टेस्ट, जैसे इनका हीमोग्लोबिन कैसा है, ब्लड शुगर कैसी है, सीरम क्रिएटिनिन, जिसे पता चलता है कि इसके कारण दोनों किडनी पे प्रेशर आके क्रिएटिनिन बढ़ के किडनी तो डैमेज नहीं हो रही है। यूरिन टेस्ट करते हैं जानने के लिए कि उसमें इन्फेक्शन तो नहीं है, कभी कभी ब्लड तो नहीं जा रहा है, ये यूरिन टेस्ट से हम पता करते हैं। एक महत्व की टेस्ट है जिसे हम PSA या प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट कहते हैं, या ब्लड टेस्ट है
1: जी।
0: ये एक टेस्ट है जानने के लिए कि कैंसर की शक्यता है या नहीं है। जिनको ये नंबर या PSA का रिपोर्ट ज्यादा रहता है उनको प्रॉपर इवेल्युएशन की जरूरत रहती है
1: जी।
0: ये भी गलत मानना है कि एक बार PSA का नंबर ज्यादा आया मतलब कैंसर ही है। PSA बढ़ने के भी अलग अलग कारण हैं, कभी प्रोस्टेट बड़ी होने से, वहां इन्फेक्शन होने से, सूजन होने से, बट अगर PSA का नंबर ज्यादा है तो वो हिसाब से चेकअप करना जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: इसके बाद में हम सोनोग्राफी करते हैं
1: जी।
0: सोनोग्राफी करने का यही कारण है जानने के लिए कि इसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस लाइक स्टोन्स या फिर उसके कारण किडनी पे प्रेशर तो नहीं है, ये सब चीजें हम सोनोग्राफी से पता करते हैं। ये भी पता चलता है कि पूरी यूरिन निकलती है या नहीं, या अंदर यूरिन रह जाती है। सो ये सब चीजें हम सोनोग्राफी से पता करते हैं और साइज ऑफ द प्रोस्टेट पता चलती
1: जी,
0: है
1: जी।
0: ये भी जानना जरूरी है कि साइज के हिसाब से डर जाना जरूरी नहीं है।
1: ओके।
0: बड़ी प्रोस्टेट मतलब प्रॉब्लम होना ही चाहिए या ट्रीटमेंट लेनी ही चाहिए, ऐसी बात नहीं है। सो साइज इज इम्पोर्टेंट, लेकिन साइज के हिसाब से हम पूरी ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं करते हैं।
1: जी जी।
0: क्योंकि लोग जब देखते हैं रिपोर्ट में सोनोग्राफी में कि 100 ग्राम की प्रोस्टेट है, डर जाते हैं कि इतनी बड़ी प्रोस्टेट है, कल ऑपरेशन कर दीजिए। सो ये अगेन गलत बात है। खाली साइज के हिसाब से हम ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड नहीं करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: सो ये स्टैंडर्ड हम टेस्ट करके देखते हैं कि पेशेंट को कितनी तकलीफ है, प्रोस्टेट के कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस है या नहीं, या कैंसर की शक्यता है कि नहीं। इस इवैल्यूएशन के बाद में वो वी कैन टेक अ डिसीजन कि आगे हमें क्या करना है।
1: जी, बहुत सही बातें आपने बताई हैं, बहुत सही जानकारी। और इसमें बहुत सारी गलतफहमियां लोगों को होती है कि प्रोस्टेट बढ़ा तो खुद ही

0: टेंशन में आकर खुद ही तय कर लेते हैं, तो बेहतर है कि एक यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं और उन्हें तय करने दें कि क्या करना है। अब हम यहाँ पर तय कर रहे हैं कि आपकी पसंद का कोई गाना आना चाहिए, बताइए कौन सा गाना सुनवाएं।
1: जरूर, इस प्रोफेशन में भी हम मानते हैं कि हमेशा हमें ऊपर वाले के आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है,
0: क्या बात है,
1: और लोगों के गुड विशेस की हमें हमेशा जरूरत पड़ती है। सो ऊपर वाले को याद करके, बहुत पुराना बहुत अच्छा गाना है, ए मालिक तेरे बंदे हम,
0: दो आंखें बारह हाथ,
1: क्या
0: बात है, सुनते हैं, बहुत ही बेहतरीन गाना चुना है।

0: डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ऊपर वाले का वरद हस्त जरूरी होता है। सचमुच हम तो यही कहते हैं कि डॉक्टर की दवा और दुआ दोनों कारगर होती है मरीज के लिए।
1: आपकी बात बहुत सच है। मैं बताऊं,
0: जी
1: लोग डॉक्टर्स को भगवान मानते हैं, लेकिन
0: जी
1: ये सच नहीं है। हम तो ऊपर वाले ने जो हमको काम दिया है वो कैसे अच्छी तरह से करें वो
0: बेहतर
1: हमारी
0: तरीके
1: इच्छा रहती है।
0: से
1: बहुत बड़ा गैप है भगवान और हमारे में। अच्छी बात है क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर्स को दी गई हुई है,
0: जी।
1: लेकिन हम भगवान नहीं है। हमें हमेशा भगवान की आशीर्वाद की और मदद की जरूरत पड़ती है।
0: जी सही बात है, लेकिन एक मरीज यही मान के चलता है क्योंकि डॉक्टर के बदौलत वो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। और गाने से पहले डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे, आपने जिक्र किया था कि मरीज प्रोस्टेट बढ़ा हुआ देखते हैं और घबरा जाते हैं कि अब उन्हें सर्जरी की जरूरत है। तो श्रोताओं को बताइए कि कौन सी ऐसी स्थिति आती है जब सर्जरी की जरूरत है और किस तरह से इसका इलाज किया जाता है, दवाइयों से और सर्जरी से दोनों बताइए।
1: प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट में काफी बदलाव आया है। एक जमाना था कि पेशेंट के पास

0: और हमारे पास खाली तीन ऑप्शन थे, या तो कुछ नहीं करना, या तो नली डाल के रखना,
1: जी,
0: या
1: जी.
0: तो ऑपरेशन करना। जैसे मैंने बताया कि
1: जी.
0: हर एनलार्ज प्रोस्टेट के कारण अलग अलग रहते हैं, और अगर इवेल्युएशन व्यवस्थित नहीं किया और ऑपरेशन भी किया तो उसका फायदा नहीं होता है। सो पहले तो जिनको कोई तकलीफ नहीं उसके लिए कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं रहती है। हाँ जी, रेगुलर चेकअप करना बहुत जरूरी है। द सेकेंड पार्ट इज मेडिकेशंस। आजकल काफी दवाएं आई है जिसके कारण यूरिन करने में सुविधा होती है, अंदर ज्यादा यूरिन रहती नहीं है, प्रोस्टेट का जो भाग है वो थोड़ा दवा से खुल जाने से पेशेंट को काफी आसानी और आराम मिलता है, जिसे हम अल्फा ब्लॉकर्स कहते हैं और फाई रिडक्टेस इनहिबिटर, ये कुछ दवाएं के ग्रुप्स है जिसके कारण प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट में काफी बदलाव आ गया है।
1: जी,
0: अगर दवाई देने के बावजूद भी लोगों की तकलीफ कम नहीं हुई तब उस समय हमें निर्णय लेना पड़ता है कि इस मरीज को ऑपरेशन की आवश्यकता है या आवश्यकता नहीं है।
1: जी,
0: कभी कभी उसके लिए भी स्पेशल टेस्ट है जिसे हम यूरोडायनेमिक्स कहते हैं।
1: जी हाँ,
0: क्योंकि यूरिन करने के लिए दो चीजें महत्व की, यूरिनरी ब्लैडर में काफी प्रेशर होना चाहिए यूरिन बाहर फेंकने के लिए, और जो रास्ते में प्रोस्टेट है वो रुकावट नहीं करनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम ब्लैडर का है और हम प्रोस्टेट का ऑपरेशन करेंगे तो उसका रिजल्ट सही नहीं मिलेगा।
1: जी जी,
0: सो कुछ केसेस में हमें स्पेशल यूरोडायनेमिक टेस्ट करनी पड़ती है और फिर हम निर्णय लेते हैं ऑपरेशन के लिए।
1: जी,
0: पहले के जमाने में खाली ओपन ऑपरेशन ही हमारे पास एक ऑप्शन था।
1: जी,
0: आजकल दूरबीन से, जिसे हम TUPR और टर्फ कहते हैं, जहां अंदर से ही लेजर से या अलग अलग एनर्जी सोर्सेस से रास्ता बढ़ा करके प्रोस्टेट के कुछ चिप्स निकाल देते हैं ताकि रास्ता बढ़ जाता है और फिर पेशेंट को यूरिन करने में काफी आसानी हो जाती है। आजकल कुछ नए नए टेक्निक्स भी आए हैं, जैसे रिज्यूम है या फिर यूरोलिफ्ट है, ये सब नई तरीके हैं जिससे मिनिमल प्रोसीजर करके अगर रास्ता बड़ा कर सकें और पेशेंट को राहत दे सकें, ये कोशिश रहती है।
1: जी,
0: लेकिन अभी तक ये सब नई टेक्निकें हैं, एक्सपेंसिव है, और लॉन्ग टर्म इतना आउटकम कैसे रहेगा वो अभी तक हमें वो उसका एश्योरेंस नहीं है। सो ये नई नई चीजें आई हैं, हम पेशेंट के सामने सब ऑप्शंस रखते हैं।
1: जी, जी.
0: और ये जिसे हम कहते हैं कि शेयर्ड डिसीजन है, क्योंकि हर ऑपरेशन के कुछ आड़ असर भी रहते हैं।
1: जी, जी.
0: हर ऑपरेशन के लिए पैसे भी खर्च पड़ते हैं, और ये सब करने के बाद अगर पेशेंट को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो अच्छा ऑपरेशन करने के बाद में भी जो हम सक्सेस चाहते हैं वो नहीं मिलता है।
1: जी,
0: सो इसीलिए पेशेंट के साथ बात करके उनको समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में सब जगह पे नई नई टेक्निक काफी इसका प्रचार हो रहा है।
1: जी, जी.
0: और पेशेंट वो सोच के आ जाते हैं कि ये बस यही सबसे अच्छी ट्रीटमेंट है, और वो करा के आते हैं, लेकिन कभी कभी उसमें सक्सेस नहीं मिलता है, क्योंकि केस सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
1: इसलिए अनुभवी डॉक्टर के पास जाएं, वो ज्यादा अच्छा होता है। तो आजकल की जो तकनीक का आपने जिक्र किया, तो जो भी तकनीक है, अमूमन कितना वक्त लगता है ऑपरेशन के लिए? क्योंकि ऑपरेशन के नाम से मरीज घबराता है कि अरे हमें 2-3 दिन के लिए एडमिट होना पड़ेगा हॉस्पिटल में।
0: सो कुछ टेक्निक है जो एक दिन अस्पताल में रहना पड़ता है और फिर थोड़े दिन कभी कभी नली लगा के रखनी पड़ती है, कैथेटर और बैग, एंड देन पेशेंट इज क्वाइट ऑल राइट। जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन है जिसे हम TORP कहते हैं या होलेप जो लेजर से करते हैं, उसके लिए 3 दिन अस्पताल में रहना पड़ता है और नली 3 या 4 दिन रखनी पड़ती है। कभी कभी अगर पेशाब की थैली वीक रही, काफी बड़ी प्रोस्टेट रही, तो फिर नली हमें ज्यादा समय तक रखनी पड़ती है।
1: जी, जी.
0: लेकिन पहले जैसे जो कट करके हमें इतना बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता था वो अब नहीं रहा है, पेशेंट थोड़े ही समय में अपने काम पे वापस जा सकता है।
1: जी, जी. डॉक्टर साहब, यहाँ पर अब बात थोड़ी सी घबराने की भी हो जाती है, क्योंकि सर्जरी के नाम से कोई भी मरीज थोड़ा ना थोड़ा घबरा ही जाता है, भले ही 2 दिन के लिए 1 दिन के लिए एडमिट होना पड़े। तो थोड़ी घबराहट कम करने के लिए एक गाना सुन लेते हैं।
0: ओ,
1: कौन सा गाना सुनवाए?
0: राजेश खन्ना जी का गाना सफर, जीवन से भरी तेरी आंखें।
1: वाह, क्या बात है, किशोर कुमार की आवाज।
0: किशोर कुमार की आवाज, क्या गाना है
1: जी। सुनते हैं यही गाना, फिल्म सफर।

0: डॉक्टर साहब, गाने से पहले बात चल रही थी ऑपरेशन की, सर्जरी की बात चल रही थी, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि अमूमन लोगों का आजकल वेट बढ़ना और अनियमित दिनचर्या हो रही है और वजन बढ़ना, तो लोग इन सबको भी किसी न किसी बीमारी से जोड़ लेते हैं, और प्रोस्टेट बढ़ने में भी इसको लोग गूगल से, आपने जिक्र भी किया, गूगल से जानकारी लेते हैं कि आपको अगर मोटापा हुआ, तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है कि जीवन शैली का या मोटापा का, वजन बढ़ने का प्रोस्टेट पर क्या प्रभाव पड़ता है?
1: सो जिसे हम मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स कहते हैं, जिसमें ये सब चीजें आती है, डायबिटीज, वेट गेन, ये सब चीजों का, क्योंकि इंटरनल बॉडी मिल्यू में चेंजेस होने से अल्टीमेटली ये हार्मोनल चेंजेस के कारण प्रोस्टेट बढ़ता है, सो ये सब का कुछ कुछ जरूर प्रभाव होता है, लेकिन ये सब चीजें अभी थियरी है। सच में आप पूछेंगे कि एग्जैक्ट कारण क्या है, वो किसी को पता नहीं है।
0: जी, जी।
1: लेकिन ये सब चीजें डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि अल्टीमेटली लाइफस्टाइल चेंजेस से, आप कितना पानी पीते हैं, कितनी बार आप ब्लैडर खाली करते हैं, आपके शुगर आप मेंटेन करते हैं कि नहीं, आपको पार्किंसन जैसे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है कि नहीं, सो ये सारी चीजें अल्टीमेटली असर करती हैं, और उसकी कुछ असर जरूर प्रोस्टेट में होती है।
0: जी।
1: लेकिन 100% बताना कि इसी के कारण प्रोस्टेट के प्रॉब्लम हो रहे हैं, वो अभी तक इतना साइंटिफिक डेटा हमारे पास नहीं है।
0: जी, लेकिन मोटापा और वजन बढ़ना तो वैसे भी नुकसान
1: जरूर,
0: है।
1: तो जरूर
0: डॉक्टर साहब, कैंसर की बात कर रहे थे जब, तो मेरे जहन में एक बात आई कि प्रोस्टेट जब बढ़ा हो तो

0: किस तरह की असावधानी से वो कैंसर का रूप लेता है। यह कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर एकदम अलग है और प्रोस्टेट बढ़ना बिल्कुल अलग है। क्या असावधानी या लापरवाही से वो कैंसर का रूप ले सकता है?
1: सो प्रोस्टेट का बढ़ना नेचुरल है और उसमें कैंसर के चेंजेस होने के कुछ कारण हमें मालूम है, कुछ कारण हमें मालूम नहीं है।
0: जी
1: स्मोकिंग इज डेफिनेटली वन फैक्टर। कुछ
0: जी
1: चीजें जेनेटिक्स हैं, जिनको फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है उनको सावधानी रखना बहुत जरूरी है और रेगुलर चेकअप रखना जरूरी है। सो ये चीजें डेफिनेटली, ऐसा कोई प्रिवेंटिव मेजर हमारे पास नहीं है कि ये करने से कैंसर नहीं होगा। सो इसलिए सबसे बड़ी सावधानी रेगुलर चेकअप है, जिससे समय में पता चलता है कि प्रोस्टेट में कुछ कैंसर चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं।
0: जी। यूरिन से जुड़ी और कौन सी समस्या है जो प्रोस्टेट की ओर संकेत करती है कि?
1: जैसे बिनाइन प्रोस्टेट के कारण जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे डिफिकल्ट इन पासिंग यूरिन, कभी कभी बार बार यूरिन के लिए जाना, यूरिन में ब्लड आना,
0: जी
1: ये एक ऐसा सिम्टम है कि उसकी हमेशा हमें सावधानी रखनी चाहिए और टेस्ट करनी चाहिए,
0: जी
1: क्योंकि अलग अलग कारणों से ब्लड आ सकता है, लेकिन एक फिक्र रहती है कैंसर की। सो ये अगर कुछ सिम्टम्स रहे तो डेफिनेटली आगे इन्वेस्टिगेशंस करना जरूरी रहता है। लेकिन ज्यादा करके लोग यूरिन के प्रॉब्लम से ही आते हैं, जो बिनाइन प्रोस्टेट और कैंसर प्रोस्टेट के लिए कॉमन सिम्टम्स है।
0: जी
1: जांच करने से ही पता चलता है कि ये बिनाइन प्रोस्टेट है या उसमें कुछ कैंसर के चेंजेस हो के कैंसर प्रोस्टेट हो रहा है।
0: तो मतलब किसी को प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ी है तो इतना घबराने की जरूरत नहीं कि आगे चल के कैंसर हो जाएगा लोग।
1: एब्सोल्युटली नहीं, और साइज देख के भी घबराना नहीं है कि बहुत
0: बिल्कुल
1: प्रोस्टेट बड़ी हो गई अब मुझे कैंसर होगा, ये गलत बात है।
0: जी
1: सो हर पुरुष को, मैंने बताया, ऐसे प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है, लेकिन कैंसर बहुत कम परसेंटेज में वो कैंसर में चेंज होती है।
0: जी और डॉक्टर साहब, प्रोस्टेट से जुड़ी हुई और कौन सी बीमारियां होती हैं उसके कारण?
1: सो प्रोस्टेट कभी कभी यंग एज में वहां इन्फेक्शन होने से प्रोस्टेटाइटिस, जिसे हम कहते हैं,
0: जी हाँ
1: कभी कभी वहां पस जमा होता है, जिसे हम प्रोस्टेटिक एब्सेस कहते हैं। सो ये चीजें भी प्रोस्टेट से जुड़ी हुई रहती हैं, और अगर इस प्रकार के सिम्टम्स या इन्फेक्शन होने लगे, कभी कभी टीबी की बीमारी भी प्रोस्टेट में हो सकती है।
0: जी जी
1: सो
0: जी
1: इन्फेक्शन एक बात है, फिर दूसरी बात ही बिनाइन प्रोस्टेट बढ़ने से प्रॉब्लम हो सकते हैं या कैंसर प्रोस्टेट के कारण तकलीफ हो सकती है।
0: जी तो इसमें क्या पुरुषों की सामान्य जीवन शैली या मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है कि किसी को प्रोस्टेट की समस्या है तो?
1: जरूर, क्योंकि अल्टीमेटली इससे काफी लाइफस्टाइल चेंज होती है।
0: जी
1: अब एक जमाना था कि आफ्टर 60 ईयर्स लोग मानते थे कि अभी वानप्रस्थाश्रम है, मुझे दिन में 10 बार या रात को 5 बार यूरिन जाने की अगर जरूरत हुई तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज लोग 60, 70, 80 काफी एक्टिव है, और जब यूरिनरी समस्या, बार बार जाना, कंट्रोल नहीं कर सकना, काफी टेंशन देती है। आप बंबई की बात देखिए, अगर किसी को बोरीवली से चर्चगेट तक सफर करना है गाड़ी में और उनकी समस्या है कि बार बार यूरिन जाना पड़ता है या कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, यह एक मानसिक तनाव हमेशा बना रहता है कि कहां मुझे सुविधा मिलेगी, कहां मैं यूरिन के लिए जा सकूंगा। और फिर जब ये सब ख्याल नहीं करते हैं, यूरिन अंदर ज्यादा भरी हुई रहती है, तो फिर यूरिन की ब्लैडर भी वीक होने लगती है, फिर उससे कभी कभी इन्फेक्शन की भी समस्या आनी
0: जी
1: शुरू हो जाती है। यस, स्ट्रेस के कारण भी कुछ लोगों को बार बार यूरिन जाने की इच्छा होने लगती है।
0: जी
1: सो साइकोलॉजिकली ऑल्सो जब लोगों को यूरिन की प्रॉब्लम रहती है तो दोनों चीज होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए भी यूरिनरी प्रॉब्लम बढ़ते हैं, और यूरिनरी प्रॉब्लम बढ़ने से भी साइकोलॉजिकली स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है।
0: दोनों एक दूसरे से जुड़े
1: दैट्स
0: हुए
1: राइट,
0: हैं। तो यहाँ पर टेंशन रिलीज करने के लिए एक गाना आना चाहिए। कौन सा
1: जरूर
0: गाना?
1: एक किशोर कुमार जी का गाना है, पल पल दिल के पास तुम
0: तुम
1: रहती
0: रहती
1: हो,
0: हो, ब्लैक पेन फिल्म
1: काफी,
0: का गाना।
1: यहां जी रोमांचिक गाना है, लेकिन किशोर दा ने बहुत अच्छी तरह से गाना गाया है।
0: जी। डॉक्टर साहब, आपने भी रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले जिक्र किया था, प्रोग्राम्स, म्यूजिकल प्रोग्राम में बड़े सक्रिय रहते हैं, देखने जाते हैं स्टेज के प्रोग्राम, और आपने बताया कि पहले गाया भी करते थे।

0: हाँ जी
1: तो यहाँ गा के सुनाएंगे?
0: नहीं, अब क्या है, कुछ वॉइस की तकलीफ हुई है इसलिए गाना डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन एक जमाना था गाते थे।
1: जी
0: और यस, म्यूजिक इज सच अ सूदिंग थिंग
1: हाँ
0: कि कोई भी स्ट्रेस को कम कर देती है।
1: जी जी
0: और कोई भी स्ट्रेसफुल जॉब हमारा, जब हम कभी कभी ऑपरेशंस में, कभी कभी किडनी ट्रांसप्लांट में, हम 24 घंटे 36 घंटे एक कंटिन्यूसली काम करते हैं, उस समय म्यूजिक का सहारा बहुत जरूरी हो जाता है।
1: जी
0: और आप जानते हैं कि लोग म्यूजिक थेरापी भी देते हैं।
1: जी
0: सो म्यूजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिलीविंग द स्ट्रेस।
1: जी जी
0: सो मुझे लगता है कि बहुत से हमारे डॉक्टर्स हैं जो गाते भी हैं, म्यूजिक में दिलचस्प भी है, क्योंकि ये एक बहुत जरूरी चीज है जो स्ट्रेस कम करने के लिए महत्व की हो जाती है।
1: जी तो इन बीमारियों पर भी म्यूजिक थेरेपी काम करती है क्या?
0: क्यों नहीं, अगर स्ट्रेस कम हो जाता है तो आप यूरिन के बारे में
1: बंद हो
0: सोचेंगे
1: जाएगा। जी बिल्कुल। तो सुनते हैं ये गाना ब्लैकमेल फिल्म का।
0: नहीं।

0: डॉक्टर साहब, गाने से पहले ये बातें हो रही थी स्ट्रेस रिलीज की, और यूरिन पास करने की बात आप कर रहे थे बार बार, लेकिन आजकल ये बहुत कॉमन बात हो गई है, रात में खास तौर से। कुछ लोगों को देखा है कि 3-4 बार उठ के यूरिन पास करने के लिए जाते हैं, और जब जांच कराते हैं तो नॉर्मल रिपोर्ट आती है। तो ये क्या वजह हो सकती है, और क्या कुछ सावधानी रखें कि इस स्थिति से मुक्ति मिले उन्हें?
1: राइट सो पहले तो रूटीन इन्वेस्टिगेशंस करके जानना जरूरी रहता है कि डायबिटीज जैसी बीमारी नहीं है या कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, और ज़्यादा यूरिन ब्लैडर में रहती नहीं है, ये पहले हम देखते हैं।
0: जी।
1: दूसरी बात, लाइफस्टाइल, जैसे आप लेट डिनर लेंगे,
0: जी।
1: रात तक पानी पीते रहेंगे, सो फिर वो ज़्यादा यूरिन जमा होके वो बार बार जाने की इच्छा बनी रहती है, क्योंकि एक समय में पूरी यूरिन खाली नहीं होती है। तीसरी बात है कि कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण भी, जो हार्मोनल किडनी चेंजेस होने के कारण किडनी ज़्यादा यूरिन रात को बनाती है और फिर वापस बार बार जाना पड़ता है। कुछ लोगों को, जिसे हम स्लीप एपनिया कहते हैं, जिसके कारण भी बार बार रात को यूरिन जाना जरूरी हो जाता है।
0: जी।
1: सो काफ़ी ऐसे, जिसे हम नॉक्चूरिया कहते हैं, और ये बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि स्लीप डिस्टर्ब होने से लोगों की लाइफस्टाइल और नेक्स्ट डे काम करने में काफ़ी दिक्कतें आने लगती है।
0: जी।
1: सो ये एक बड़ा विषय है, जो ऑलवेज प्रोस्टेट के ही कारण है वैसा नहीं है, एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी बाकी भी ऐसे कॉजेज है जिसके कारण ये नाइट फ्रीक्वेंसी बढ़ने से लोगों को बहुत डिस्टर्बेंस हो जाते हैं।
0: जी।
1: कुछ लोगों की एसेट स्लीप डिस्टर्बेंस के पैटर्न रहती है, और फिर थोड़ा सेंसेशन हुए वो बार बार बाथरूम में जाते हैं। सो ये पता करना डिफिकल्ट हो जाता है कि स्लीप डिस्टर्बेंस के कारण बार बार जाते हैं या बार बार यूरिन जाने से स्लीप डिस्टर्ब होती है।
0: जी।
1: तो ये सब चीज़ें एनालाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हर समय खाली दवाइयों से सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे या ऑपरेशन के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ये नहीं होता है। और ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग डेस्परेट होकर आ जाते हैं, कहते हैं कि मेरा प्रोस्टेट का ऑपरेशन कर दीजिए ताकि रात की मेरी तकलीफ चली जानी चाहिए, लेकिन ये गलत बात है,
0: जी।
1: क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी ये प्रॉब्लम रह सकते हैं। इसलिए इस पेशेंट्स में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस कारण से उनकी ये रात की फ्रीक्वेंसी उन्हें ट्रबल दे रही है।
0: तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? एक तो आपने नींद का बताया, और दूसरा पानी ज्यादा पीना, लेकिन कई बार लोग अमूमन बार बार बाथरूम जाते हैं, इसमें महिलाओं की संख्या क्या ज्यादा होती है या फिर?
1: सो यस, महिलाओं के प्रॉब्लम थोड़े अलग रहते हैं।
0: जी।
1: जब उनकी मेनली, जिसे हम फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी प्रॉब्लम कहते हैं, उसके कारण कुछ अलग रहते हैं। पहली बात कि काफ़ी महिलाओं में बचपन से आदत हो जाती है कि समय समय से यूरिन नहीं करते हैं, क्योंकि सुविधा नहीं मिलती है, और जब ज़्यादा यूरिन जमा होने लगता है तो धीरे धीरे पेशाब की थैली और यूरिनरी

0: ब्लैडर वीक बनने लगती है, फिर उन्हें पेट का प्रेशर लगा के वो यूरिन खाली करनी पड़ती है
1: जी।
0: जब एक समय में खाली नहीं होती है तो फिर बार बार जाके उनको यूरिन खाली करनी पड़ती है, ये एक प्रॉब्लम हुआ। दूसरा जिसे हम ओवर एक्टिव ब्लैडर या इरिटेबल ब्लैडर कहते हैं, जो कभी कभी कुछ लोगों को कॉफी टी इसके कारण ब्लैडर इरिटेशन होने से बार बार जाना पड़ता है, वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात है स्ट्रेस लेवल
1: जी।
0: कुछ लोगों को जब भी स्ट्रेस बढ़ता है वो इमीजिएट उनको लगता है मुझे जाके यूरिन करनी चाहिए
1: जी।
0: सो और फोर्थ इन्फेक्शन विच इज वेरी कॉमन इन लेडीज, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन के कारण भी ये तकलीफ हो सकती है। बाकी काफी अलग अलग कारण हैं लेकिन ये कॉमन कारण है
1: जी।
0: और जिसके कारण ये फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी इतनी तकलीफ बन जाती है और लेडीज में ये काफी इंसिडेंस काफी ज्यादा है। इस पेशेंट्स को पहले तो जैसे मैंने बताया कॉमन इन्वेस्टिगेशंस करके हम रूल आउट करते हैं कि अंदर ऐसी कोई बीमारी नहीं है। फिर लाइफस्टाइल चेंजेस कि काफी लोग मानते हैं कि बहुत पानी पीना चाहिए, सच बात है पानी पीना जरूरी है, लेकिन अगर आपको इतनी फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी का प्रॉब्लम है तो वो हमें थोड़ा कंट्रोल करना जरूरी हो जाता है
1: जी।
0: तीसरी बात जिनको डेफिनेटली कैफीन या कॉफी और टी से होता है उसका प्रमाण कम करना जरूरी हो जाता है
1: जी।
0: और आजकल काफी दवाइयां आई हैं जिससे ब्लैडर को रिलैक्स करने से ब्लैडर की कैपेसिटी बढ़ने से वो ज्यादा समय तक यूरिन स्टोर कर सकती है। और फोर्थ कुछ लोगों को जो स्ट्रेस इतना तकलीफ देता है आई थिंक योगा एक्सरसाइजेस ऑल दिस थिंग्स हेल्प देम इन रिलैक्सिंग द ब्लैडर मसल्स ताकि वो ज्यादा समय तक यूरिन स्टोर कर सके। सो लाइफस्टाइल चेंजेस का बहुत बड़ा महत्व है ये फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी ट्रीट करने में, और दूसरा यूरिनरी इन्फेक्शन अवॉइड करना जरूरी हो जाता है
1: जी। तो डॉक्टर साहब आप इन्फेक्शन की बात आपने कई बार कही, तो इन्फेक्शन को अवॉइड कैसे किया जाए, क्या वजह हो सकती है, महिलाओं में पुरुषों में अलग तरह के इन्फेक्शन होते हैं, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए।
0: सो एक तो एडिक्वेट पानी पीना भी जरूरी है
1: जी।
0: बहुत कम पानी पीना ठीक नहीं है
1: जी।
0: दूसरी बात समय समय से यूरिन कर लेना है। तीसरी बात हम देखते हैं कि कभी कभी अंतर कोई सिस्टम में कारण नहीं, जैसे ब्लैडर स्टोन से किडनी स्टोन से जिसके कारण भी इन्फेक्शन हो सकता है। द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम टुडे इज डायबिटीज, क्योंकि डायबिटीज के कारण जब शुगर यूरिन में से जाती है उनको भी इन्फेक्शन की शक्यता बहुत बढ़ जाती है। सो ये चीजें कंट्रोल करना बहुत जरूरी है
1: जी।
0: देयर आर यंग लेडीज जो आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी ऑल्सो उनको इन्फेक्शन होने की टेंडेंसी रहती है। सो आई थिंक गायनेकोलॉजिस्ट को मिलके या यूरोलॉजिस्ट को मिलके किस लाइफ स्टाइल चेंजेस पहले चेंज करके अगर इन्फेक्शन के इंसिडेंस कम हो जाए वो पहले कोशिश करनी है
1: जी।
0: फिर तपास करके ऐसे कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हो गए तो उनको ट्रीट करना जरूरी है, और थर्ड फिर जरूरत पड़ी तो दवाइयों से ये सिम्टम्स हम कंट्रोल कर सकते हैं
1: जी।
0: वेरी रेयरली हमारे देश में ट्यूबरकुलोसिस या कभी कभी कैंसर जैसी बीमारियों भी कभी ये सिम्टम्स के साथ पेश होती है, इसीलिए प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कर लेना जरूरी है क्योंकि उनसे कारण भी ब्लैडर में इरिटेशन होने से बार बार यूरिन जाने की उनको टेंडेंसी रहती है
1: जी। जी
0: कुछ कंडीशन जैसे हम पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम कहते हैं जो बेसिकली नर्व्स और मसल्स के स्पैजम्स के कारण नर्व्स पे प्रेशर आने से उसकी असर से भी लेडीज को बार बार जाने की टेंडेंसी होती है, पेन होता है, तो ये काफी चीजों से ये फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी के प्रॉब्लम हो सकते हैं। बट ज्यादा करके कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं रहते हैं, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से और कुछ प्राइमरी मेडिकेशन से काफी लोगों को राहत मिल जाती है। अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट और काफी लेडीज तकलीफ सह लेती है कि कहां किसी को हम इसके बारे में बताएं
1: जी,
0: ये
1: जी।
0: गलत बात है। आजकल इतने ऑप्शंस मिल रहे हैं कि इससे ये जो प्रॉब्लम है उससे कंट्रोल करना अभी आसान हुआ है।
1: बिल्कुल, अपने श्रोताओं को बता दें विविध भारती से यह कार्यक्रम सेहतनामा, और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर उमेश ओझा से जो कि एक मुंबई के जाने माने यूरोलॉजिस्ट है और बड़े ही जानकार डॉक्टर है।

0: डॉक्टर साहब, यहां पर एक गाना सुनते हैं हम।
1: जरूर,
0: कौन सा गाना सुनवाए?
1: मुझे लगता है अरिजीत सिंह का नैना जो दंगल मूवी में है,
0: जी
1: बहुत अच्छा गाना है
0: जी।
1: और वहाँ इमोशंस भी बहुत अच्छे, फादर डॉटर के रिलेशनशिप के बारे में बताया है, वो गाना अच्छा रहेगा
0: जी। सुनते हैं यही गाना अरिजीत सिंह की आवाज में।

0: डॉक्टर साहब, गाने से पहले जो चर्चा हो रही थी वो यूरिन पर हो रही थी, जो एक कॉमन प्रॉब्लम है। आप चर्चा कर रहे थे कि महिलाओं में ये प्रॉब्लम अलग होती है, पुरुषों में अलग भी होती है, और एक कॉमन प्रॉब्लम है महिलाओं के पीरियड्स के दौरान उन्हें शायद यूरिन की समस्या से ज़्यादा उन्हें जूझना पड़ता है, और एक है प्रेगनेंसी के दौरान। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए कि किस तरह से बचाव कर सकते हैं या क्या एहतियात बरत सकते हैं। क्या ये नॉर्मल है या कुछ लोगों को ही होता है?
1: सबको होता है ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को जरूर ये तकलीफ देती है, स्पेशली आगे बताए से फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, ये कुछ हार्मोन चेंजेस के कारण ये सिम्टम्स बढ़ते हैं और इन्फेक्शन की शक्यता रहती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय भी इतने बॉडी चेंजेस और हार्मोन चेंजेस होते हैं कि कभी कभी इसके कारण ये तकलीफ हो सकती है। दूसरी बात, कुछ प्रॉब्लम्स महिलाओं में पहले रहते हैं लेकिन

प्रेगनेंसी के समय तपास करने से पता चलता है कि उनको स्टोन है या दूसरी कुछ तकलीफ है. सो ये भी कारण से कभी कभी प्रॉब्लम बढ़ते हैं, बट बेसिकली दिस आर बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस कि उनको ये तकलीफें होती है. अगर इन्फेक्शन होता है तो उस समय सावधानी रखना बहुत जरूरी है, स्पेशली प्रेगनेंसी में और स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इन्फेक्शन ट्रीट करना बहुत महत्व का हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें ये देखना है कि उसके असर बच्चों पे न पड़े और उस समय दवाइयां ऐसे यूज करनी पड़ती कि जिसके आड़ असर उस मासूम बच्चा जो डेवलप हो रहा है उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए.

0: व्यवस्थित जांच होनी चाहिए और उस हिसाब से ट्रीटमेंट से ये प्रॉब्लम काफी सॉल्व हो जाते हैं।
1: जी, इस बारे में बहुत सारी गलत फहमियां भी हैं कई बार आजकल, जब न्यू कपल खास तौर से, और हमने सुना है कई कपल एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं कि ये तुम्हारी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, वो तुम्हारी वजह से।
0: सो ये बहुत अच्छी बात आपने बताया कि ये सही नहीं है।
1: जी
0: हर समय पार्टनर्स के कारण ही इन्फेक्शन होता है वैसा नहीं है।
1: जी
0: हर पेशेंट वेदर इज मेन और वुमन, उनके खुद के कारणों से भी इन्फेक्शन हो सकता है।
1: जी
0: दूसरी बात है, हर इन्फेक्शन कंटेजियस है ऐसा भी नहीं है।
1: जी
0: सो आई थिंक द बेस्ट थिंग इज कि मेडिकल एडवाइस लेके ये
1: बिल्कुल
0: जानना जरूरी है कि किस कारण से इन्फेक्शन हो रहा है, और किसी को ब्लेम करने का कोई मतलब नहीं है।
1: जी बिल्कुल
0: अल्टीमेटली सेक्शुअल लाइफ ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हेल्थी हैप्पी सेक्शुअल लाइफ इज इंपॉर्टेंट।
1: जी
0: सो कभी कभी इस सोच से, इस डाउट से, इट इफेक्ट्स द सेक्शुअल एक्टिविटी ऑल्सो।
1: बिल्कुल
0: ये भी होना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली यंग कपल या फॉर एनी बडी हेल्दी सेक्शुअल लाइफ इज इंपॉर्टेंट। सो ये बेहतर है कि आप डॉक्टर से बात करें, अगर जरूरत तो व्यवस्थित जांच करें, और एवरीथिंग इज ऑल राइट, उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स आप ले सकते हैं उसके बारे में जरूर हम एडवाइस दे सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, हमारा ये प्रोग्राम पूरे देश में जाता है और बहुत सारे ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पर
0: जी
1: ऐसी स्थितियाँ बहुत सारी आती हैं, तो आपकी इस बात से हमारे वो श्रोता प्रभावित होंगे, और जब कभी ऐसी स्थिति आती है, इन्फेक्शन जैसी नौबत आती है, तो डॉक्टर की शरण लें और जांच जरूर करवाएं।
0: और पार्टनर को एक दूसरे से भी कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है।
1: जी
0: कुछ
1: बिल्कुल
0: चीजें हम मान लेते हैं और उसके बारे में बात करना हम व्यवस्थित नहीं समझते हैं, लेकिन
1: शर्म
0: इससे
1: और
0: शर्म के
1: संकोच।
0: मारे में कि
1: जी
0: ये बात
1: बिल्कुल
0: हम कैसे करें, लेकिन ये महत्व का है कि ऐसे कुछ रहा तो ये डाउट्स क्लियर करें और फिर मेडिकल एडवाइस ले, ताकि अननेसेसरी इसके कारण रिलेशनशिप डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है और वो कॉमन हो रही है, वो है यूरिन लीकेज, कि यूरिन लीकेज होता है और इलाज के बावजूद नहीं ठीक होता है, तो इसका इलाज किस तरह से संभव है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे श्रोताओं को दीजिए।
0: जरूर, लीकेज के अलग अलग प्रकार रहते हैं। कुछ है जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, मतलब नॉर्मली लीकेज नहीं होता, लेकिन एक बार इच्छा हुई फिर कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है।
1: ओके
0: ये कुछ जो जिसे हम ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं उसके कारण होता है, और उसके कारण जैसे मैंने पहले बताया, बेसिक इन्वेस्टिगेशन करके अगर यूरिनरी ट्रैक नॉर्मल है तो दवाइयों से और लाइफस्टाइल चेंजेस से उसे हम जरूर कंट्रोल कर सकते हैं।
1: जी
0: दूसरा जिसे हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं,
1: ओके
0: कि जहां पेल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनेस के कारण ये कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है, ताकि जब भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है वो मसल्स वीक होने से यूरिन कंट्रोल जो होता है वो वीक हो जाता है, यूरिन लीक हो जाता है,
1: ओहो
0: ज्यादा करके प्रेगनेंसी के बाद में, ज्यादा करके वहां स्नायु पे कुछ और ऑपरेशन हुआ, या कभी कभी एजिंग के हिसाब से ये सब मसल्स वीक होने से जो कंट्रोल मैकेनिज्म है वो चाहिए, इतना प्रेशर से जब भी खांसी आती है या जोर से हंसना आता है वो यूरिन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं।
1: ओ
0: इसके लिए कभी कभी एक्सरसाइजेस और फिर जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन करके वो जो स्नायु को कैसे टाइट करना, या
1: जी
0: जो यूरिनरी पैसेज है उसका एंगल चेंज करना महत्व का हो जाता है, ताकि एब्डोमिनल प्रेशर स्ट्रेट ट्रांसमिट होके यूरिन लीक न हो जाए।
1: जी
0: सो ये चीजें पहले हम हमेशा कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से कोशिश करते हैं, जरूरत पड़ी तो दवाई से कोशिश करते हैं, और फिर ऑफ कोर्स जरूरत पड़ी तो इस प्रकार के सर्जिकल प्रोसीजर से वो रास्ता थोड़ा टाइट करके, ताकि वो प्रेशर कंट्रोल करने में इजी पड़ता है और लीकेज कम हो जाता है।
1: जी दोस्तों, सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंबई के जाने माने यूरोलॉजिस्ट उमेश ओझा से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का पहला भाग, इसका दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए और उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायालय ने असम के विदेशी न्यायाधिकरणों द्वारा विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों की याचिका की सुनवाई करते हुए ये बात कही। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेश को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नागरिकता तय करने या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया न्यायिक सिद्धांतों से समझौता नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT से जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में CBI जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। इससे पहले 13 जून को उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर में दान में कथित अनियमितताओं के मद्देनजर 3 सदस्यीय SIT का गठन किया था। जम्मू की एक अदालत ने अलगाववादी नेताओं का महिमामंडन करने वाली पुस्तकें प्रकाशित और प्रसारित करने के आरोप में गिरफ्तार 3 प्रकाशकों को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। विवादित पुस्तकों में पर्सनैलिटीज एंड लीजेंड्स ऑफ J&K और ग्रेट पर्सनैलिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना में प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दों का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ट की ओर से दायर याचिका के मद्देनजर किया है। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजे और पुनर्वास की मांग की गई है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन को आज उपराष्ट्रपति भवन में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC और सैनिक स्कूल के बारे में जानकारी दी। NCC के राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कैडेट विनियमन कार्यक्रम को राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की दिशा में एक उत्कृष्ट पहल बताया। उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान और स्वच्छ भारत अभियान सहित NCC की सामुदायिक सेवा पहलों की भी प्रशंसा की। न्यूजीलैंड के ग्रामीण समुदाय मंत्री मार्क पैटरसन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली स्थित संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि मुलाकात में संसद

0: ये आदान प्रदान को मजबूत करने और भारत न्यूजीलैंड के बीच लंबे समय से जारी संबंधों को और गहरा करने के महत्व पर जोर दिया गया। भारत और जापान ने मुक्त, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान के टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह कर रहे थे। जापान की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मामलों के रक्षा उपमंत्री कानो कोजी ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। दोनों देशों ने रक्षा उद्योग, नई तकनीक, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र में जापान के सहयोग की सराहना की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज दिल्ली में पोलैंड के विदेश मंत्रालय के राज्य सचिव व्लादिस्लाव बार्तोसिदिस्की और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर सचिव माइकल बरोंस्की से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वियतनाम के फूक्वेक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट मैच में 457 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में चौथे दिन इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 9 विकेट पर 186 रन बना लिए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

हमारी बहनें अपना प्रसारण सुनेंगी घर आंगन 5:30 पर, और लोकगीत आप सुनेंगे क्रमशः संध्या 6 बजे और रात्रि 9 बजे।

संध्या 6:10 पर हमारे केंद्र से आप ग्रामीण श्रोताओं का प्रसारण सुनेंगे गांव घर। इस कार्यक्रम में चर्चाओं के मुख्य विषय होंगे मोबाइल के दुरुपयोग से बर्बाद होती नई पीढ़ी, उचित समय पर करें धान की रोपाई और सहयोग शिविर का उठाएं लाभ। इस कार्यक्रम में बरसाती बीमारियों से बचाव से संबंधित एक भेंटवार्ता भी प्रसारित की जाएगी। भेंटवार्ताकार होंगे डॉक्टर जितेंद्र कुमार। अलावा इसके लोकगीत का भी आनंद उठाइएगा।

ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आप सुनेंगे ई मन पसंद 7:50 से और 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या हम अपने केंद्र से रिले करेंगे।

रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे मन कवत और 9:30 पर विविध भारती मुंबई से सुनिएगा आज के फनकार।

हमारे केंद्र से रात्रि 10 बजे आप हिंदी एल्बम सॉन्ग्स सुनते हैं रस रंग कार्यक्रम में, और चित्रपट तराने के अंतर्गत सदाबहार फिल्मी नगमे सुनिएगा रात्रि 10:30 पर। सभा का समापन होगा 11:10 पर दिल्ली से प्रसारित समाचारों के बाद। तो श्रोताओं, यह थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा आपके लिए। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM बैंड के 103.4 MHz पर। 5:10 हुए हैं, लीजिए सुनिए भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदन।

कुछ प्रसिद्ध भक्त कवियों के सुंदर दोहे, उन सब का संग्रह किया है और एक भजन का रूप दिया है।

कवि ने इशारा किया है संसार रूपी चक्की की ओर। इस चक्की के भी दो पार्ट हैं, धरती और आकाश। दिन रात ये चक्की चलती रहती है।

रहीम कहते हैं, किसी बड़े आदमी से मित्रता हो जाए तो अपने छोटे मित्र का तिरस्कार न कीजिए, उसको भूलिए नहीं।

रहीम के बारे में बड़ा सुंदर प्रसंग है। सभी जानते हैं रहीम कृष्ण भक्त थे। उनके स्वभाव के बारे में एक बात बहुत कम लोग जानते हैं कि रहीम स्वभाव से बड़े महान दानी थे। बहुत से दानी हुए हैं, रहीम जैसा दानी नहीं हुआ, क्योंकि विशेषता थी। रोज सुबह घर के बाहर बैठ जाते थे दान करने के लिए, भावना के साथ मुट्ठी भर भर के दान करते थे। कोई भी उनके दरवाजे से खाली हाथ नहीं जा सकता था। लेकिन एक विशेषता थी, दान करने के लिए जैसे जैसे वो अपने हाथ उठाते थे तो अपनी आंखें नीचे झुका लेते थे। लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था, ये रहीम कैसा दान करते हैं, दान भी करते हैं और इन्हें शर्म भी आती है दान करने में, निगाहें झुका लेते हैं। इस बात की चर्चा हुई, गोस्वामी तुलसीदास जी तक बात पहुंची। उन्होंने सुना, मन ही मन मुस्कुराए और दो पंक्तियां लिखकर रहीम के पास भेजी।

रहीम ने पढ़ा, समझ गए गोस्वामी तुलसीदास जी तो अंतर्यामी हैं, उन्हें क्या नहीं मालूम, शायद मुझसे कहलाना चाहते हैं। दो पंक्तियां उन्होंने भी नीचे लिख दी हैं।

तो निवेदन किया है, बेनहार कोई

0: भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
1: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: जुबिन नौटियाल की गई इसी भक्ति रचना के साथ ही भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदन अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 MHz पर। 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है महिलाओं का प्रसारण घर आंगन।
1: सारी श्रोता सखियों को अनीसा मानुसी का प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम घर आंगन में। आप सभी स्वस्थ होंगे यही बस हमारी दुआ है, शुभकामनाएं हैं। सखियों, बारिश की ठंडी बूंदों से बहुत राहत, बहुत सुकून मिल रहा है। धरती धानी चुनर ओढ़े बहुत लुभावनी लग रही है। चरिंद परिंद सभी तरोताज़ा हो उठे हैं। बरसात की बारिश की एक अलग कशिश होती है। बहुत मज़ा आता है दरख्तों का झूमना, पक्षियों की चहचहाहट और धूप में नरमी, ये सब मिलकर एक खूबसूरत समा बन जाता है। सखियों, आज आपके लिए मनोरंजन के साथ साथ कुछ खूबसूरत गुदगुदाते नगमे और जानकारी भरी बातें होंगी। घर आंगन में मैं रहूंगी आपके साथ, तो आइए मिल बैठते हैं और करते हैं शुरुआत इस गीत के साथ।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर,
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।

0: आरबीआई कहता है,
1: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
2: बेशक सखियों, अगर हमारे अंदर अगर खूबियां रहती हैं तो हमारे बाद भी वो खूबियां गिनाई जाती हैं, उन्हें लोग याद करते हैं। तो क्यों ना हम अपने अंदर कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसी खूबियां लाएं जो हमारे बाद भी लोग हमें याद करें, हमसे मोहब्बत करें, हमारी इज्जत करें। सखियों, आज हम सभी चाहते हैं कि आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर बनना बहुत अच्छी बात है। आत्मनिर्भरता से हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। जानकारी और आर्थिक मजबूती के साथ साथ हमें खुशी भी मिलती है और इज्जत भी मिलती है। तो ये सब हमारे अंदर आता है कब? जब हम पूरी तरह से शिक्षित होते हैं। ये सब शिक्षा की देन है। हम शिक्षित हैं तो ही ये सब संभव हो सकता है। जीने के नए रास्ते, नए नए तजुर्बे और बहुत सारे लोगों से मिलने के अवसर मिलते हैं, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारी पहचान बढ़ती है और हमारे समाज में एक अलग जगह बनती है। बहनों, बातें होती रहेंगी और भी खूबसूरत दिलचस्प, हम आगे अपने सफ़र पर रहेंगे, लेकिन चलिए सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत।

सखियों, जहाँ तो मुकम्मल नहीं मिलता, लेकिन हम सारी ज़िंदगी कोशिश ज़रूर करते हैं कि अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को मुकम्मल कर लें। सखियों, हमारे देश में तरह तरह के लिबास पहने जाते हैं। उन्हीं लिबासों में एक बहुत ही अहम लिबास है साड़ी। साड़ी स्त्रियों का बहुत ही ख़ास लिबास है। ये हमारे देश का सबसे अहम लिबास माना जाता है और हमारे देश की संस्कृति में शामिल है। साड़ी के विभिन्न रूप हैं। साड़ी भारतीय संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। अपनी बुनाई शैली, कपड़े और क्षेत्रीय विशेषताओं के आधार पर साड़ियों के विभिन्न रूप पाए जाते हैं, जो इसकी ख़ास पहचान है। जैसे बनारसी साड़ी, कांजीवरम यानी शुद्ध रेशम की बॉर्डर वाली साड़ी, चंदेरी साड़ी। ये साड़ी पहनने में बहुत हल्की होती है। ये रेशम और सूती के धागों से तैयार की जाती है। बंधनी साड़ी, तांत यानी ऑर्गेंजा, जॉर्जेट और शिफॉन की साड़ी भी बेहतरीन और ख़ूबसूरत साड़ियों में शुमार की जाती है। ये सब विभिन्न मौसमों, पर्व त्यौहार या फिर शादी ब्याह या किसी पार्टी में अलग अलग तरह से पहनी जाती है, जो नारी सौंदर्य को खूब निखारता है और हमें अलग पहचान भी देती है। ये साड़ी सखियाँ हमें बातें करते करते कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते हैं। कहते हैं ना कि जब दो सखियाँ एक जगह बैठ जाएं तो बातें कभी ख़त्म नहीं होंगी। तो हम क्यों अपनी बातें ख़त्म करें? बातें तो ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन हम एक खूबसूरत सा गीत सुन सकते हैं।

बहनों, मौसम के साथ खूब मज़े कीजिए, लेकिन सावधानी भी बेहद ज़रूरी है। हमारी सेहत कुदरत की वो देन है जो बिगड़ जाने पर ठीक होना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए सेहत का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। मौसमी फल, खाना सादा और ताज़ा खाएं, पानी साफ पिएं, नींबू पानी का इस्तेमाल करें, इससे पेट साफ रहेंगे और आप ख़ुद को हेल्दी महसूस करेंगे। सखियों, बरसात में कई तरह की बीमारियां भी आती हैं जिसके लिए हमें सावधान रहना चाहिए। आजकल यानी इस मौसम में बालों की समस्या बहुत होती हैं, तो बहनों आप परेशान बिल्कुल ना हो, मैं आपके लिए एक अच्छा सा घरेलू नुस्खा लेकर आई हूँ, उसे मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एक जादुई और घरेलू नुस्खा बता रही हूँ जिसके कारण आपके बाल खूबसूरत और चमकीले नज़र आएंगे। तो आइए हम कुछ सामानों को जान लेते हैं कि इसको हम कैसे बनाएंगे, आपकी बालों को ये कैसे और ख़ूबसूरत और करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम मिलाएंगे, सबसे पहले लेंगे 1 लीटर पानी और उसमें 2 चम्मच मेथी के दाने और करी पत्ते के 3-4 टहनियाँ ले लेंगे, चाय पत्ती 2 चम्मच और एलोवेरा के 4-5 टुकड़े इस पानी में हम डाल लेंगे और इसको इतना उबालेंगे कि इसका अर्क पानी में अच्छी तरह से आ जाए और पानी कम से कम आधे से थोड़ा ज़्यादा बचे। फिर इस पानी को ठंडा करके छान लें और किसी स्प्रे बोतल में भर कर रख लें। इसे आप हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल कर सकती हैं। नहाने से 3 घंटे पहले इसे पूरे बालों में अच्छी तरह लगा लें, फिर धो लें। आपको इस सीरम से बेहद फ़ायदा होगा, आपके बालों को बेहद खूबसूरती मिलेगी, बहुत इजाफा होगा। वैसे भी हम सारी बहनों के बाल हमारी खूबसूरती का एक ख़ास हिस्सा हैं। शायरों ने ना जाने कितनी गज़लें, कितनी कविताएं लिखी हैं। तो हम अपने बालों का रखेंगे ख़ास ख्याल और सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत।

0: और अब सखियों, आपसे बातें करने का वक्त ख़त्म हो रहा है, क्योंकि बातें तो हमारी चलती ही रहेगी और हमारी बातें कभी ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन हम ऐसे कार्यक्रम और कुछ ख़ास गाने आपको लेकर के हम फिर अगली मुलाकात में ज़रूर हाजिर होंगे आपके लिए। तो अब अपनी दोस्त अनीसा मानुसी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आज इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार।
1: अभी हमारी बहनें अपना प्रसारण सुन रही थीं, घर आंगन। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 MHz पर। लीजिए सुनिए लोकगीत।

0: भरत सिंह भारती और साथियों से अभी आप गंगा गीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रसारित भोजपुरी समाचार बुलेटिन। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब रविवार चंद्रमोहन से भोजपुरी में समाचार सुनी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार वीना मानवी के पुलिस गिरफ्तार कर लेलक। हमार संवाददाता बतौलन कि जैसे ही वीना मानवी नामांकन दाखिल करके समरणालय से परिसर से बाहर निकल ली, वैसे ही उनका के गिरफ्तार कर लिया गई। धोखाधड़ी के एगो पुरान मामला में ई गिरफ्तारी भइल बा। यह भी जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव कहलन कि वीना मानवी के एगो साजिश के तहत गिरफ्तार कर गई बा आ उ लोग यह मामला के लेके अदालत जई हैं। हालांकि कोर्ट में पेश कैला के बाद वीना मानवी के जमानत भी मिल गई। प्रदेश में अब पर्यटक लोग हेली टूरिज्म आ ईयर टूरिज्म सेवा के आनंद ले सकी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना में आयोजित एगो समारोह में बिहार हेली टूरिज्म आ ईयर टूरिज्म सेवा के शुरुआत कैलन। ए मौका पर ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल के भी उद्घाटन कैलन। मुख्यमंत्री कहलन कि अभी साप्ताहिक आधार पर शुरू कैल जा रहल बा। ईयर पर्यटन सेवा के आवे वाला समय में रोज के सेवा के रूप में बढ़ावल जाई। योजना के पहला चरण में पटना, वाल्मीकि नगर, माँ मुंडेश्वरी आ राजगीर के शामिल कैल गेल बा। राज्य सरकार हर टिकट पर बेसी से बेसी 15,422 रुपया तक के सब्सिडी दी। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा 18 जुलाई से शुरू हुई आ हर शनिवार और रविवार के चलावल जाई। राज्य सरकार अब आम लोग के शिकायत के तुरंत समाधान खातिर हर महीना के दूसरा मंगलवार के पटना में राज्य स्तरीय सहयोग शिविर के आयोजन करी। एकर शुरुआत काल से मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर स्थित संवाद भवन से हुई। ई खास शिविर ओहन आवेदन लोग खातिर हुई जे जिला स्तर पर आयोजित सहयोग कार्यक्रम में शिकायत दर्ज करावे के बादो समाधान से संतुष्ट नहीं खन। राज्य स्तरीय सहयोग शिविर खातिर आवेदन सहयोग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कल जाई। मोकामा के जदयू विधायक अनंत सिंह आ भोजपुरी अभिनेता गुंजन सिंह आज आर्म्स एक्ट के एगो मामला में गोपालगंज के MP MLA विशेष अदालत में आत्मसमर्पण कैलन। आत्मसमर्पण के बाद अदालत दोनों जन के जमानत दे दिलस। ई मामला मीरगंज थाना क्षेत्र में आयोजित एगो कार्यक्रम के दौरान कथित रूप से हथियार लहरावे अश्लील नाच से जुड़ल बा। मानसून के सक्रियता से प्रदेश के अलग अलग हिस्सा में पानी बरसे के सिलसिला जारी बा। मौसम विभाग से मिलल जानकारी के मुताबिक पिछला 24 घंटा के दौरान पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, अररिया, मधेपुरा आ मधुबनी जिला में कुछ जगह पर बहुत बारिश भइल बा। मैनाटांड में सबसे बेसी 169 मिलीमीटर पानी रिकॉर्ड कैल गेल बा। विभाग काल दरभंगा, कटिहार, पूर्णिया आ सुपौल जिला में कुछ जगह पर बहुत भारी बारिश, जबकि अररिया, बांका, भागलपुर, किशनगंज, मधुबनी आ सहरसा जिला में भारी बारिश के चेतावनी जारी कैले बा। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हो रहल भारी बारिश के चलते कोसी आ गंडक नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रहल बा। हमार सुपौल संवाददाता बतौलन कि आज दोपहर 2 बजे तक कोसी बराज से 1,72,435 क्यूसेक पानी छोड़ल गई। भीमनगर कोसी बराज पर पानी के दबाव के देखत 20 गो फाटक खोल दिहल गई बा। बाढ़ नियंत्रण वीरपुर के मुख्य अभियंता संजीव शैलेश बतौलन कि कोसी नदी के पूर्वी आ पश्चिमी तटबंध समेत सब बांध पूरा तरह से सुरक्षित बा। एने हमार बेतिया संवाददाता बतौलन कि गंडक नदी के जलस्तर में भी लगातार बढ़ोतरी हो रहल बा। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से नदी के

डिस्चार्ज 1 लाख क्यूसेक के पार पहुंच गई बा। पूर्वी चंपारण जिला के गोविंदगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत भेलानारी पुल के लगे 2 गो तेज रफ्तार मोटरसाइकिल के आपस में टक्कर में 3 गो युवक के मौत हो गई। शेखपुरा जिला के कुरमा थाना क्षेत्र में स्थित मुरारपुर गांव के लगे टांटी नदी के किनारा चल रहल दारू के भट्टी के पुलिस आ उत्पाद विभाग के टीम नष्ट कर दिले बा। मौका से 2000 लीटर दारू बरामद कर गई बा। पुलिस कारोबारियन के गिरफ्तारी खातिर छापेमारी कर रहल बिया। जहानाबाद के हुलासगंज थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान कथित मारपीट धमकी आ 2,10,000 रुपया के अवैध वसूली के आरोप में उत्पाद विभाग के 4 गो अधिकारी लोग के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कल गई बा। उत्पाद विभाग इंकरा के निराधार बतौले बा आ शिकायत करे वाला के दारू तस्कर कहले बा। पुलिस इस मामला के जाँच कर रहा बिया। एकरे साथे ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक समाप्त भइल।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं का प्रसारण गांव घर।

आज के गांव घर कार्यक्रम सुनने वाले सब श्रोता भाई बहन लोग के राजू भाई के तरफ से नमस्कार। देखिए श्रोता भाई, हमने के अभी खेती बाड़ी के समय चल रहा बा आ खेती बाड़ी में यदि हमने के सफल होके के बा तो कोशिश ये करे के चाहिए कि हर समय हमने के काम में लागल रह जाओ। एक समय के बात है कि बादल के हड़ताल हो गए आ उ लोग निर्णय लेलस कि हमने के अब 10 साल तक पानी ना बरसल जाइए धरती पर। तो बादल कुछ दूर नीचे से गुजरत रहे तो देखलस कि अरे भाई ये किसान एगो खेती के काम कर रहा बड़न। तो किसान से पूछलस बादल कि भाई तू काहे काम करत रह जबकि हमने के बहुत दिन से ये सोचले बन जा कि हमने के बरसबे ना कल जाए। तो किसान कहलन कि अरे भाई देख तू बरसब कि ना बरसब लेकिन हम यदि खेती ना लगातार करब तो हो सकेला खेती करे के तरीका ही हम भूला जाए। ऐसे हम काम कर रहल बानी तो बादल के भी दिमाग में आयल कि कहीं हमनियों के 10 साल में बरसे के ही भूला जाए जाए तो का हुई। तो का कहलस कि बादल बरसे लागल आ जे भी किसान काम में लागल रहन उनकर खेती बहुत नियमन भइल आ जे भी किसान भाई काम छो के अपन बैठ गई रहन उनकर ओ साल उत्पादन ना भइल। तो कहे के मतलब ई बा कि हमनी के हर समय अपना काम में लागल रहे के चाहिए। आ देखी कहल जाला कि आवश्यकता जौन होलन तौन आविष्कार के जननी होला। आ आज के समय में इहो बतावल गई रहे कि विज्ञान जौन बा वरदान बा कि अभिश्राप बा। कहे के मतलब बा कि पहले के जमाना में फोन ना रहे बाकी रिश्ता सही रहे। बाकी आज के समय में मोबाइल के रूप में तो फोन बा बाकी सच कहल जाओ तो रिश्ता

खा चुकल बा। देखी श्रोता भाई, रिश्ता हमनी के परिवार के उ पुष्प के पौधा होला जवना के हर टहनी आपन आपन पुष्प के खुशबू से पूरा परिवार के सुगंध से खुशबू से महकैले रहला। आ सब पुष्प आपस में बटोर दिहल जाओ तो एगो खूब निमन गुलदस्ता बन जला जवना के एगो अलग पहचान होला। बाकी आज के समय में नू परिवार के हर सदस्य मोबाइल के जाल में ऐसन नू अझुराइल बढ़न जवना से कि निकलल बहुत मुश्किल बा। इतना तक कि आज के युवा पीढ़ी बाहर के दुनिया के देखे के ही भुला गई बढ़न, उनकरा घर परिवार देखे के फुर्सते निखे। खासकर युवा पीढ़ी आज के दुनिया में मतलब मोबाइल में इतना अझुराइल बढ़न कि समझी कि उनका ना तो भोजन के चिंता बा और ना उनका स्वास्थ्य के ही अपन चिंता रहल बा। आज के समय में युवा वर्ग डिजिटल के ऐसन लत में फंस गई बढ़न जे कि आज के समझी कि युवा पीढ़ी जौन बढ़न आधा समझी कि डिप्रेशन के बीमारी के शिकार हो चुकल बढ़न। ऐसे हमने के कोशिश करे के चाहिए कि मोबाइल के उपयोग से थोड़ा बचल जाओ। देखी जौन मोबाइल बानू ये हमने के मानसिक तौर से बीमार कर रहल बा। एह तरह से हमने के युवा पीढ़ी जौन बढ़न छोट छोट वीडियो आ रील देखे के आदि हो गई बढ़न जौन कि 15 सेकंड के कंटेंट के आदि बन गई बढ़न जमना से कि युवा पीढ़ी के जौन पढ़ाई में मन लागे के चाहिए जितना पढ़ाई में ध्यान लागे के चाहिए उनकर क्षमता उ घट रहल बा। इतने ना देखी श्रोता भाई, आज के युवा वर्ग के आँख जौन बा एकरा पर भी बहुत खराब असर मोबाइल के पड़ रहल बा। कारण कि दिन रात मोबाइल देखे के ई आज के युवा पीढ़ी आदि हो चुकल बड़न आ मोबाइल से निकले वाला जौन रोशनी होला नू एकरा से आँख में सुखापन हो रहल बा आ आँख से धुंधलापन दिखाई देवे के बीमारी बढ़ रहल बा। इतने ना गर्दन आ पीठ के दर्द भी लगातार आदमी के बीमारी ऐसन हो रहल बा जे भी मतलब घर में बाल बच्चा बा या युवा पीढ़ी बढ़न ये लगातार झुक के जौन मोबाइल चला रहल बढ़न एकरा से गर्दन के रीढ़ के हड्डी जौन बा एकरा पर दबाव पड़ रहल बा जौना से कि गर्दन आ पीठ के दर्द के बीमारी अभी आदमी के बढ़ रहल बा। इतने ना देखी श्रोता भाई, अभी गाड़ी चलावत खून भी अभी हमने के देखल जाओ तो बहुत सा युवा पीढ़ी बढ़न जौन कि मोटरसाइकिल चलावत हन आ कान में मोबाइल अपना गर्दन से चपले बढ़न बुझाता कि इतना जरूरी बा कि फिर बाद में बातें ना करिहन। आ ए स्थिति में का हो रहल बा कि सामने से का रह रहल बा उनकर ध्यान हट जाता आ का होता कि वो आदमी दुर्घटना के शिकार हो रहल बड़न। तो हमनी के कोशिश करे के चाहिए कि एह तरह के जौन मोबाइल में हमने के रात दिन लागल बन जा एकरा से बचल जाओ आ एकर कुप्रभाव से भी बचल जाओ। तो आई अब हमनी के थोड़ा मन मन साइन कर जाओ अपन आ एकरा खातिर एगो खूब निमन लोकगीत सुनतनी जा। लोकगीत के कलाकार बानी मनोरंजन सिंह, तो प्रेम रंजन सिंह, ताई हमनी के लोकगीत सुनल जाओ।

0: देखी श्रोता भाई कितना निमन लागल लोकगीत, आ इतना निमन लोकगीत सुनावला खातिर प्रेम रंजन सिंह के बहुत बहुत धन्यवाद। देखी श्रोता भाई हमनी के बरसात के जब मौसम आवेला तो एकरा में एक बाय गर्मी होला, फिर कभी ठंडा हो जाई, कभी पानी पड़े लगी, तो इसमें का होला कि शरीर के जौन तापमान बाई कम बेसी होला, एकरा में बहुत तरह के बीमारी भी हमनी के हो जाला। तो हमनी के स्वस्थ रहे खातिर निरोग रहे खातिर का करे के चाही, एकरा खातिर आई हमनी के एगो भेंट वार्ता सुनल जाओ। भेंट वार्ताकार बनी डॉक्टर जितेंद्र कुमार, यहाँ से भेंट कैले बनी डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी, ताई हमनी के सुनल जाओ कि बरसात के मौसम में बीमारी आ ओकर बचाव के का उपाय बा, ताई सुनल जाओ।
1: श्रोताओं, बरसात का मौसम है और अक्सर बरसात में देखा जाता है कि तमाम तरह की बीमारियां होती हैं, जो बच्चों के लिए काफ़ी कष्टप्रद होती हैं, जो बड़े होते हैं उनको भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं इस मौसम में, ये जानने के लिए और इनसे बचाव कैसे किया जाए, ये इस पर जानकारी देने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर जितेंद्र कुमार को। आप नारायण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल जमुहार रोहतास में डॉक्टर हैं, आपका स्वागत है जितेंद्र कुमार जी।
2: जी धन्यवाद।
1: पहले तो ये बताइए कि बरसात में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं?
2: बरसात में जो होने वाली आम बीमारियां हैं वो ज़्यादातर दूषित पानी के पीने से होती है, जिसमें साधारण मुख्यतः वायरल इन्फेक्शन है, जो वायरल हेपेटाइटिस के रूप में होती हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, इसमें मुख्यतः इसके जॉन्डिस के लक्षण होते हैं। इसके अलावा पेट का खराब हो जाना, पतला पैखाना होना, उल्टी होना, कोलरा जिसे आम भाषा में हैजा के रूप में लोग जानते हैं,
1: जी जी,

0: इसके अलावा अमीबियसिस,
1: जी
0: जीआरडीएसिस, इसके अलावा कुछ दूसरी बीमारियां हैं जो ज़्यादा पानी में भींग जाने से या ठंडा लगने से या कान में नाक में गंदे पानी के जाने से इन्फेक्शन हो जाता है,
1: जी जी
0: तो सर्दी खांसी के रूप में, निमोनिया के रूप में,
1: जी जी
0: इन्फ्लुएंजा के रूप में होता है।
1: जी
0: इसके अलावा कुछ और बीमारियां हैं जो मच्छर के बहुत ज़्यादा हो जाने से, मच्छर के प्रकोप से होता है,
1: जी
0: और इसमें आम बीमारियां हैं, मलेरिया हैं, डेंगू फीवर हैं, इन्केफेलाइटिस होते हो हैं,
1: जी
0: फाइलेरिया हैं। इसके अलावा कुछ गंदे पानी के कांटेक्ट में आने से बीमारियां फैलती हैं, जिसमें कि स्किन का खुजलापन होना,
1: जी
0: एस्केविज का होना।
1: जी
0: इसके अलावा कुछ एक्सीडेंटल बीमारियां हैं, जैसे कि इसमें बरसात के मौसम में सांप के या बिच्छू के काटने से भी इस तरह के एक्सीडेंटल बीमारियां होती हैं जो हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा आया करती हैं।
1: इस तरह की बीमारियां होती
0: बीमारी
1: हैं।
0: ज़्यादा कॉमन है जो आती है
1: जैसा कि
0: हॉस्पिटल
1: आपने कहा कि पानी, गंदा पानी पीने से या स्वच्छ पानी नहीं पीने से कई तरह पेट के रोग होते हैं इस समय, ज़्यादातर कलरा भी हो
0: हो
1: जाता
0: जाता
1: है
0: है।
1: या हेपेटाइटिस के रोग होते हैं, तो क्या करे आम आदमी, कैसे पानी पिए ताकि ये सब बीमारियां ना हों?
0: जी हाँ, ये जो कॉमन बीमारियां हैं कि मरीज को पतला पैखाना होने लगता है, उल्टी होने लगता है, तो ये सब हैजा या अमीबेसिस या जियाडेसिस के लक्षण होते हैं। तो इनसे बचने के लिए तो आजकल बहुत तरह के बाजार में फिल्टर आ गए हैं, तो फिल्टर करना एक अच्छा तरीका है, जिससे कि बैक्टीरिया का और वायरस का उससे निकल जाता है।
1: जी
0: या कभी कभी गांव में जहाँ की फिल्टर का सुविधा नहीं है, तो वहाँ एक आसान तरीका हो सकता है, पानी को उबाल कर पीना।
1: जी
0: पानी को उबाल देने से ज़्यादातर बैक्टीरिया और वायरस उसमें मर जाते हैं, और ये इससे काफ़ी फायदा होता है, ये इससे बीमारी फैलने का काफ़ी संभावना कम हो जाती है।
1: देखा जाता है कि इसी मौसम में जॉन्डिस ज्यादा होता है, तो जॉन्डिस से कैसे बचाव करे आम आदमी?
0: जॉन्डिस का भी जो लक्षण होता है, शुरू में जब होगा तो बुखार आ जाना, खाने का इच्छा नहीं होना, किसी किसी काम में मन नहीं लगना, सुस्ती हो जाना,
1: जी
0: और बाद में जाके वोमिटिंग होने लगता है इसके बाद का। और जब होता है, जब आग जब ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आँख का पीला हो जाना, पेशाब का पीला होना, तो ये एक वायरस के पानी में फैलने से होता है। तो इसे मुख्यतः हेपेटाइटिस ए हैं, हेपेटाइटिस ई हैं जो इस तरह से फैलती हैं।
1: जी
0: तो इससे भी बचने के लिए जो सबसे आसान तरीका होता है, पानी को उबाल देना, जिसमें कि ये वायरस मर जाता है।
1: जी
0: या इसके अलावा आजकल जो बहुत सारे फिल्टर आ गए हैं मार्केट में, तो फिल्टर कर देने से वायरस बहुत निकल जाता है।
1: जी
0: इसके अलावा जो सरकार के द्वारा जो किया जाता है कि पानी को क्लोरीनेट कर दिया जाता है, क्लोरीनेट करने से उसमें जो वायरस होता है उसका प्रभाव कम हो जाता है।
1: अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि पानी स्वच्छ पिया जाए, लेकिन अगर मान लीजिए किसी को हेपेटाइटिस हो गया, वो क्या करे?
0: हेपेटाइटिस अगर हो जाता है तो डॉक्टर को जरूर सलाह करना चाहिए। और होता क्या है कि लोग झाड़ फूँक में करने लगते हैं, और इसके कारण बीमारी बढ़ जाती है।
1: जी
0: तो शुरू शुरू में इसका पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में जाके अगर ठीक से इलाज नहीं किया जाए तो पेशेंट कोमा में जा सकता है
1: जी
0: और उसका डेथ हो सकता है। इसलिए झाड़ फूँक में विश्वास नहीं करके डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, और जो डॉक्टर देते हैं उसमें कुछ खान पान में कुछ परहेज़ करना पड़ता है, जिसमें कि हाई प्रोटीन डाइट थोड़ा सा हम लोग उसमें नहीं अवॉइड करते हैं।
1: जी
0: हाई प्रोटीन डाइट में जो कॉमन होता है कि अंडा है,
1: जी
0: मीट मछली है, तो ये सबको थोड़ा सा हम लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेने के लिए। इसमें किसी तरह का बुखार हो जाता है
1: जी
0: या और कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो डायरिया वॉमिटिंग इसमें हो जाता है। तो ये सब कुछ ऐसे कॉज हैं जो जॉन्डिस के पेशेंट को और ज़्यादा सीरियस कर सकते हैं, और वो कोमा में जाने का उनका खतरा रहता है। तो इसलिए डॉक्टर को हमेशा कांटेक्ट करना पड़ता है, और डॉक्टर इसमें कुछ विटामिन देते हैं, लीवर का टॉनिक देते हैं, कुछ खान पान में कुछ परहेज़ करना पड़ता है, तो इस तरह से उसका इलाज करना पड़ता है।
1: अच्छा, जो कॉलरा की बात कर रहे हैं, हैजा की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए अगर हो जाए किसी को, क्योंकि अक्सर इस समय देखा जाता है कि इसका प्रकोप बढ़ जाता है, तो वैसा मरीज क्या करे?
0: उसमें पानी का सेवन हमेशा करते रहना है, और पानी में जो आजकल तो हर मेडिकल के दुकान पर मिल जाता है, इलेक्ट्रल पाउडर है या ORS पाउडर आता है, जो इसी पर्पज़ से आता है, डायरिया वोमिटिंग के पेशेंट के लिए ही आता है, जिसे ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बोलते हैं, उसे पानी में मिलाकर उसका सेवन हम हमेशा करते रहना चाहिए, जब तक कि डॉक्टर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो जाता है। और डॉक्टर के पास जाने के पास जो शरीर से पानी का जो लॉस होता रहता है, उसको पानी चढ़ाकर उसको शरीर में पानी देना पड़ता है। तो
1: जी

0: ये बाद में इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा कभी कभी देखा गया है कि मरीज इसको डॉक्टर के पास नहीं जाता है और घरेलू इलाज करता रहता है और इसमें बीमारी बढ़ता चला जाता है और बाद में जाके किडनी खराब करने का चांस और संभावना रहता है, और एक बार किडनी खराब हो जाने पर जान के खतरा हो जाता है और इसका काफ़ी महंगा इलाज करना पड़ता है इसका। इसलिए जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए और इसका समुचित व्यवस्था होना चाहिए, और जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं तब तक पानी का सेवन ORS मिलाकर हमेशा करते रहना चाहिए। और छोटा बच्चा अगर है तो उसे माँ को चाहिए कि हमेशा दूध पिलाते रहें, क्योंकि ऐसा देखा गया है बहुत बार कि बच्चे को दूध पिलाना लोग बंद कर देते हैं या पानी पीना बंद कर देते हैं, जो कि नहीं करना है। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो ध्यान रखना चाहिए इसका।
1: जी अच्छा, जो आपने स्किन के बारे में बताया, चर्म के रोगों के बारे में बताया कि इस मौसम में हो जाता है, खुजलाहट होती है, चकत्ते हो जाते हैं, तो इसके लिए क्या किया जाए, कैसे बचा जाए?
0: ये इसलिए होता है कि गंदे पानी में ज़्यादा देर तक कॉन्टैक्ट रहने से उसमें कीटाणु उसमें जो होते हैं जो स्किन पर आ जाते हैं और वो इचिंग करते रहते हैं, खुजलाहट करते हैं। तो इससे बचने का तरीका है कि गंदे पानी में जब भी आप जाते हैं, खेतों में काम करते हैं, तो बाहर निकलने के बाद साफ पानी से पूरे शरीर उसको धोना चाहिए और उसको अच्छी तरह से सुखा कर तभी बिस्तर में जाएं, तो इससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है इसे।
1: जी, और जैसा कि आपने कहा कि कान बहने की भी बीमारियां विशेषकर बच्चों को होती हैं, इस मौसम में देखा जाता है कि कान काफ़ी बहने लगता है, तो इसके लिए क्या करें?
0: इससे है कि थोड़ा सा गंदे पानी से नहाने से ये इन्फेक्शन फैलता है, तो कोशिश करें कि गंदे पानी से ना नहाएं, और जब भी इस तरह का आता है, लक्षण आता है, तो इसमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए और एंटीबायोटिक का सेवन करना जरूरी हो जाता है, नहीं तो ये बाद में जाके फिर कभी कभी जान के लिए खतरा हो सकता है इसमें।
1: बरसात में आँखों की भी बीमारियाँ होती हैं ज़्यादातर, ये क्यों होती हैं?
0: ये भी गंदे पानी के कॉन्टैक्ट आने से होता है, और इसका भी तरीका है कि जब भी इस तरह का कॉन्टैक्ट होता है, गंदे पानी का कॉन्टैक्ट होता है, तो साफ पानी से आँखों को धोएं, शरीर को अच्छी तरह साफ करें और सफाई का ध्यान रखें, तो इससे बचा जा सकता है।
1: अच्छा, एक चीज़ और देखा जाता है कि वैसे अंग जो ढके रहते हैं और पसीना आता है, वहाँ पर खुजली बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इस मौसम में पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो इसके लिए क्या किया जाए? खुजलाहट जो होती है,
0: इसमें एक बीमारी होता है जिसे आम भाषा में दाद बोलते हैं
1: जी,
0: और टीनिया के एक तरह का एक फंगल इन्फेक्शन है, तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे सूखा रखें, हम लोग कोई भी पाउडर का यूज करें, और कोशिश करें कि हम लोग भींगा कपड़ा, जब शरीर भींगा हुआ रहे तो उस समय कपड़ा नहीं पहने, अच्छी तरह से शरीर को सुखाने के बाद ही कपड़े पहने, अंडरगारमेंट जो पहनते हैं हम लोग, तो उसको जब नहाने के बाद जब तक शरीर अच्छा से सूख नहीं जाए उसको नहीं पहने, और जब भी इस तरह का हो जाता है तो डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए, और इसके लिए एक दवा आता है, उसको दवा का यूज करना पड़ता है
1: जी,
0: जिससे कि बीमारी जल्द जल्द ठीक हो जाता है
1: जी। अच्छा, जो बरसात में आम बीमारियां होती हैं, आप एक डॉक्टर के रूप में क्या हमारे श्रोताओं को सलाह देंगे कि वे इस मौसम में क्या करें?
0: ये मैं इससे सलाह दूंगा कि इस तरह की बीमारियों से बचने के लिए पानी को साफ पानी पिया करें, मच्छर से बचने के लिए फुल स्लीव का कपड़ा पहने, फुल शर्ट पहने, फुल पैंट पहने, रात में जब सोते हैं तो मच्छरदानी का यूज जरूर करें, और मच्छर से कुछ जो बीमारियां हैं जो काफ़ी खतरनाक हो सकती हैं आगे जाके, इसमें खास करके मलेरिया है, डेंगू फीवर है, इनकेफेलाइटिस होता है, ये काफ़ी जानलेवा हो सकता है, इसलिए इस तरह से बचना बहुत ज़रूरी होता है। तो मच्छर से बचाव करें, साफ पानी का सेवन करें, गंदे पानी का इस्तेमाल कम से कम करें, और जब भी इस तरह का गंदे पानी का कॉन्टैक्ट होता है तो शरीर को अच्छी तरह साफ करके साफ कपड़ा पहने, तो इस तरह से काफ़ी हद तक आम बीमारियों से बचा जा सकता है।
1: तो डॉक्टर जितेंद्र कुमार, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
2: देखिए श्रोता भाई, कितना निमन लागल यहाँ लोग बताइने कि बरसात में हमने के कामना तरह से सावधान रहे के चाहिए। तो देखिए हमने के और चर्चा बाद में कर ली, ओकरा पहले आई थोड़ा संदेश सुन लिया, एक बातचीत कर ली।

0: देहियों के बुलंदियन के पाख।
1: आपको बिजनेस स्थानीय बा चाहे देश स्तर का, आकाशवाणी देले उपभोक्तन तक पहुँचे का विकल्प।
0: अब घर दफ्तर चाहे दुकान पर बैठल करी आकाशवाणी के कोनो केंद्र खातिर विज्ञापन बुकिंग।
1: आकाशवाणी का चैनलन पर विज्ञापन।

0: हल भइल सस्ता आ सुलभ।
1: त बुकिंग खातिर संपर्क करी 8700001-4242 पर।
0: जी हाँ, नंबर बा 8700001-4242।
1: आपन बिजनेस बढ़ावे खातिर लीही आकाशवाणी के सहयोग, देही ओके बुलंदियन के पांख।
0: आपको बिजनेस स्थानीय बा चाहे देश स्तर का, आकाशवाणी देले उपभोक्तन तक पहुँचे का विकल्प।
1: अब घर, दफ्तर चाहे दुकान पर बैठल करी आकाशवाणी के कोनो केंद्र खातिर विज्ञापन बुकिंग।
0: आकाशवाणी का चैनलन पर विज्ञापन देहल भइल सस्ता आ सुलभ।
1: त बुकिंग खातिर संपर्क करी 8700001-4242 पर।
0: जी हाँ, नंबर बा 8700001-4242।
2: देखिए श्रोता भाई, अभी हमने के संदेश सुन ली जा, लेकिन अभी हमने के धान के खेती के समय चल रहा बा। खेती के बारे में कहल गई बा कि आगे खेती आगे आगे आ पीछे खेती भागे जोगे। तो देखी समय से ही हमने के खेती करे के चाहिए। आ धान के खेती खाती जून से जुलाई के बीच के समय जौन हल ये बहुते निमन मानल जाला। कारण कि देखी फसल ये जौन धान के फसल होला एकरा खाती मई के अंत से लेकर के आ जून के पहला सप्ताह में नर्सरी जौन धान के बिया डाले वाला समय होला ई हमनी के डाल देवे के चाही। आ फिर एकरा बाद बुआई खाती 20 से 30 दिन बाद समझी कि मतलब जुलाई में पौधा के रोपाई हमनी के कौन हालत में कर देवे के चाही। एकरा साथे साथे हाइब्रिड धान खाती जून के दूसरा पखवारा मतलब 15 से 30 जून के समय भी सही मानल जाला। तो एह तरह से हमनी के अपन धान के खेती में अभी लागल रहे के चाही। एकरा साथे साथे हमनी के एगो और जानकारी लिहल जाओ कि बिहार राज्य में हमनी के किसान भाई खाती जन सहयोग शिविर के भी आयोजन कइल जाला। एकरा में हमनी के चाही कि बढ़ चढ़ के भाग लिहल जाओ। देखी श्रोता भाई, महीना के पहला आ तीसरा मंगलवार जौन होला ई जन सहयोग शिविर के स्थापना भइल बा। एकरा में हमनी के किसान भाई के समस्या के सुनल जाला। एकर मुख्य उद्देश्य होला कि जमीन विवाद जौन बा या पेंशन संबंधी कोई समस्या बा या हमनी के गांव में राशन कार्ड संबंधी कोई समस्या होखे या प्रमाण पत्र जिसे जाति आय निवास ई सब बनावे खातिर हमनी के कोशिश करे के चाही कि महीना के पहला आ तीसरा मंगलवार के हमनी के जाई जा आ सरकारी क्षेत्र में जहाँ जन सहयोग शिविर लागल बा वही जा एकर निष्पादन कइल जा सकेला। एकरा साथे साथे बिजली से जुड़ल जौन समस्या बा एकर भी सीधा आ तुरंत मतलब एकर समाधान कइल जाला। एकरा साथे साथे एकरा से फायदा का होला कि हमनी के जौन अपन काम करे खातिर या शिकायत खातिर जौन सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाई न जा एकरा से हमनी के तुरंत राहत मिली आ हमनी के तुरंत एकरा से निपटारा हो जाला। तो कोशिश करे के चाहिए कि हमनी के महीना के पहला आ तीसरा मंगल के जन सहयोग शिविर जौन बा एकरा में जाई आ अपन समस्या के निपटारा कइल जाओ। देखिए श्रोता भाई, अब चले के हमनी के अपन खेती बाड़ी में अभी हमनी के किसान भाई खातिर सामान्य सलाह ई बा कि कुछ दिन में वर्षा होके के संभावना बा एकरा के खड़ा फसल के जौन सिंचाई बा वो रोक देवे के चाहिए आ खाद आ कीटनाशक के छिड़काव तब करे के चाहिए जब आसमान साफ होके। एकरा साथे साथे किसान भाई खातिर लघु संदेश सलाह ई बा कि जे भी किसान भाई धान के खेती के लिए बनी पिछला कुछ दिन से होकल वर्षा के चलते जौन भइल बा एकरा में हमनी के लाभ उठावे के चाहिए। आ धान के सबौर दीप किस्म जैसे बा प्रभात शुष्क सम्राट सहभागी के बुआई हमनी के कर देवे के चाहिए। धान के बुआई से पहले बीज के कम कार्बेंडा जील से 2.0 किलोग्राम बीज के उपचारित कर लेवे के चाहिए। 10 से 15 दिन के नर्सरी के समय पर निराई गुड़ाई कर देवे के चाहिए। मध्यम किस्म वाला जौन धान के बीज बा जैसे कि

0: राजिंदर नीलम, राजिंदर कस्तूरी, राजिंदर श्वेता के रोपाई अभी कर सकी ना। धान के किस्म सबौर जनबा मोती धान, सबौर सोना आदि सीधा बुआई भी एकर कई जा सकेला। बहुत सा किसान भाई ऐसन बानी जे कि मक्का के भी खेती के लिए बानी, तो देखी श्रोता भाई खरीफ मक्का के बुआई तब करी जबकि आसमान साफ होके। खेत के जुताई करत समय 10 से 15 टन गोबर के सड़ल खाद प्रति हेक्टेयर के दर से हमनी के खेत में प्रयोग करे के चाहिए। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम स्फुर और 50 किलोग्राम पोटास के प्रयोग करे के चाहिए। मक्का में अनुशंसित किस्म जौन बा जैसे कि सुआन बा, देवकी बा, शक्तिमान 1 बा, शक्तिमान 2 बा आ राजिंदर शंकर मक्का 3 आ गंगा 11 किस्म बा। इस तरह से हमनी के अरहर के भी खेती ओजा करे के चाहिए जहाँ की उचास जमीन होके। अरहर के बुआई तब करे के चाहिए जब आसमान साफ होके। अरहर के किस्म बहार पूसा 9, राजिंदर अरहर 1 आ राजिंदर अरहर 2 किस्म के बुआई 60 से 20 सेंटीमीटर के दूरी पर करे के चाहिए। अंतिम बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम स्फुर आ 20 किलोग्राम पोटास आ 20 किलोग्राम गंधक के प्रयोग करे के चाहिए। अरहर खातिर अनुशंसित बीज दर जौन बा 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से हमनी के खेत में डाले के चाहिए। एकरा साथे साथे चले के थोड़ा मौसम पर एक नज़र डालल जाओ तो अभी हमनी के आसमान में कहीं कहीं बदरी भी छैले बा आ एक दो स्थान पर गरज के साथ आंधी पानी भी चल सकेला। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड आ न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के संभावना बा। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 90 से 95% आ दोपहर में 50 से 55% रहे के संभावना बा। एह में ऐसा अनुमान कल जा रहा बा कि 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से पछिया हवा चले के अनुमान बा। तो देखी श्रोता भाई अब स्टूडियो के घड़ी और अधिक कुछ कहे के इजाज़त नहीं के देत। चलत चलत सब श्रोता भाई बहन लोग के रजू भाई के तरफ से नमस्कार। आ देखी एह कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही संतोष कुमार। तही के साथ अब एह कार्यक्रम के समय समाप्त हो।
1: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे गांव घर कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM बैंड के 103.4 MHz पर। सांझ गीत आइए सुनते हैं। इस कार्यक्रम में कुछ भोजपुरी फिल्मी नगमे में

अभी आपने शैलेंद्र का लिखा और चित्रगुप्त का स्वरबद्ध किया गीत सुना। गायक कलाकार थे मोहम्मद रफ़ी। फिल्म थी गंगा मैया तुहे प्यारी चढ़ैबो। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से भोजपुरी फिल्म संगीत कार्यक्रम सांझ गीत।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

और सांझ गीत कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गीत उदित नारायण की आवाज़ में। शब्दकार हैं विनय बिहारी, धुन तैयार की है राजेश गुप्ता ने, फिल्म है करेला कमाल धरती के लाल।

0: इंदु सोनाली की आवाज़ में अभी आपने आपन भइल पराया फिल्म का यह गीत सुना। गीत लिखा था एमडी प्यासा ने और स्वरबद्ध किया था संतोष सुमन ने। इन्हीं गीतों के साथ ही सांझ गीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

कैसे हैं बिहार और झारखंड वालों, एक बार फिर से आपका दोस्त राजेश आ गया आप सबों के बीच में। सोमवार का दिन है और आज के दिन इसी मीटर पर आकाशवाणी के आप सुनते हैं बुनियाद। जी हां, बुनियाद एक ऐसा कार्यक्रम जो आप युवाओं के लिए एकदम हिट साबित हो रहा है। हम आपकी बुनियाद को मजबूत करना चाहते हैं और जिस पर जो पूरी इमारत लिखी जाए ना, वो एकदम मुकम्मल हो। अच्छा रोजगार, अच्छा पैसा, अच्छी जिंदगी, सब कुछ आपको मिल सके। और इस बुनियाद कार्यक्रम में हम बातें करते हैं रोजगार, जी हाँ रोजगार की। और रोजगार मिलती है ज्यादातर हाँ आसानी से प्रोफेशनल पढ़ाई करके, विशेषज्ञता हासिल करके, टेक्निकल पढ़ाई करके। और एक मेरा ये जो सेंटेंस है ना, ये जो लाइन है ना, बहुत पॉपुलर हो रहा है कि टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है। अगर जो आपने की टेक्निकल पढ़ाई तो आपके जीवन में सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जी हाँ, और ये बुनियाद कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं एक वैसे संस्थान, एक वैसे यूनिवर्सिटी की तरफ से जो टेक्निकल पढ़ाई का हब है और ये अपने बिहार के जमुआर में है, रोहतास में है, सासाराम में है, और जिसका नाम है गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय से आप टेक्निकल पढ़ाई कर सकते हैं। इसके वेबसाइट पर जाकर के आप देख सकते हैं और वेबसाइट का पता है www.gnsu.ac.in। और जो अगर फोन करना चाहें तो सबसे पहले हम एक टोल फ्री नंबर है वो बता रहे हैं, नंबर नोट करें 1800 121 0051 1800 121 0051। और दूसरा जो नंबर है मोबाइल का, वो नंबर है 9431899002। पिछले सप्ताह अवनीश रंजन थे हमारे साथ और हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोर्स की चर्चा की थी, बीएड स्पेशल एजुकेशन। हमने कहा बीएड स्पेशल एजुकेशन, बीएड सब कोई करना चाहता है ना, करना चाहता है और शिक्षक बनना चाहता है या फिर आगे निकलना चाहता है, लेकिन बीएड स्पेशल एजुकेशन की बातें हमने की थी जो गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में होता है। पूरे बिहार और झारखंड से

0: रिस्पॉन्स आए हैं। हाँ, उन्होंने डाल्टनगंज से मोहन यादव ने लिखा है कि बीएड स्पेशल एडुकेशन और बीएड में हाँ क्या क्या अंतर है, या दोनों के बारे में एक बार फिर से बताइए, क्योंकि मैं कार्यक्रम सुन रहा था और सुनते सुनते ये जो जवाब था वो निकल गया, हम फॉलो नहीं कर पाए। इसी तरीके से भागलपुर से, पूर्णिया से, हाँ इवन सासाराम से भी हाँ फोन कॉल्स आए हैं इसी तरीके के सवाल के लिए। तो चलिए हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन आपके डिमांड पर हम एक बार फिर से अवनीश रंजन जो हमारे साथ बने हुए हैं कार्यक्रम में, हम उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं कि बीएड और बीएड स्पेशल एडुकेशन के बारे में हमें जानकारियां दें एक बार फिर से, जिससे हम आपकी मदद कर सकें।
1: अब जो स्टूडेंट्स बीएड कोर्स करना चाहते हैं उनके मन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि दो अलग अलग ये कोर्स क्या है, तो मैं बताना चाहूँगा कि एक समय ऐसा था जब दो अलग अलग बीएड कोर्स चलते थे, और जिसमें था कि एक वैसे बीएड जो सामान्य विद्यालयों में सामान्य बच्चों को पढ़ाने के टीचर के रूप में ट्रेंड होते थे, और दूसरा बीएड जिसमें कि जो दिव्यांग बच्चे हैं जिन्हें जो कोई मानसिक रूप से कमजोर है या देखने में उनको दिक्कत हो रही है या सुनने बोलने में दिक्कत है, उन बच्चों के जो विशेष शिक्षक होते थे उनकी ट्रेनिंग होती थी। ये आज से करीब 4 साल 5 साल 8 साल पहले ये कॉन्सेप्ट था। अभी सरकार ने ये निर्णय लिया कि चूंकि हमारे सारे जब से सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान पूरे भारत में लागू हुआ, तो उसके बाद सरकार का ये निर्णय हुआ कि जो टीचर होंगे स्कूल के, जो भी टीचर होंगे वो सारे इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम के ट्रेंड होने चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम का मतलब ये हुआ कि वैसा विद्यालय जहाँ पे सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चे भी पढ़ेंगे जो स्कूल के फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में शामिल होने के लायक हैं। तो अब जो स्पेशल एजुकेशन वाले जो बीएड हैं जो जिन्होंने किया है कोर्स को, वो सामान्य विद्यालयों में भी सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेंड होते हैं, और वो टीचर दोनों बच्चों को एक समान रूप से पढ़ा सकते हैं।
0: बहुत खूब, आपने सारी चीजें एक बार फिर से अच्छे से बता दी, और हमें उम्मीद है कि पूरा बिहार और झारखंड जो सुन रहा है और बीएड करना चाहता है एक बार जरूर बीएड स्पेशल एडुकेशन की तरफ देखेगा। अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं बीएड स्पेशल एडुकेशन में। आप जो कॉमन आदमी है उसके लिए, कॉमन बच्चे हैं उसके लिए तो काम कर सकते हैं, चैलेंज बच्चों या डिजेबल बच्चों के लिए भी आप काम कर सकते हैं। सर्विस की भावना ज्यादा है, सारा कुछ इसके अंदर है। जी हाँ, ये गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में ये कोर्स होता है। हम नंबर बता दे रहे हैं, आप चाहें तो बात कर सकते हैं। नंबर जो टोल फ्री नंबर है हमारा 1800121051, 1800121051, और दूसरा जो नंबर है 9431899002, ये नंबर है। आगे बढ़ें बीएड स्पेशल एडुकेशन के बारे में, आगे बढ़ें उससे पहले आपको याद दिला दें युवा साथियों कि हमने 3 नए कोर्सेज की चर्चा की थी जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया था, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, दूसरा कोर्स था परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, और तीसरा कोर्स था बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज। इसकी चर्चा हमने इस बुनियाद कार्यक्रम में की थी, आपके रिस्पॉन्सेज आए हैं, लेकिन सच बताऊं तो जितना आना चाहिए उस हिसाब से नहीं आए। शायद आप ये कोर्स को समझ नहीं पाए, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन ये हॉट केक है। एक बार फिर से बता देते हैं, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में ये इसकी प्लेसमेंट होती है। इसी तरीके से परफ्यूजन टेक्नोलॉजी है और बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज है। सीट बहुत कम है। इसी नंबर 1800121051 या 9431899002 इस नंबर पर आप बात करके जानकारियां ले सकते हैं। बहरहाल अवनीश जी, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के बारे में जरा लोगों को बताइए, वहां ये कोर्स होता है, फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजें जितनी जानकारी हम दे सकते हैं गागर में सागर भर दीजिए।
1: मैं बताना चाहूंगा कि गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी रोहतास जिले, बिहार के रोहतास जिले के जमुआर में स्थित है, और ये करीब 100 एकड़ में फैला हमारा यूनिवर्सिटी है, जिसमें कि बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज संचालित होते हैं, जिसमें हमारा ये फैकल्टी ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंस भी है। फैकल्टी ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंस के ही अंतर्गत ये 4 साल के इंटीग्रेटेड बीएड स्पेशल एजुकेशन के 2 स्पेशलाइजेशन के साथ, 2 विशेषज्ञता के साथ बीएड की पढ़ाई होती है।

0: एक इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी जिसे हम बौद्धिक अक्षमता कहते हैं, और दूसरा हियरिंग इंपेयरमेंट, मतलब जिनको सुनने या बोलने में समस्या है बच्चों की, उनके शिक्षक की ट्रेनिंग हमारे यहाँ होती है। हमारे यहाँ भारतीय पुनर्वास परिषद जो भारत सरकार की वैधानिक संस्था है वहाँ से मान्यता प्राप्त है हम लोगों का यहाँ। और इसके अलावा हमारे जो फैकल्टी हैं, जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स को, टीचर ट्रेनीज को पढ़ाते हैं, वो वेल क्वालिफाइड हैं, उनके पास अच्छी डिग्री है और इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। साथ साथ हमारे हमारे ही कैंपस में नारायण वर्ल्ड स्कूल है, जो चूंकि टीचिंग प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है टीचर्स को अपने ट्रेनिंग के दौरान, तो उनको प्रैक्टिस के लिए भी हमारे कैंपस में स्कूल है, जो इंक्लूसिव स्कूल है, जिसमें कि सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चे भी पढ़ते हैं। हमारे कैंपस में नारायण केयर बाल पुनर्वास केंद्र भी स्थापित है, जहाँ पे इस तरह के बच्चे थेरेपी के लिए आते हैं और स्पेशल एजुकेशन के लिए आते हैं। जब ऐसे सेटअप में, स्पेशल सेटअप में, जहाँ इन बच्चों को अलग से स्कूल के अलावे भी अगर उनको सपोर्ट की जरूरत है तो उस तरह की सेंटर्स हैं। तो जो स्टूडेंट यहाँ एडमिशन लेंगे बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले कोर्स में, उनको प्रैक्टिस टीचिंग के लिए भी व्यवस्था हमारे यहाँ है, थेरेपी और स्पेशल एजुकेशन के लिए लैब उन हमारे पास अवेलेबल है, हमारे यहाँ बच्चे अवेलेबल हैं जिनके ऊपर बच्चे उनको ट्रेनिंग के दौरान उनको ऑब्जर्वेशन करने के लिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन असेसमेंट करने के लिए भी व्यवस्था हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैंपस में ही हॉस्टल अवेलेबल है, लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल है, बॉयज़ के लिए अलग हॉस्टल है। हमारे यहाँ अच्छी क्वालिटी के भोजन उपलब्ध कराने वाली मेस है, जिसमें कि जो भी बच्चे रहते हैं हॉस्टल में उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट, ग्रीन इन्वायरमेंट मिलता है, एक सेफ्टी और सिक्योरिटी की बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो मैं ये अपील करना चाहूँगा वैसे लोगों से जिन्होंने प्लस टू किया है इस बार साइंस या आर्ट्स में, वो एक बार हमारी यूनिवर्सिटी को विजिट करें, हमारे वेबसाइट पर भी जाएँ और फैकल्टी ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंस को के साइट को देखें और हमारे प्रोग्राम्स को समझें, हमारे पूरे फैसिलिटी को एक बार देखें। और मैं अपील करूंगा कि वो एडमिशन अगर लेते हैं तो मैं अपनी तरफ से ये विश्वास दिलाता हूं कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूशन के, अच्छी यूनिवर्सिटी को में एडमिशन लेंगे और उनकी अच्छी पढ़ाई के साथ एक अच्छे मार्क्स के साथ डिग्री लेकर निकलेंगे, जब वो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों पार्ट उनका बहुत स्ट्रांग होगा और जहां चाहे वो जॉब कर सकते हैं या प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं।
1: मजा आ गई लवनीश जी, वाह, बहुत पूरी तरीके से आपने खोल के बता दिया। लेकिन आपने बाद में रोजगार की बात कही, यहाँ एक सहज जिज्ञासा है, पढ़ाई करने के बाद एक अच्छा रोजगार सारे यूथ चाहते हैं, गार्जियन भी चाहते हैं, अगर हमारा बेटा भी हो तो हम चाहेंगे पढ़ने के बाद रोजगार लगे, यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या व्यवस्था है?
0: जी, हमारे यहाँ अलग से एक प्लेसमेंट सेल है जिसमें कि हमारे वैसे लोग जो हमारे यहाँ से पढ़ के निकलते हैं उनके लिए हम लोग प्लेसमेंट के लिए ड्राइव चलाते हैं। बहुत सारे एजेंसीज हैं खासकर जो इस फील्ड में काम कर रही है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की एजेंसीज है जो हमारे यहाँ आती है और इन लोगों के का इंटरव्यू लेके और उनके को सेलेक्ट करके और अपने यहाँ ले जाती है और अच्छे पैकेज पे उनको जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाती है।
1: अच्छा, एक बात बताइए, आपके यहाँ कैंपस में नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भी है, तो क्या आप अपने बच्चों को या आपके यहाँ से जो पढ़ के निकले आप अपने यहाँ भी प्लेसमेंट देते हैं उनको?
0: जी, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि जो हमारे बच्चे हमारे कैंपस में काम करना चाहते हैं तो हम उनको चांस देते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जब हमने अपने बच्चों को एक हाई एजुकेशन दिया है, एक अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन दिया, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी, तो मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे हम लोगों के यहाँ पहले ऑब्जर्व हों। अगर वो अपने एरिया में काम करना चाहते हैं तो हम लोग उनको वो भी मदद करते हैं कि आप जिस राज्य में या जिस शहर में काम करना चाहते हैं तो हमारे लिंक्स हैं, हम लोग उनको वहाँ भी रेफर करते हैं और वहाँ जाके वो जॉब करते हैं।
1: अवनीश जी, रोजगार से संबंधित एक और हम जानकारी चाहते हैं कि स्कूलों में सब बच्चे एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ भी अपॉर्चुनिटी बीएड स्पेशल एडुकेशन वालों की बढ़ी है क्या?
0: सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान के आने के बाद जितने भी सरकारी विद्यालय हैं वो सबको सरकार की मैंडेटरी है कि वो इंक्लूसिव सेटअप में उस स्कूल को रखना है, मतलब कि ऐसा स्कूल जहाँ पे सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चे भी पढ़ेंगे, तो उस विद्यालयों में इन शिक्षकों की भारी मांग है। प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं, चाहे वो सीबीएसई के स्कूल हो, नवोदय विद्यालय हो, केंद्रीय विद्यालय हो या और दूसरे प्राइवेट विद्यालय हो जैसे आईसीएसई और सीबीएसई के स्कूल हैं, वो सारे जगह पे मैंडेटरी है कि इन तरह के टीचर्स को उनकी बहाली कंपलसरी है, रखनी है उनको और उनका वहाँ स्कोप है जहाँ वो एज ए टीचर काम कर सकते हैं।
1: वाह, बहुत खूब, थैंक यू अवनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सवाल आए तो आपसे जरूर पूछेंगे, आपको बुलाएंगे इस कार्यक्रम में। तो साथियों, पूरा बिहार और झारखंड आपने सुना पहले कोर्स के बारे में।

0: बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन के बारे में, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के बारे में और लंबी बातचीत हुई जॉब को लेकर। हर तरफ जॉब ही जॉब है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बात कर सकते हैं इस नंबर पर 1800 121 0051 1800 121 0051 और दूसरा नंबर 9431899002। ये नंबर है और इंटरेस्टेड होना भी चाहिए बीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए। और इसके अलावे आज ढेर सारी अपॉर्चुनिटी आ गई है युवा साथियों, बस गौर करने की जरूरत है, आपका इंटरेस्ट किस तरफ है ये जानने की जरूरत है। अपने बिहार में टेक्निकल पढ़ाई वाला यूनिवर्सिटी है जहां 13-14 अपॉर्चुनिटी है। जैसे अगर आपने बायोलॉजी के साथ किया है तो मेडिकल है, नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। इसके अलावा फार्मेसी है, पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं, नर्सिंग के कोर्सेज हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर है, आप जा सकते हैं। इसके अलावा टेक्निकल पढ़ाई में आप लॉ, 5 ईयर लॉ कर सकते हैं। इसके अलावे भी लाइब्रेरी साइंस, बीटेक, आईटी, न जाने कितने कोर्स हैं, बस जरूरत है ध्यान देने की। और नंबर वही 1800 121 0051 और 9431899002। थैंक यू गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम बुनियाद पूरे बिहार और झारखंड के बच्चों के लिए राजेश को लेकर आने का मौका दिया। चलते हैं, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।
2: बुनियाद, अभी आप सुन रहे थे हमारा यह प्रायोजित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। गुड इवनिंग रोहतास। जी हाँ, प्रस्तुत है सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम। मैं हूँ संजय चतुर्वेदी, स्वीकार कीजिए हमारा सप्रेम नमस्कार। श्रोताओं, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ावा देने हेतु जिलाधिकारी रोहतास ने की समीक्षा बैठक। आम नागरिकों को सस्ती, सुलभ एवं स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं रूफटॉप सोलर अधिष्ठापन में तेजी लाने के लिए सोमवार को जिला पदाधिकारी रोहतास की अध्यक्षता में वर्चुअल समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य आम उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर प्रणाली के प्रति जागरूक करना तथा अधिक से अधिक लोगों को योजना से जोड़ना था। जिलाधिकारी ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल स्थापित करने पर केंद्र सरकार द्वारा आकर्षक सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिससे बिजली बिल में उल्लेखनीय कमी आती है। उन्होंने बताया कि 1 किलोवाट पर 30,000, 2 किलोवाट पर 60,000 तथा 3 किलोवाट पर या उससे अधिक क्षमता पर 78,000 रुपये तक की सब्सिडी उपलब्ध है। साथ ही सोलर संयंत्र स्थापना के लिए बैंकों के माध्यम से रियायती ब्याज दर पर ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। बता दें कि जिले में अब तक 371 उपभोक्ताओं के घरों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद निर्धारित समय सीमा के भीतर सोलर पैनल का स्थापन सुनिश्चित कराया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए तथा अधिक बिजली खपत वाले उपभोक्ताओं को विशेष रूप से सोलर अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने बताया कि 150 यूनिट तक मासिक खपत वाले उपभोक्ताओं के लिए 1 किलोवाट, 300 यूनिट तक के लिए 2 किलोवाट तथा 300 यूनिट से अधिक खपत वाले उपभोक्ताओं के लिए 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता का सोलर संयंत्र उपयुक्त है। वहीं एक अन्य सूचना के अनुसार आज दिनांक 13/7/2026 को मुख्य सचिव बिहार द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों के साथ

महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की गई। बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFASA के प्रभावी क्रियान्वयन, खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करने, पारदर्शी वितरण व्यवस्था तथा नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने को लेकर समीक्षा की गई। रोहतास समाहरणालय से बैठक में जिला पदाधिकारी सहित संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य में निर्धारित सीमा के अंतर्गत 46,93,806 रिक्तियों को भरने के लिए 11,04,425 नए राशन कार्ड जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। रोहतास जिले के लिए 13 अगस्त 2026 तक 29,586 नए राशन कार्ड जारी करने का लक्ष्य तय किया गया है। इस लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए प्रतिदिन 980 नए राशन कार्ड जारी करने का निर्देश दिया गया है। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों एवं संबंधित आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि 13 अगस्त की समय सीमा को अंतिम मानते हुए पूरी गंभीरता एवं मुस्तैदी के साथ कार्य करें। उन्होंने पात्र लाभुकों को समय पर राशन कार्ड उपलब्ध कराने, लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन करने तथा पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने पर भी विशेष जोर दिया। बैठक के दौरान टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अभियान की प्रगति का आकलन करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्वास्थ्य विभाग को समन्वित प्रयास करने को कहा। बिहार सरकार की संकल्प मुख्यमंत्री हेली टूरिज्म योजना के तहत राज्य के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों को हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ने की पहल की गई है, जिसका उद्घाटन आज माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी द्वारा किया गया। योजना के अंतर्गत पटना राजगीर, मां मुंडेश्वरी मंदिर, कैमूर, करमचट डैम हेलीपैड पटना रूट भी निर्धारित किया गया है। इससे श्रद्धालु और पर्यटक एक ही यात्रा में प्राचीनतम मंदिरों में शामिल मां मुंडेश्वरी मंदिर के दर्शन प्राप्त करने के साथ साथ करमचट डैम की प्राकृतिक खूबसूरती का भी आनंद ले सकेंगे। योजना के अनुसार यह हेलीकॉप्टर सेवा हर रविवार और शनिवार संचालित होगी। हेलीकॉप्टर सुबह 11 बजे पटना से कैमूर हेलीपैड पहुंचेगा, जहां से पर्यटकों को करमचट डैम का आकाशीय सैर कराते हुए मुंडेश्वरी मंदिर के पास हेलीपैड तक जाएगी। इसके बाद हेलीकॉप्टर दोपहर 12:45 पर कैमूर से पटना के लिए रवाना होगा। प्रत्येक उड़ान में 10 यात्रियों को बैठने की क्षमता होगी। यात्रियों के लिए पटना से कैमूर यानी मुंडेश्वरी मंदिर से करमचट डैम सर्किट तक प्रति व्यक्ति किराया 6,000 रुपये निर्धारित किया गया है। इस योजना से धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन को नई गति मिलने की उम्मीद है। इसकी बुकिंग 13 जुलाई से शुरू हो रही है। बिहार पर्यटन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल www.tourism.bihar.gov.in पर इसकी बुकिंग कर सकते हैं। हालांकि 18 जुलाई से हेली टूरिज्म योजना की औपचारिक रूप से शुरुआत हो जाएगी। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुन लेते हैं एक खूबसूरत गीत।

0: तो श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही हेलो, इसी गीत के साथ ही संपन्न होता है हमारा आज का गुड इवनिंग रोहतास कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल। कृपया
1: तो अंजुला बहन इस

0: ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। एक अंतराल के बाद प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: पापा लाइए 3,000।
4: क्यों भाई?
3: मेरी पॉकेट मनी।
4: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
3: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
4: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
3: अपना मोबाइल लाओ।
4: ले ले।
5: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
6: हर लेन देन अब है आसान।
7: पशुपालक भाई बहन, अत्यधिक गर्मी में पशुओं के रख रखाव का कृपया ध्यान रखें।
8: पशुओं को लू से बचाने के लिए छायादार जगह पर रखें। पशु घर को ठंडा रखने के लिए जूट की टाट लटकाकर उसे गीला रखें। उन्हें दिन में 2 से 3 बार नहलाएं, 3 से 4 बार ठंडा और साफ पानी पीने को दें। खाने में अजोला घास, चोकर और जौ की मात्रा बढ़ा दें। चराने के लिए सुबह जल्दी और शाम को देर से भेजें। लू लगने पर नजदीकी पशु चिकित्सालय में संपर्क करें।
9: डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
10: और इस गीत के बाद
11: छाया गीत।

0: This is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.
1: Namaskar. एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की समय सीमा समाप्त। भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा, जन सुराज के प्रशांत किशोर और जनशक्ति जनता दल की वीणा मांडवी ने दाखिल किया पर्चा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार हेली और एयर टूरिज्म सेवा की शुरुआत की। अनुदानित दर पर लोग ले सकेंगे सेवा का लाभ। पटना में कल से शुरू होगा राज्य स्तरीय सहयोग शिविर। मुख्यमंत्री स्वयं करेंगे शिकायतों की समीक्षा। और मौसम विभाग ने कल दरभंगा, सुपौल, भागलपुर, किशनगंज, मधुबनी और सहरसा समेत 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नामांकन की समय सीमा आज समाप्त हो गई। नामांकन के आज अंतिम दिन भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा और जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके अलावा जनशक्ति जनता दल की उम्मीदवार वीणा मांडवी ने भी अपना पर्चा भरा। इससे पहले उम्मीदवारों ने रोड शो भी किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि भाजपा उम्मीदवार के नामांकन में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सराफ की, पटना साहिब सांसद रविशंकर प्रसाद समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे।
4: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए जिन अन्य प्रमुख उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किए हैं, उनमें राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के तनवीर आलम, प्रोटेस्ट ब्लॉक इंडिया के प्रेम शंकर प्रसाद, प्रगतिशील जनता पार्टी के मनोरंजन कुमार श्रीवास्तव और निर्दलीय सिकंदर कुमार तथा मिथिलेश कुमार शामिल हैं। एक किन्नर उम्मीदवार प्रियांशु राज ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। उपचुनाव के लिए उम्मीदवार 16 जुलाई तक नाम वापस ले सकते हैं। मतदान 30 जुलाई को होगा, जबकि मतगणना 3 अगस्त को कराई जाएगी। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सत्यम कुमार।
3: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में नामांकन के बाद जनशक्ति जनता दल की उम्मीदवार वीणा मांडवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में उनको पटना की एक अदालत ने जमानत दे दी। हमारे संवाददाता ने बताया कि धोखाधड़ी के एक पुराने मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। इस बीच जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने कहा कि वीणा मांडवी को साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया।
5: साजिश है, ये सरकार की तरफ से साजिश किया गया है। हमारे कैंडिडेट को जान बुझा फंसाया गया है और ऐसा कोई मामला नहीं है। और ये आदि आबादी की बात कर रहे थे और ये हमारा कैंडिडेट जो वीणा मांडवी जी है, इनका लोकप्रियता भी है और अपने पार्टी जेजेडी जनशक्ति जनता दल की कैंडिडेट हुई है, तो षड्यंत्र कर रहे हैं लोग।
3: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया समाप्त होने के साथ ही राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को किसी भी दल से कोई चुनौती नहीं है।
6: बांकीपुर की जनता बीजेपी के समर्थन में रही है, जंगल राज से लालू जी के खिलाफ रही है। हमारा एक बहुत प्रामाणिक सरल कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता खड़ा है, जनता निर्णायक मतों से जिताई।
3: जदयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन ने दावा किया कि बांकीपुर से भाजपा उम्मीदवार को भारी मतों से जीत मिलेगी।
7: मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे आसान जीतने वाली सीटों में से एक बांकीपुर है। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन है, इस

0: ज्यादा अहम क्या है कि भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और एनडीए लड़ रही है, मतदाता सकारात्मक संदेश देंगे।
1: राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता और मंत्री दीपक प्रकाश ने भी दावा किया कि उपचुनाव में एनडीए उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को एकतरफा जीत मिलेगी।
2: मुझे पूरा विश्वास है कि जो काम हुआ है केंद्र की सरकार के द्वारा, राज्य की सरकार के द्वारा और पिछले 20 सालों में जो काम हुआ है बिहार में, निश्चित तौर पर जनता उस पर मोहर लगाई। सरकार के काम के ऊपर वोटिंग होगी और जीत बिल्कुल निश्चित है एनडीए कैंडिडेट की।
1: राष्ट्रीय जनता दल की रेखा गुप्ता ने कहा कि बांकीपुर की जनता का उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है।
3: बांकीपुर विधानसभा की जनता है, उनका भी आशीर्वाद मिल रहा है मुझे, और इस बार राष्ट्रीय जनता दल बांकीपुर विधानसभा से जीतेगी। कोई चुनौती नहीं है, सारी चुनौतियां पहले भी थी और फिर भी मैंने फेस किया और बहुत अच्छा समर्थन मिला, इस बार भी मिलेगा और इस बार जीत कर आऊंगी।
1: इधर जन सुराज के प्रशांत किशोर ने दावा किया कि बांकीपुर की जनता ने उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनने का मन बना लिया है।
4: बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, ये उपचुनाव विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, ये बिहार में नेतृत्व बदलने का चुनाव है, ये बिहार में बीजेपी के अहंकार पर अंकुश लगाने का चुनाव है, ये बिहार में चुने हुए प्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाने का चुनाव है।
1: प्रदेश में अब पर्यटक हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवाओं का आनंद ले सकेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में आयोजित एक समारोह में बिहार हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पर्यटकों के लिए आवागमन को सुगम बनाना और लोगों को बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों का सुविधाजनक अनुभव उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि राज्य के आर्थिक विकास में पर्यटन की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
5: ये हेली टूरिज्म, एयर टूरिज्म या होम स्टे की कल्पना जो सभी जिले में इसको फोकस किया जा रहा है, बिहार की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का रोल हो तब समझिए गया कि टूरिज्म का रास्ता बदला। अभी तो सिर्फ हम लगा रहे हैं, 2100 रुपया आम जनता लगाएगी और 15,000 सरकार देगी। हम जरूर ये चाहते हैं कि हम इसमें प्राइवेट पार्टी को और लाएं। हमारे पास कई एयरपोर्ट सब आ गए और कई जगह हमारे पाइपलाइन में मुजफ्फरपुर, रक्सौल, बीरपुर, सहरसा, बेगूसराय, भागलपुर, राजगीर, कई जगह हम लोग और इस चीज की कल्पना कर रहे हैं।
1: हमारी संवाददाता ने बताया कि यह सेवा पर्यटन और सिविल विमानन विभाग की ओर से संयुक्त रूप से शुरू की गई है। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। वर्तमान में साप्ताहिक आधार पर शुरू की जा रही एयर पर्यटन सेवा को भविष्य में दैनिक सेवा के रूप में विस्तारित किया जाएगा।
6: राज्य सरकार के अनुदान से अब पर्यटक पटना जॉय राइड के लिए 2100 रूपये, पटना राजगीर के लिए 4000 रूपये, पटना वाल्मीकि नगर के लिए 5000 रूपये और पटना कैमूर के लिए 6000 रूपये में टिकट बुक कर सकते हैं। प्रति टिकट सरकार अधिकतम 15,422 रूपये का अनुदान दे रही है। यह सेवा 18 जुलाई से प्रत्येक शनिवार और रविवार को शुरू होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सविता पारीक।
1: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
7: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @news_पटना को फॉलो कर सकते हैं। राज्य सरकार अब आम लोगों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए प्रत्येक महीने के दूसरे मंगलवार को पटना में राज्य स्तरीय सहयोग शिविर आयोजित करेगी। इसकी शुरुआत कल से मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर स्थित संवाद भवन में होगी। एक रिपोर्ट।
8: यह विशेष शिविर उन आवेदकों के लिए होगा जो जिला स्तर पर आयोजित सहयोग कार्यक्रम में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद

0: समाधान से संतुष्ट नहीं है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पिछले दिनों बोधगया में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि वे स्वयं के स्तर से चयनित आवेदकों की शिकायतों की समीक्षा करेंगे।
1: सहयोग कार्यक्रम मैंने चलाया, उसमें सब ऑटोमेटिक है, किसी को कुछ नहीं करना है। फिक्स किया कि 30 दिन में ऑर्डर करना है और 30 दिन में यदि किसी ने ऑर्डर नहीं किया तो 31वें दिन उसको सस्पेंशन ऑर्डर देना है, कोई दूसरा काम नहीं करना। और इसके बावजूद यदि लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो हम जरूर आश्वस्त करते हैं कि महीने में एक दिन वैसे लोगों से मिलूंगा जिन लोगों को बिहार के किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारी ने न्याय नहीं दिया और सीधा उसको जोड़ूंगा।
0: राज्य स्तरीय सहयोग शिविर के लिए आवेदन सहयोग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकेगा। आवेदक अपने पहले से दर्ज आवेदन के रेफरेंस नंबर और मोबाइल नंबर के जरिए ओटीपी सत्यापन कर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। चयनित आवेदकों की शिविर की तिथि, समय और अन्य आवश्यक जानकारी SMS के माध्यम से भेजी जाएगी। अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 1100 के माध्यम से ली जा सकती है। समाचार कक्ष से कामिनी ठाकुर।
2: मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, अररिया, मधेपुरा और मधुबनी जिले में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हुई है। पश्चिम चंपारण के मैनाटांड में सबसे अधिक 169 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। विभाग ने कल दरभंगा, कटिहार, पूर्णिया और सुपौल जिले में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश जबकि अररिया, बांका, भागलपुर, किशनगंज, मधुबनी और सहरसा जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
3: दिनांक 14 जुलाई राज्य के दरभंगा, कटिहार, पूर्णिया एवं सुपौल जिलों में अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के खगड़िया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी एवं वैशाली जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के अररिया, बांका, भागलपुर, जमुई, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी एवं सहरसा जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
2: नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के चलते कोसी और गंडक नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हमारे सुपौल संवाददाता ने बताया कि आज दोपहर 2 बजे तक कोसी बराज से 172,435 क्यूसेक पानी छोड़ा गया।
4: भीमनगर कोसी बराज पर पानी के बढ़ते दबाव को देखते हुए 20 फाटकों को खोल दिया गया है। बाढ़ नियंत्रण बीरपुर के मुख्य अभियंता संजीव शैलेश ने बताया कि पानी को डाउन स्ट्रीम में छोड़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोसी नदी के पूर्वी और पश्चिमी तटबंध समेत सभी बांध पूरी तरह सुरक्षित हैं। संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुपौल से रविशंकर चौधरी।
2: इधर हमारे बेतिया संवाददाता ने बताया कि गंडक नदी के जलस्तर में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वाल्मीकिनगर गंडक बराज से नदी का डिस्चार्ज 1,00,000 क्यूसेक के पार पहुंच गया है। सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हुई है। बागमती नदी सोनाखान में खतरे के निशान से 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। मोकामा से जदयू विधायक अनंत सिंह और भोजपुरी अभिनेता कुंजन सिंह ने आज आर्म्स एक्ट के एक मामले में गोपालगंज की MP MLA विशेष अदालत में आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण के बाद अदालत ने दोनों को जमानत दे दी। यह मामला मीरगंज थाना क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कथित रूप से हथियार लहराने का है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने वर्ष 2019 के आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में आज बेगूसराय की MP MLA अदालत में आत्मसमर्पण किया। सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें 10,000 रुपये के 2 निजी मुचलकों पर जमानत दे दी। पूर्वी चंपारण जिले के गोविंदगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत भेलानाड़ी पुल के पास 2 तेज रफ्तार मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर में 3 युवकों की मौत हो गई। दरभंगा मंडल कारा के सहायक अधीक्षक नंदू कुमार चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इनके खिलाफ पत्नी की हत्या का मामला दर्ज है। इस मामले में न्यायालय ने उनके विरुद्ध वारंट भी जारी किया है। पटना के दीदारगंज से पुलिस ने कृषि विभाग के आयुक्त की बोर्ड लगी कार से 1,00,000 रुपये मूल्य की शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। शेखपुरा की एक अदालत ने मारपीट के 6 साल पुराने मामले में 5

0: दोषियों को 3-3 साल कारावास और 5 अन्य दोषियों को 2-2 साल कारावास की सजा सुनाई है। अररिया व्यवहार न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से कानूनी सहायता क्लिनिक की शुरुआत की गई है। यहां बौद्धिक दिव्यांगता वाले लोगों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की समय सीमा समाप्त। भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा, जन सुराज के प्रशांत किशोर और जन शक्ति जनता दल की वीणा मांडवी ने दाखिल किया पर्चा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार हेली और एयर टूरिज्म सेवा की शुरुआत की। अनुदानित दर पर लोग ले सकेंगे सेवा का लाभ। पटना में कल से शुरू होगा राज्य स्तरीय सहयोग शिविर। मुख्यमंत्री स्वयं करेंगे शिकायतों की समीक्षा। और मौसम विभाग ने कल दरभंगा, सुपौल, भागलपुर, किशनगंज, मधुबनी और सहरसा समेत 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
4: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
3: अरे वही अपना 60 रुपया।
4: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
3: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
4: और दूसरा?
3: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
4: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
3: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
5: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
6: हर लेन देन अब है आसान।
7: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
8: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब प्रस्तुत है औरंगाबाद जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता कमल किशोर।
9: औरंगाबाद जिले के बारून में सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने 11 जुलाई को प्रस्तावित परियोजना स्थल का निरीक्षण करने के बाद बताया कि बारून प्रखंड के मेह और शेखपुरा गांव के निकट 150 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता वाले सोलर पार्क के निर्माण को केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस परियोजना का निर्माण 2 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना के पूरा होने के बाद औरंगाबाद न केवल बिहार के प्रमुख सौर ऊर्जा केंद्रों में शामिल होगा बल्कि राज्य की ऊर्जा व्यवस्था को भी नई मजबूती मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 139 पर औरंगाबाद और ओबरा में बाईपास की योजना को स्वीकृति मिल गई है। इसके बनने से औरंगाबाद और ओबरा में जाम की समस्या से नागरिकों को राहत मिलेगी। इधर औरंगाबाद पटना सड़क को 4 लेन किए जाने की मांग के मद्देनजर पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह और विधायक डॉक्टर प्रकाश चंद्रा ने एक बार फिर केंद्र और राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है। जनप्रतिनिधियों ने लोगों की मांग का समर्थन करते हुए इस सड़क निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने को कहा है। ग्रामीण विकास तथा सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर श्रवण कुमार ने आकाशवाणी से बातचीत में राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आधुनिक हाट बाजार विकसित किए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इन स्थानों पर जीविका दीदियों और किसानों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की बिक्री की जाएगी। डॉक्टर कुमार ने बताया कि इसके लिए नाबार्ड ने आवश्यक धनराशि देने की सहमति दे दी है। जन शिकायतों के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए मदनपुर प्रखंड के नीमा अंजन पंचायत में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन विधायक प्रमोद कुमार सिंह, जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा तथा पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ

0: व्यवस्था ने किया। इस अवसर पर विधायक प्रमोद कुमार सिंह ने कहा कि राज्य सरकार की पहल से प्रशासन के अधिकारी स्वयं पंचायत स्तर पर पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और उनका समाधान कर रहे हैं। प्रशांत कुमार की पुस्तक चरैवेती एक जीवन यात्रा का विमोचन पिछले दिनों औरंगाबाद में आयोजित एक समारोह में किया गया। पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह, विधान पार्षद जीवन कुमार, मगध विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर दिलीप केसरी और सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्रा ने संयुक्त रूप से पुस्तक का विमोचन किया। पंजाब नेशनल बैंक के औरंगाबाद मंडल के तहत रोहतास, औरंगाबाद और अरवल जिले में स्थापित 75 बैंक शाखाओं में ग्राहकों को बेहतर बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इसके लिए मंडल प्रमुख कंदर्प कुसुम ने आवश्यक निर्देश दिया है और लगातार बैंक शाखाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने औरंगाबाद जिले में सिंचाई सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से पटना में उप मुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी से मुलाकात की। श्री सिंह ने इस दौरान उत्तर कोल सिंचाई परियोजना और बटाने जलाशय परियोजना के कार्य में तेजी लाने का आग्रह किया। मगध विश्वविद्यालय के सबसे पुराने सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज में शैक्षणिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेलकूद गतिविधियों को बढ़ावा देने की पहल की जा रही है। प्राचार्य डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्रा ने बताया कि केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मेला जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। रामलखन सिंह यादव कॉलेज में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का संकल्प लिया गया है। प्राचार्य डॉक्टर विजय रजक ने बताया कि महाविद्यालय के शिक्षकों और छात्रों की ओर से विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर 5,000 वृक्ष लगाए जा रहे हैं। जिले में एनटीपीसी लिमिटेड की स्टेज 2 के तहत 2,400 मेगावाट बिजली उत्पादन की कुल 3 इकाइयों के निर्माण कार्य में तेजी आ गई है। क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक सह परियोजना प्रमुख एलके बेहरा ने बताया कि स्टेज 2 के निर्माण कार्य को निर्धारित समय पर पूरा किया जाएगा। इस परियोजना के निर्माण कार्य पर करीब 30,000 करोड़ रूपए खर्च किए जा रहे हैं। एनटीपीसी लिमिटेड और भारतीय रेल के संयुक्त उपक्रम भारतीय रेल बिजली कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर एजे राजकुमार की नियुक्ति की गई है। श्री राजकुमार ने अपना कार्यभार संभालने के बाद कहा कि बिजली उत्पादन के साथ साथ क्षेत्र के सामुदायिक विकास पर भी उनका विशेष ध्यान होगा। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी उपेंद्र नाथ वर्मा ने औरंगाबाद के नए पुलिस अधीक्षक का कार्यभार संभाल लिया है। श्री वर्मा ने जिले में आपराधिक तथा अन्य अवैध गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण के लिए सघन अभियान चलाने और पुलिस गश्त तेज करने का निर्देश दिया है। जिले के दाऊदनगर के रहने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर विकास कुमार को पटना में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
1: अभी आप सुन रहे थे औरंगाबाद जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता कमल किशोर।
2: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मन पसंद। ई मन पसंद कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता दोस्तों को संजय चतुर्वेदी का सप्रेम नमस्कार। श्रोताओं, सुख और दुख हमारे जीवन में धूप और छांव की तरह आते हैं। जीवन है तो खुशियों और गम के मेले तो बारी बारी से आते ही रहेंगे। सुख और दुख दोनों ही परिस्थितियों में लेकिन एक सा बना रहने वाला ही जिंदगी के रहस्य को जान सका है। खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं। जहां बजती है शहनाई, वहां मातम भी होते हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला नगमा।

और आया गुमला झारखंड से हमारे श्रोतागण हैं नजमुल होदा, एसएम जावेद और शगुफ्ता अंजुम। चलिए हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला नगमा। श्रोताओं, हमारी भारतीय संस्कृति में गीतों में डोली का बड़ा महत्व रहा है। कलमकारों ने डोली पर बहुत कुछ लिखा है। वस्तुतः डोली दुल्हन की अपने मायके से विदाई और नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक मानी जाती है। निर्गुणों में भी डोली अनेक बार प्रयुक्त हुआ है। एक पारंपरिक भारतीय पालकी या छोटी सवारी होती है डोली। इसे मुख्य रूप से शादियों में दुल्हन को विदा करके उसके ससुराल ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारा जीवन भी तो एक पथिक सा है और डोलियाँ उठती ही हैं, शहनाइयाँ बजती हैं, चाहे गम की हों चाहे खुशियों की हों।

बम्बई का बाबू फिल्म का गीत अभी आपने सुना, मुकेश की आवाज़ थी। मजरू सुल्तानपुरी ने गीत लिखा, संगीत रचना सचिंद्र वर्मन की थी और इस गीत को सुनना चाहते थे आप सभी श्रोतागण। आप हैं गांव लोहगढ़ ठाकुरांवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अभिराज सिंह, और वंडिंगखेड़ा पंजाब से इस गीत को सुनना चाहते थे मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। और इसी गीत के लिए हमें एक ईमेल

तो अभी आपने एसडी बर्मन की आवाज़ सुनी। आनंदबख्शी ने गीत लिखा था, धुन तैयार की थी राहुल देव बर्मन ने, फिल्म थी अमर प्रेम। और इस गीत को सुनना चाहते थे व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण संस्कृति और पौरुष। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल ने भी इस गीत को सुनना चाहा था। और साथ ही साथ हमें आपके भी ईमेल मिले इस गीत के लिए। जी हाँ, आप हैं नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीना देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी नेशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। और एक फरमाइश और भी आई है इस गीत के लिए। आप हैं पद्मा टॉकीज नेपानगर एमपी से, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। श्रोताओं, गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा, एकला चलो रे, यदि तेरी डाक सुने कोई ना आए तू एकला चलो रे। जी हाँ, अकेले ही चलना, अकेले भी चल पड़ना अच्छे काम के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। भगवान बुद्ध ने कहा, अप दीपो भवा, अपना दीपक स्वयं बन जाओ, यानी अपनी राह को स्वयं रोशन करें हम। अनेक चीज़ें बहुत ही प्रेरणा से भरी हैं और हम अकेले चल करके भी बहुत कुछ पा जाते हैं। उसके लिए कभी किसी समुदाय या भीड़ की ज़रूरत नहीं होती। हम अपना नेतृत्व स्वयं करें। वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः।

0: कोई।
1: इरादे नेक हों, इच्छा अटल हो, तो अकेले चलना भी वरदान ही होता है। हमारे महापुरुष तो अकेले ही चले, लेकिन अकेले रहे कहाँ। हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया।

तो अभी आपने यह नगमा सुना और मुकेश की आवाज़ थी, प्रदीप ने गीत लिखा, ओपी नैयर ने स्वरबद्ध किया, फिल्म थी संबंध। और इस गीत को सुनने के लिए फरमाइशें आप सब की आई हैं। जी हाँ, आप हैं मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से, अभिजीत गंवाड़कर राही, सरिता गंवाड़कर, प्रणीता सिद्धांत गंवाड़कर और अर्जुन गंवाड़कर और इसी गीत को सुनना चाहते थे नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नुहाकर, निर्मला नुहाकर, विशाल नुहाकर और सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हमारे स्वतः हमसे जुड़े हैं ईमेल के माध्यम से, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा और जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। और कालका से आप हैं शुभचंद्र बजाज, शाहिल बजाज और बिट्टा बजाज। चलिए हम आपको कार्यक्रम का अगला गीत सुनवाते हैं। श्रोताओं, जीवन का सफ़र, जी हाँ, जिंदगी के रास्ते, कभी हसीन वादियों का सफ़र है तो कभी कंठ का किरण मार्गों का। भला किसने जाना है कल क्या होना है, आने वाले हर पल के पदचाप से डर लगता है, न जाने कौन सा लम्हा उदास कर जाए। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला नगमा।

किशोर दा की अमर आवाज़ अभी आपने सुनी। सफ़र फिल्म का ये नगमा, इंदिवर के शब्द, कल्याण जी आनंद जी का संगीत और फरमाइशें यानी पसंद आप सभी सुधी श्रोताओं की। जी हाँ, आप हैं फुटानी चौक नरहन स्टेट से ललन मिश्रा, नूतन मिश्रा, गुंजन, छोटू, अमित, सुमित, अमन परासर, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित जी। और इसी गीत के लिए हमें आपने भी ईमेल किया। जी हाँ, आप हैं नाज मंजिल, नगर निगम वार्ड नंबर 28, नाज मंजिल, मैसौल सीतामढ़ी से हमारे श्रोतागण। अक्रम हुसैन फ्रेंड्स, बेगम ईशरत अक्रम, वसीम अक्रम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अक्रम, शमीम अक्रम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, कलेर विहार से मोहम्मद आसिफ खान ने भी हमें मेल किया इस गीत के लिए। और साथ ही साथ इसी गीत को सुनना चाहते थे आप सभी श्रोतागण भी। जी हाँ, आप हैं ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से मीना कारी राय कारी, मीना कारी, पुंजराज, आरती, आकर्षण और जय श्री। तो हम आपको सुना रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर। जी हाँ, इस गीत को हमने लिया है फिल्म अवतार से, और इसे सुनने के लिए हमें फरमाइशें आपकी आई हैं। आप हैं संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया और बागपत उत्तर प्रदेश से आपने ईमेल किया है हमें। और गोकुल चौक गंगाजला सहरसा बिहार से आप हैं राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार विद्यार्थी, गुंजेश कुमार विद्यार्थी, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी, अच्छेलाल राय, बुल्की वाली, फलना झा और नयानगर सुपौल से श्वेता रंजन विद्यार्थी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अमिताभ कुमार, पप्पू जी, गजेंद्र कुमार निराला और चिरना झा। और इसी गीत के लिए हमें एक और फरमाइश मिलती हुई दिख रही है। जी हाँ, आप हैं गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन यूपी से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा और शिव मंदिर हकीकत पूरा मऊ से आप हैं मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। सुन लेते हैं इस गीत को कि श्रोताओं, जिंदगी चाहतों, यादों और इरादों।

यादों का सिलसिला है। हमारी यादें कभी हंसाती हैं तो कभी रुलाती भी हैं। यादों के झरोखों से कुछ दूर चलते हैं, आइए एक और नगमा सुनकर दिल बदलते हैं। लीजिए सुनिए।

और कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं मुकेश को। फिल्म का नाम है सारंगा, शब्दकार हैं भरत व्यास, सुरों में ढाला है सरदार मलिक ने। और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी श्रोतागण। आप हैं नहौना प्रखंड सासाराम से, ग्राम नहौना प्रखंड सासाराम से भरत सिंह, धर्मराज सिंह, डॉक्टर अनिल जयनाथ सिंह, जगदीश सिंह, दशरथ सिंह, विमला देवी, मास्टर अनिल, रविंद्र सिंह और डमरू कलाकार। और गढ़नोखा लालगंज रोहतास से आप हैं राजकिशोर सिंह, बड़क सिंह, आर के सिंह, ग्राम खरवत गढ़नोखा से मोती माला गुप्ता, लाल बिहारी सिंह, बीरा सिंह और आपके मित्रगण। और इसी गीत के लिए हमें फरमाइशें श्रोताओं आपकी भी मिली हैं। आप हैं कंपनी सराय सासाराम से विनोद दुबे, रमेंद्र दुबे, संजय किशन और आपके दोस्त। और ये हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नवादा, जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला जिला गाजीपुर से अवधेश राय ने भी इस गीत को सुनना चाहा है। और साथ ही साथ आप हैं गांव टोरोवाल जिला नवांशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, प्रियंका थांदी, प्रशांत थांदी, प्रियम थांदी, बेबी वामिका और वाणी थांदी। और दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से इस गीत को सुनना चाहते हैं हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखे लाल वर्मा। और साथ ही साथ पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से आप हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। और कर्नाटका स्टेट से चिन्ना तिरुपति से, क्षमा करेंगे, कर्नाटका स्टेट चिन्ना तिरुपति से आप हैं श्यामला प्रकाश, अश्विनी आनंद और मानवित। और गांव फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी ने भी इस गीत को सुनना चाहा है। और कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से आप हैं देवशंकर तामूरिया, अजय देव तामूरिया, तुषार देव तामूरिया, डॉली बेबी पूजा तामूरिया, राधिका और प्रभा देवी तामूरिया और मास्टर अल कबीर। चलिए हम आपको सुनवाते हैं सारंगा फिल्म का बहुत ही लोकप्रिय नगमा, लीजिए सुनिए।

0: तो श्रोता हूँ, आज के कार्यक्रम ई मन पसंद में बस इतना ही। दीजिए संजय चतुर्वेदी को आज्ञा। नमस्कार, यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित समाचार संध्या। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% की वृद्धि के साथ $232 अरब से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमरीका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशिया अंडर-19 और अंडर-23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका की व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है।

0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्पेन सरकार के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा अर्थव्यवस्था व्यापार और व्यवसाय मंत्री कार्लोस क्यूर्पो काबालेरो से मुलाकात की। श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाकर भारत स्पेन आर्थिक साझेदारी मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भी विचार विमर्श किया। श्री गोयल आज से 5 दिन की स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर हैं। भारत और जापान ने स्वतंत्र, मुक्त और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान की टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र में जापान के सहयोग की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात 9:30 बजे पहुंचेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4N को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। ताहिर हुसैन सहित कुल 11 आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे न्यायालय ने 5 आरोपियों को दोषी पाया है। अदालत ने ताहिर हुसैन को शत्रुता भड़काने, दंगा, मारपीट, आपराधिक बल प्रयोग और हत्या के आरोपों में दोषी पाया। अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार ने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उनके बेटे की हत्या तत्कालीन आम आदमी पार्टी पार्षद हुसैन और अन्य लोगों ने की थी। 24 मार्च 2023 को अदालत ने हुसैन और 10 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे। अयोध्या की एक अदालत ने श्री राम मंदिर के कथित दान चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी है। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश प्रतिभा नारायण ने आरोपियों को 27 जुलाई को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के अंतर्गत बनाए गए नियमों को 2 सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया। ये कानून देश के नागर विमानन ढांचे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर भी बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्री को रिजर्व बैंक की स्वैप सुविधाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले तीनों नेताओं ने उन्नाव में एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इसके बाद वे इसी एक्सप्रेसवे से लखनऊ लौटे और सैनिक स्कूल में एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर करीब 4,850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इनमें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, लखनऊ हरदोई राजमार्ग के एक हिस्से को 4 लेन का बनाने का कार्य का उद्घाटन तथा लखनऊ में एक फ्लाईओवर की आधारशिला रखना शामिल है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेज विकास होगा।
1: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है।

0: मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही हैं, और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
1: श्री गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।
2: लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3 लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। इस रोड में जो सर्विस रोड है वो भी हम बना रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा, ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस एक्सप्रेस वे के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।
3: 63 किलोमीटर लंबे और 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 45 मिनट तक रह जाने की उम्मीद है। इस पर टोल 275 रुपए होगा और दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं होगी। AI आधारित गति नियंत्रण प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है और इस पर कोई बैरियर नहीं है। इससे पहले अपने दौरे पर लखनऊ पहुंचे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक आवास पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और राज्य में चल रही और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में परिचालन से होने वाले राजस्व में लगभग 10% की वृद्धि दर्ज की है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में BSNL की समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी।
4: Provisionally, we're looking at a 10% increase.
5: प्रारंभिक तौर पर हम 2025-26 की पहली तिमाही की तुलना में 2026-27 की पहली तिमाही में आय में 10% की बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं। पिछले वर्ष की पहली तिमाही में ये लगभग 4000 करोड़ रुपए थी। इस वर्ष की पहली तिमाही में हमने 4418 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है, ये लगभग 10% की बढ़ोतरी है। ये पूरी तरह से सेवाओं से प्राप्त आय है, इसलिए इसमें अन्य आय शामिल नहीं है।
4: Other operating income is not included.
1: इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
6: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4 अरब 14 करोड़ अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4 अरब 93 करोड़ डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88 अरब 76 करोड़

0: चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4 अरब 14 करोड़ अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4 अरब 93 करोड़ डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88 अरब 76 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: नागालैंड के चूमो केदिमा जिले के शुखोबी के पास खोप नाला में एक संदिग्ध आईईडी विस्फोट में आज असम राइफल्स के एक जवान की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। पुलिस महानिदेशक रूपेन शर्मा ने बताया कि अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। इस बीच नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य कायरतापूर्ण कृत्य बताया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका और ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंता पैदा हो गई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक जहाज नहीं गुजरा है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इनमें वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्यवाही ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमले के जवाब में की गई। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने ईरान द्वारा संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करने की निंदा की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने पिछली रात समझौते का उल्लंघन किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने रात भर चले हमलों में ईरान के उपकरणों को नष्ट कर दिया है। इससे पहले ईरान ने अमरीकी हमलों की निंदा करते हुए अमरीका पर जलडमरू मध्य में सुरक्षा व्यवस्था में हस्तक्षेप करके वैश्विक वाणिज्यिक जहाजों के आगमन को बाधित करने का आरोप लगाया था। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर सिमट गई। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाजों और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई है। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की है। मौसम विभाग ने बिहार और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी कल तेज वर्षा हो सकती है। असम के कई जिलों में बाढ़ का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक साप्ताहिक कार्यक्रम में जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन के संयुक्त सचिव सुमंत नारायण कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% वृद्धि के साथ 232 अरब डॉलर से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का
3: गुड इवनिंग, दिस इज
4: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़।

पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9 बजे हैं। लोकधारा के अंतर्गत आइए सुनते हैं कुछ लोकगीत। शुरुआत करते हैं केसरी नाथ भगत और साथियों के गाए इस निर्गुण से।

अभी आपने रीना सिन्हा की आवाज़ में यह कजरी सुनी और इन्हीं रचनाओं के साथ ही लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा अब यहीं संपन्न होता है।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं बंदगी के तहत। आइए सुनते हैं यह नात।

0: ईमां की रोशनी है मोहम्मद के शहर में, किस चीज़ की कमी है मोहम्मद के शहर में। अभी आप सुन रहे थे नातिया कलाम जानी बाबू से। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारी अगली पेशकश विविध भारती मुंबई की ओर से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आज की

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित या मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: नमस्कार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है भारतीय सिनेमा के सुप्रसिद्ध खलनायक और चरित्र अभिनेता प्राण पर,
1: जिसे दुनिया चंदन टाकू के नाम से जानती है। और चंदन किसी का एहसान अपने सर पर नहीं रखता। मांगो क्या चाहती हो?
2: मैं जो मांगूंगी वो आप दे सकेंगे?
1: मांग कर देखो, 10, 20, 25, 50 हजार, 1 लाख।
2: मुझे पैसों की जरूरत नहीं। तो आप के कोटे पर पैसा घुंघरुओं के झनकार के साथ बरसता है, जब चाहूं बटोर सकती हूं।
1: फिर क्या चाहिए?
2: इज्जत चाहिए, जो इस बाजार से बहुत दूर है। आप सच जानिए, मैंने आज तक इज्जत का सौदा नहीं किया है। आवाज बेची है, अदाएं बेची है। आप मुझे एक औरत की जिंदगी दे सकते हैं, एक शरीफ घर दे सकते हैं, आप मुझे इस पाप के दलदल से निकाल सकते हैं।
1: तुम में किसी शरीफ का खून है, ये तुम्हारे खून और आत्मा की पुकार है। मैं वायदा करता हूं, जो कुछ तुम मांग रही हो मैं तुम्हें उसी तरह दूंगा जिस तरह एक बाप अपनी बेटी को जहेज देता है। कल सुबह एक शरीफ आदमी तुम्हें लेने आएगा, बेझिझक उसके साथ चली जाना।
0: सन 1940 से सन 2007 तक अभिनय जगत में सक्रिय रहने वाले अभिनेता प्राण केवल सिकंद की गिनती एशिया के 25 सर्वकालिक महान अभिनेताओं में की जाती है। 12 फरवरी सन 1920 को पुरानी दिल्ली में कोटगढ़ बल्लीमारा में जन्म हुआ था प्राण का। उनके पिता केवल कृष्ण सिकंद पेशे से सिविल इंजीनियर थे। उनकी माताजी का नाम था रामेश्वरी। युवा प्राण एक मेधावी छात्र थे और गणित पर उनका अच्छा अधिकार था। उनकी पढ़ाई देहरादून, कपूरथला, मेरठ, उन्नाव और रामपुर में हुई। पढ़ाई पूरी करने के बाद युवा प्राण दिल्ली की एक फोटोग्राफी कंपनी में अप्रेंटिस हो गए। फोटोग्राफी के सिलसिले में ही प्राण को शिमला जाना पड़ा, जहां उन्होंने रामलीला के मंचन में भाग लिया। उस रामलीला में मदनपुरी राम बने थे और प्राण बने थे सीता, और प्राण ने सीता की भूमिका निभाई थी।
3: आज चाय भजिया कोर्स नहीं मिलेगा, आज दुकान बंद है।
4: दुकान बंद है?
3: किस खुशी में? तुम्हारी खुशी में। तुम खुश तो मैं भी खुश।
4: अरे मैं क्यों खुश भाई?
3: हम जो बनते हो, आधी आधी रात को एक सुंदर जवान लड़की को अपने घर में लाते, उससे खुशर पुशर बातें करते और पूछते मुझसे होगा खुशी किस बात की।
4: किसने कहा तुझे सब?
3: एक काले कौए ने।
4: काले कौए ने?
3: हाँ, सुबह ही सुबह आया था। हकलाता जरूर है लेकिन सच्ची बात सुनाता है।
4: साला रामू गुपचुप सब बता गया तुझे?
3: अरे बड़े खुश नसीब। अच्छा ये बताओ कि अब कब इंतजाम करूं?
4: किस चीज का?
3: अरे पंडित का मंडल।

0: का, ढोल तमाशे का, बाजे का, बारात का।
1: बस बस बस प्यारे भैया, यही तो तुम में एक कमजोरी है।
0: क्या?
1: आम पके नहीं कि सारे मोहल्ले को दावत दे दी।
0: अरे भैया, जब आम लगे हैं तो एक दिन पकेंगे भी, एक बार मुझे उससे मिला दो
1: ताकि तू अपनी बड़बड़ शुरू कर दे।
0: अरे भाई, तुमने गड़बड़ की है तो मुझे बड़बड़ करनी पड़ेगी। अरे सुन सुन सुनो, गुस्से मत हो, अगर तुम बोलो तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा।

0: जो करता है पाता है, अरे अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो कुछ नहीं बोलेगा। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोल।
1: लाहौर की हीरा मंडी में मौजूद एक दुकान पर संयोगवश प्राण की मुलाकात दल सुख पंचोली की यहाँ नौकरी करने वाले फिल्म लेखक वली मोहम्मद वली से हो गई। सन 1940 में आकर्षक कदकाठी के नौजवान प्राण को दल सुख पंचोली की पंजाबी फिल्म यमला जट में नायक की भूमिका मिली। फिल्म यमला जट बहुत कामयाब रही। इस फिल्म में नूरजहां और दुर्गा खोटे ने भी अभिनय किया था। फिल्म के निर्देशक थे मोती बी गिडवानी। इसके बाद 1941 में प्राण साहब ने फिल्म चौधरी और खजांची में भी अभिनय किया। पंचोली आर्ट्स के बैनर तले 1942 में निर्मित खानदान प्राण साहब की पहली हिंदी फिल्म थी।
2: कैदी नंबर 602
3: हाजिर है।
2: सर झुकाकर बात करो।
3: ये सर किसी इंसान के सामने नहीं झुक सकता जेलर साहब। झुकेगा तो उसकी चौखट पे या उसके दरबार में झुकेगा।
2: बहुत खूब, मैं ऐसे ही सरों की कदर करता हूं। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जो तुम दूसरी जेलों में करते रहे हो वो मेरी जेल में ना हो। होगा तो तुम्हें बहुत अफसोस होगा कि यह हुआ तो क्यों हुआ। मैं तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड पढ़ चुका हूं।
3: तब तो आपको यह भी मालूम होगा जेलर साहब कि हम जिस जेल में जाते हैं वहां का जेलर या तो अपना तबादला करवा लेता है या फिर लंबी छुट्टी पे चला जाता है।
2: लेकिन मैं उस किस्म का जेलर नहीं हूं। मैं ना तो छुट्टी पर जाऊंगा और ना तबादले की दरख्वास्त करूंगा। तुम्हारा वो रिकॉर्ड है तो हमारा भी एक रिकॉर्ड है। हमारी जेल से संगीन कैदी जो बाहर गया है उसने तुम्हारे उस दरबार में दुआ मांगी है तो यही दुआ मांगी है कि अगर दोबारा जेल जाए तो रघुवीर सिंह की जेल में न जाए।
1: सन 1942 से 1946 के मध्य प्राण ने पंजाबी की 21 फिल्मों में बतौर हीरो काम किया। इनमें से 18 फिल्में सन 1947 में रिलीज हुईं, लेकिन 1947 में विभाजन के दौरान उनकी अभिनय यात्रा कुछ समय के लिए थम गई। विभाजन के दौरान प्राण मुंबई आ गए और यहां उन्हें अपनी नई पारी शुरू करने के लिए लगभग 8 महीने तक प्रतीक्षा करनी पड़ी।

नजराना, तेरी हंसी है आज सबसे बड़ा नजराना, यार के हंसते ही

0: याद मेरी जिंदगी।
1: मुंबई में रहते हुए उन्होंने मरीन ड्राइव के डेलमर होटल में भी काम किया। मुंबई में मशहूर कहानीकार सादत हसन मंटो और अभिनेता श्याम की मदद से उन्हें शाहिद लतीफ की फिल्म जिद्दी में अभिनय की नई पारी शुरू करने का अवसर मिला।
2: मेरे बात करने का तरीका गलत था।
3: तरीका छोड़ो साहेब, बात गलत था। anyway, have a drink. कल का आपका रम हमारे पे उधार है, जरा चुका देगा।
2: नो थैंक यू, मैं सुबह सुबह नहीं पीता।
3: पर हम तो 24 घंटा पीता है साहेब। आप बड़ा लोग तो टाइम टेबल देखकर काम करता है। वेरी क्लेवर यू व्यक्ति। लेट गो, कोई मतलब का बात है? बोलो।
2: आप ही के मतलब की बात है मिस्टर बर्गेंद्र। मैं पूछने आया हूँ आपको कितना पैसा चाहिए।
3: हमको कितना पैसा चाहिए? क्या बोला तुम? हम ठीक सुना नहीं?
2: बिल्कुल ठीक सुना है आपने मिस्टर बर्गेंद्र। बहुत अच्छे मछेरे हैं आप, अच्छी मछलियां फांस लेते हैं, और इस बार राजा उसमें फंस गया है। मैं नहीं चाहता कि आपका कोई नुकसान। कहिए क्या कीमत लगाई है मेरे बेटे को आजाद करने की? 30,000, 50,000।
3: पैसा का किताब लेकर आया तुम? मैन तुम वेट, यू वेट मिस्टर नार, अभी बताता हूं तुमको, यू वेट। देखो, लेकिन तुम बड़ालों के पास सिर्फ पैसा है, बंगला है, मोटर है, सिर्फ पैसा है। यू हैव गॉट ओनली मनी, दिल नहीं है। और हम छोटालों के पास इज्जत है, दिल है, खुशी है, और ये जो चीज है ना उसको हम बेचता नहीं है, समझा?

0: बेचता नहीं है, धंधा करवाता है इससे, धंधा। इज्जत की बातें करने वाले अपनी बेटियों का चारा बनाकर करोड़पतियों के बेटों के आगे नहीं डाला करते, समझे?
1: फिल्म जिद्दी में प्राण साहब ने खलनायक की भूमिका निभाई और इसके बाद ऐसी भूमिकाएं ही प्राण साहब की पहचान बन गई।
2: तू सुना, कॉलेज का क्या हाल है?
3: ठीक ही है, पर तू कॉलेज के बारे में क्यों पूछने लगा?
2: वो बचपन में तू किसी किताब से कुछ जानवरों की कहानी सुनाया करता था ना,
3: वो हितोपदेश पंचतंत्र में से
2: हो, कुछ ऐसा ही था। आज उसकी एक कहानी याद आ गई।
3: कौन सी?
2: वो गीदड़ बिल्ली और खरगोश की।
3: हाँ हाँ हाँ,
2: गीदड़ और बिल्ली मिलकर खरगोश मारने की कोशिश कर रहे।
3: हाँ हाँ, क्या बात है, दूसरे क्यों देख रहा? कहने का चाहता है
2: यही कि खरगोश अब भी संभल जा वरना फंस जाएगा। दो दिन पहले धर्मदास के घर गीदड़ और बिल्ली की दोस्ती अपनी आंखों से देखकर आया हूँ। जिन पर तुझे बहुत विश्वास है ना, जिनको तू अपने घर का समझता है ना, वही सब मिलकर तेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं।
1: करीब 360 फिल्मों में प्राण साहब ने केवल नेगेटिव रोल किया है।

0: अगर समझो, राज को राज रहने दो इशारों को, अगर समझो राज को राज रहने दो।
1: एक तरफ होते दिलीप कुमार, देवानंद या राज कपूर हीरो के रूप में, और उतने ही जानदार रोल के रूप में दूसरी तरफ होते प्राण।
2: झूठ और झूठ का सच बना देने वाला एक ही गवाह, वो है गोलू गवाह। हर केस का सुलझाओ मिनटों में। गोलू गवाह की फीस हर के लिए एक ही है। चोरी के इल्जाम में 25 रुपए, एक्सीडेंट में 30 रुपए, डकैती में 75 रुपए, जायदाद मकान में 100 रुपए और खून के इल्जाम में 200 रुपए। वकीलों से परेशान लोगों के लिए ताकीद है कि वो गोलू गवाह से भेंट करे। अरे गीता पर हाथ रखकर झूठी गवाही और झूठी कसम गाना कोई आसान गल नहीं, वो एक ही कर सकता है। और आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का हमदर्द गोलू गवाह, अरे गोलू गवाह AWD मतलब एडवोकेट विदाउट डिग्री। कोई ग्राहक आया?
3: आया सेठ रतिराम।
2: आओ सेठ रतिराम मलंग, हमें क्या करना होगा काम?
3: तलाक का है काम, बीवी पर बचलने का इल्जाम।
4: मुझे बचा ले भाई, शादी करके बड़ा पछता रहा हूँ, राम कसम मुझे बचा ले।
2: अरे सतनाम सेठ, शादी तो होती है बर्बादी, इसीलिए तो हमने अभी तक नहीं की।
4: गुल, ये 100 रुपया गवाही के एडवांस है।
2: सेठ अब बस समझ ले कि तुम्हारा हो गया काम, अब इधर और खड़े रहकर हमें ना करो बदनाम। चलो
3: एक नंबर का यहाँ सेठ।
2: अरे हमें भी तो भरना है अपना पेट।
5: गोलू भैया।
2: अरे ये गोलू भैया की कौन सी पहन आ गई?
5: सेठ रतिराम की बीवी हूँ, 3 बच्चे लेकर कहाँ जाओ? वो किसी लड़की के चक्कर में आके मुझे तलाक देना चाहते हैं।
2: ओ भाई ये हमें नहीं मालूम, हमारा तंदा गवाही देना, तू ज्यादा पैसे दे दे।
5: उन्होंने तो एक पैसा भी नहीं छोड़ा मेरे पास जो मैं वकील कर सकूं।
2: ओ, यही तो मुसीबत है। ये ले फट अपने पति के 100 रुपए, पर मैं गवाही उसी की दूंगा।
1: हिंदी सिनेमा का एक पूरा दौर ऐसा रहा जब प्राण साहब की खलनायकी की प्राण प्रतिष्ठा के बिना फिल्म निर्जीव मानी जाती थी। उनका रुतबा एक हीरो जैसा ही था। उस दौर में फिल्मों की शुरुआती नामावली में उनका नाम अलग से यूं दिया जाता, प्राण भारतीय सिनेमा के प्राण बन गए। अपने जानदार अभिनय से उन्होंने अनेक फिल्मों की निर्जीव कहानी में भी प्राण फूंक दिए। सन 1945 में प्राण ने शुक्ला अहलूवालिया से विवाह किया। उनकी 3 संतानें हैं, अरविंद, सुनील और पिंकी। दादा मुनि उर्फ अशोक कुमार प्राण के घनिष्ठ मित्र थे। 1951 से 1987 के मध्य इन दोनों ने 27 फिल्मों में एक साथ काम किया था और इनमें से 20 फिल्में सुपरहिट रहीं।

0: फिल्मी दुनिया में प्राण साहब के अन्य प्रिय मित्रों के नाम हैं शम्मी कपूर, प्रकाश मेहरा, किशोर कुमार, दिलीप कुमार और मनोज कुमार। अभिनेता, निर्माता, निर्देशक मनोज कुमार की फिल्म उपकार में प्राण ने मलंग बाबा की यादगार भूमिका निभाई।
1: देख लिया भारत, कई बार मैंने तुझसे कहा कि जी भर कर लोगों पर उपकार कर, मगर पहले अपनी सोच। मगर पगले, तू अभी तक इतना भी नहीं समझा कि राम ने हर युग में जन्म लिया मगर लक्ष्मण फिर पैदा नहीं हुआ।

0: प्राण जिन दिनों फोटोग्राफर के रूप में नौकरी करते थे उन्हें महीने में 200 रुपए मिलते थे, लेकिन फिल्म यमला जट के लिए उन्होंने ये काम छोड़ दिया। यमला जट में काम करते हुए उन्हें महीने के 50 रुपए मिला करते थे। अभिनेता दिलीप कुमार के साथ प्राण की पहली फिल्म थी आजाद। इसी फिल्म से दोनों गहरे दोस्त बन गए। जिस फिल्म में प्राण साहब ने पहली बार दोहरी भूमिका निभाई वो थी जंगल में मंगल। इसके बाद इंसाफ और खून का रिश्ता में भी उन्होंने दोहरी भूमिकाएं निभाई। प्राण साहब ने तेलुगु और बांग्ला भाषा की फिल्मों में भी काम किया। खलनायक के रूप में उन्होंने अपनी अनेक भूमिकाओं में हास्य का रंग भी डाला। ये फिल्में थीं कश्मीर की कली, पूजा के फूल और हाफ टिकट।
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कचरिया ओ सवरिया, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कचरिया ओ सवरिया।

0: गुजरिया होय होय होय ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कचरिया ओ संवरिया।

0: करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय

0: गुजरिया
1: ओ गुजरिया
2: ओ सवरिया
1: ओ गुजरिया
2: ओ सवरिया।
3: प्राण अनेक संस्थाओं से संबद्ध थे, खेलों से उन्हें बहुत लगाव था। बॉम्बे डायनामोस फुटबॉल क्लब से जुड़ी टीम के वो मालिक थे। यादगार अभिनय और सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें अनेक बार प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। सन 2001 में भारत सरकार ने प्राण साहब को पद्म भूषण के अलंकरण से और सन 2013 में भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। सन 2013 की 12 जुलाई को इस लोक में अपनी अनेक भूमिकाएं निभाकर महायात्रा पर चले गए प्राण। अपनी अनुपस्थिति में वो अपने प्राणवान अभिनय से अपनी उपस्थिति हमेशा बनाए रखेंगे।

0: रेशमी ख्वाब कुछ मखमली अंदाज
1: कहीं बेख्याल।
2: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजने को हैं। लीजिए सुनिए हिंदी एल्बम सॉन्ग्स कार्यक्रम रस रंग।

0: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से हिंदी एल्बम सॉन्ग्स कार्यक्रम रस रंग।
1: मेरे भारत, मेरे देश, मेरे देश।
2: तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो।

यह है कार्यक्रम की अगली पेशकश। आप सुन रहे हैं हिंदी एल्बम सॉन्ग्स कार्यक्रम रस रंग आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से।

आबिदा परवीन की आवाज़ में अभी आप ये रचना सुन रहे थे, और इन्हीं रचनाओं के साथ ही रस रंग कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 MHz पर। 10:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रपट तराने। चित्रपट तराने कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपका रेडियो दोस्त संजय चतुर्वेदी। स्वीकार कीजिए हमारा सप्रेम नमस्कार। श्रोताओं, हमारी जिंदगी

क्षणभंगुर बताई जाती है। दुनिया ही क्षणभंगुर है, नश्वर है, लेकिन मनुष्य सभी प्राणियों में चेतनशील है, क्योंकि हम सत्य की खोज में भी लगे रहते हैं। हम हर रहस्य पर पड़े पर्दे को उठाकर वास्तविकता के युग में जाना चाहते हैं। अन्य जीवों से हमारा यही गुण हमें अलग करता है।

0: ನಾದ್ರಿದ ತುಂಬ ದಲ್ದ ದಿಂ ತನ ನನ ನನ ದಿಂ ತನ ನನ ನನ ದಿಂ ತನ ನನ ನನ ದಿಂ ತುಂಬ ತನ ನನ ದಿಂ ತುಂಬ ತನ ನನ ದಿಂ ತುಂಬ ತನ ನನ
1: श्रोताओं, सभ्यता के विकास के क्रम में इंसानों ने संवाद स्थापित करने के लिए पत्र लेखन की पद्धति अपनाई और ये प्रारंभ में तो पत्तों पर हुआ करता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे कागज़ पर और भी अन्य स्वरूप में बदल गया, पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय पत्र और आज तो मोबाइलों का दौर आ चला है एसएमएस भेजने का। लेकिन एसएमएस, मोबाइलों के एसएमएस में वो आनंद, वो मज़े कहाँ जो चिट्ठियों में हुआ करते हैं। खत से हमारे संबंधों की जीवंतता सिद्ध होती है। हमारे संबंधों की जीवंतता सिद्ध करते हुए यह खत संजोकर थाती की तरह रखे जाते हैं। रंग बिरंगी चिट्ठियाँ भला किस संदूक की शोभा नहीं बढ़ा होती थी 90 के दशक के पहले तक, लेकिन आज इसमें कुछ कमी आई है। पत्र लेखन की पद्धति को, पत्र लेखन की परंपरा को हम जीवित, जागृत और जीवंत रखें, यह समय की मांग है।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: भक्ति जब जल में उतरता है तो जल आचमन हो जाता है। भक्ति जब भोजन को स्पर्श कर ले तो वह भोग हो जाता है। भक्ति जब स्वरों से फूट पड़े भजन बनता है, और भक्ति जब तन मन को रंग ले

तन मन संत हो जाता है। ईश्वर की भक्ति जब भी की जाएगी, शांति, सुकून, चैन और आराम की अनुभूति होगी। जब कभी भी भक्ति की बात होगी, श्री कृष्ण और राधा तो याद आएंगे ही।

तो श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ ही आज के चित्रपट तराने कार्यक्रम से संजय चतुर्वेदी को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

पर एक नजर हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर। प्रातःकालीन प्रसारण में आप 7:30 पर प्रतिदिन सुनते हैं प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास, और अपनी फरमाइशों के फिल्मी नगमे पसंद आपके कार्यक्रम के तहत सुनिएगा 8:20 पर।

आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार आप सुनते हैं सुबह 8:45 पर और 9:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम गीत मलिका।

आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार आप सुनते हैं सुबह 8:45 पर और 9:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम गीत मलिका।

हमारा साप्ताहिक प्रसारण आवाज़ आप सुनेंगे 10:05 पर, और 10:30 पर सुनिएगा लोक माधुरी कार्यक्रम।

सांध्यकालीन प्रसारण में युवावाणी आप सुनेंगे 5:30 पर और लोकगीत संध्या 6 बजे और रात्रि 9 बजे सुनिएगा। 6:05 पर आकाशवाणी के पटना केंद्र से भोजपुरी समाचार बुलेटिन सुनना नहीं भूलिएगा। एक नज़र कल के मौसम पूर्वानुमान पर। कल का अधिकतम तापमान संभावित है 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर प्रति घंटा और हवा में आर्द्रता 68% हो सकती है। आसमान में काले काले बादल छाए हो सकते हैं, गरज के साथ छींटे भी पड़ने की संभावना है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103.4 MHz पर। थोड़ी ही देर में यानी ठीक 11 बजे आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित समाचार, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीमें व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनके अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीमें लगातार सक्रिय हैं। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य

0: रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4 अरब 14 करोड़ अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4 अरब 93 करोड़ डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88 अरब 76 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान दोनों ने हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मूज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मूज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने कहा कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई है। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। वियतनाम के फूक वॉक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर भारत लाए गए हैं। भारत के दूतावास ने कहा कि पार्थिव शरीरों को हो ची मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की उड़ान से मुंबई लाया गया। दूतावास ने कहा कि आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की राज्य सरकारें पार्थिव शरीर को उनके संबंधित राज्यों में अंतिम संस्कार के लिए ले जाने में समन्वय करेंगी। भारतीय दूतावास ने इस कठिन समय में सहयोग और सहायता के लिए वियतनाम सरकार और वहां के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नाव पलटने की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। 2 जुलाई को शंकरपुर बंदरगाह से मछली पकड़ने निकले 15 मछुआरों की नाव का 5 जुलाई के बाद संपर्क टूट गया था। तटरक्षक बल, नौसेना और राज्य एजेंसियों ने संयुक्त अभियान में 12 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में नाव का पता लगाया। हादसे में 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 6 अब भी लापता हैं। राज्य के मत्स्य मंत्री राजेश महतो ने कहा कि सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ है। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाज और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की। अंडर 23 में 5 महिला और 3 पुरुष मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। अंडर 19 में 8 महिला खिलाड़ी फाइनल में पहुंच चुकी हैं। पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल जारी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल टुडे डिसमिस्ड मीडिया रिपोर्ट्स ऑफ अ डेडलॉक इन इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स, कॉलिंग देम एज कंप्लीटली फॉल्स, बेसलेस एंड मिसलीडिंग। In a social media post, Mr. Goyal said, India and the US teams are fully engaged for a trade pact that is balanced, commercially meaningful, and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers, and consumers. He said he had a fantastic meeting with the US trade representative Jameson Greer in New Delhi last month in this regard. Mr. Goyal said, both sides reaffirmed their commitment to an agreement that is balanced, commercially meaningful, and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers in both the countries. He asserted that their teams remain fully engaged in achieving the objective. Meanwhile, Mr. Piyush Goyal today began his official engagements in Spain by meeting first Vice President of the Government of Spain and Ministry of Economy, Trade and Business, Carlos Cuerpo Caballero. In a social media post, Mr. Goyal said that they had productive discussions on strengthening the Indian-Spain economic partnership through greater trade, investment and technology collaboration. India's total exports during April to June this year